सुप्रभात। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। आज है शनिवार, शक संवत 1948, ज्येष्ठ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 6 जून 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं से प्रारंभ होती है। इस मंगलमयी बेला में आप सभी का स्वागत है।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ जुड़े हैं आप। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की विकास दर दर्ज की है। दमन में 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद कल प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी। सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में से 50 गीगावाट क्षमता अकेले गुजरात की है। अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में भी अपनी मजबूत गति बनाए रखी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के तहत सामान्य मार्ग से निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह के निवेश सीमाओं का पालन नहीं करना होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका से 3,567 भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली के लिए आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि वर्ष 1947 से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय के परिणाम स्वरूप गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि जून 2026 तक देश भर में 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित खाद के इस्तेमाल का यह अभियान एक देशव्यापी जन आंदोलन बन गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगहारा में खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार

0: Pakistan played its maiden test match. Shubman Gill will lead the men in blue. And that is the end of this news bulletin.
1: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। FM शिमला से आइए सुनते हैं भक्ति रस से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि। कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं गणेश वंदना से।

किसी भी शुभ कार्य की सफलता के लिए हम सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी का वंदन करते हैं और विघ्नहर्ता रिद्धि सिद्धि प्रदाता श्री गणेश जी हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और हमारे सभी कार्य पूर्णतः सफल हो जाते हैं। अगली प्रस्तुति हनुमान जी के चरणों में आइए सुनते हैं।

संकट हरण मंगल मूर्ति हनुमान लल्ला का आशीष जिसे मिल जाए वो हर तरह की नकारात्मकता से दूर रहता है। कलयुग में बजरंगबली जी के नाम के जाप से हम हर तरह की बाधाओं का सामना कर सकते हैं और रोगों से रहित भी रहता है हमारा शरीर। हनुमान जी की आरती के बाद आइए अब भज लेते हैं हरि नाम को भी, जिसके बिना हम इस संसार रूपी भवसागर को पार नहीं कर सकते।

भोले शंकर की महिमा अपरंपार है, आशुतोष की शरण में जो भी जाता है असीम सुख शांति पाता है। भोले भंडारी शिव शंभु सभी पर एक समान अपनी कृपा बरसाते हैं। हिमांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला से, और कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति नितिन मुकेश की आवाज़ में ये कृष्ण भजन, आइए सुनते हैं।

हिमांजलि कार्यक्रम में आज बस इतना ही। सुन रहे हैं आप आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर। आइए सुनते हैं मानस गान।

श्री रामचरितमानस की रचना के प्रारंभिक प्रसंगों में व्यास आदि श्रेष्ठ कवियों की वंदना करते हुए तुलसीदास ने रामायण के प्रणेता ऋषि वाल्मीकि के चरणों में सिर नवाया है। कहते हैं आदि कवि के रामायण खरदूषण सहित होने पर भी अत्यंत सुंदर और सर्वथा दोषरहित है। भक्त कवि ने फिर चार वेदों की वंदना की है जो भव सागर पार करने के लिए जलयान के समान है। साथ ही प्रणम्य है ब्रह्मा जिन्होंने भव सागर की रचना की, जिसमें से एक ओर अमृत चंद्रमा तथा कामधेनु जैसे जीवनदायी निकले तो दूसरी ओर मनुष्य रूपी विष तथा मदिरा। तुलसीदास को विश्वास है कि देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सब के चरणों की वंदना करके ही उनके मनोरथ पूरे होंगे। सरस्वती देवनदी गंगा शिव पार्वती आदि के सम्मुख सिर नवाकर ही वो श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन कर सकेंगे, तभी उनकी भाषा तथा कविता का जो प्रभाव उन्होंने कहा है सत्य हो सकेगा।

मानस गान अभी आप सुन रहे थे। जुड़े हैं आप FM शिमला के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:50 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं देश गान।

0: देशगान अभी आपने सुना। एफएम शिमला के साथ जुड़े हैं आप और ये समय है एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का। आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने प्रदेश की प्राकृतिक धरोहर, स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त हिमाचल के लिए सामूहिक प्रयासों पर बल दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर राज्यपाल ने कल शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से स्वच्छ पर्यावरण व नशा मुक्त जीवन विषय पर आयोजित मिनी मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विश्व पर्यावरण दिवस पर शिमला के रिज मैदान पर आयोजित कार्यक्रम में सभी वर्गों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने सभी से पर्यावरण

0: संरक्षण को जीवन शैली का हिस्सा बनाने का आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान को लेकर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में चिट्टा व अन्य नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज व स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत से कांग्रेस सरकार के मंत्री बौखलाहट में अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में लगातार हार और जनता के बीच घटते जनाधार के कारण कांग्रेस नेता धार्मिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर विवादित बयान देकर ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन भारत क्षेत्र जोन 2 का आयोजन हरियाणा विधानसभा द्वारा 8 से 10 जून तक चंडीगढ़ विधानमंडल में किया जाएगा। सम्मेलन में 5 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर और पंजाब के पीठासीन अधिकारी भाग लेंगे। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश के आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में जल्द ही एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनें उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को घर द्वार के समीप बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि प्रदेश में हाल ही में हुए स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भाजपा को मिले भारी जनसमर्थन से कांग्रेस की राजनीतिक विदाई यात्रा शुरू हो चुकी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से अब छुटकारा चाहती है और आने वाले समय में ये जन आक्रोश और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ जुड़े हैं आप। हिंदी समाचार आइए सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की दर से बढ़ी है। दमण में कल 2,970 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गुजरात के सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया हरित भविष्य की ओर आगे बढ़ रही है और भारत आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: आज भारत प्रकृति के साथ प्रगति का मंत्र लेकर विकास कर रहा है। इकोनॉमी भी, इकोलॉजी भी, सूरत में तो ये प्रत्यक्ष दिखता है। आजकल सूरत की सर्कुलर वाटर इकोनॉमी की बहुत चर्चा होती है। यहाँ शहर के वेस्ट वाटर को ट्रीट करके इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाता है। इससे गंदे पानी का मैनेजमेंट भी हो जाता है और पानी से कमाई भी होती है।
0: श्री मोदी ने बताया कि भारत की कुल 250 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50 गीगावाट अकेले गुजरात की है। वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक

0: वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है, जबकि 2024-25 के लिए इसका संशोधित अनुमान 299 लाख करोड़ रुपए से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजने के संबंध में एक द्विपक्षीय व्यवस्था अपनाई गई है। भारत ने तथाकथित गिलगित बाल्टिस्तान असेंबली का आम चुनाव कराने की पाकिस्तान की योजना का कड़ा विरोध किया है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ये चुनाव कल होने वाले हैं। भारत ने अपने इस पुराने रुख को दोहराया है कि गिलगित बाल्टिस्तान सहित जम्मू कश्मीर और लद्दाख के संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न अंग हैं। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो 3 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और श्री सुगियोनो कल नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 942,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है। मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। एशिया कप अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत का सामना जापान से होगा। जापान के काका मिगाहारा में कल सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत की अंडर 18 लड़कियों की टीम सेमीफाइनल में चीन से हार गई थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: जुड़े हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ। आइए सुनते हैं चिंतन।

भगवान श्री रामचंद्र जब समुद्र सेतु बांध रहे थे तब विघ्न निर्वारणार्थ पहले उन्होंने गणेश जी की स्थापना कर नवग्रहों की 9 प्रतिमाएं नल के हाथों स्थापित कराई। तत्पश्चात उनका विचार सागर संयोग पर एक अपने नाम से शिवलिंग स्थापित कराने का हुआ। इसी के लिए हनुमान जी को बुलाकर कहा, मुहूर्त के भीतर काशी जाकर भगवान शंकर से लिंग मांगकर लाओ, पर देखना मुहूर्त न टलने पाए। हनुमान जी क्षण भर में वाराणसी पहुंच गए। भगवान शंकर ने कहा, मैं पहले से ही दक्षिण जाने के विचार में था, क्योंकि अगस्त्य जी विंध्याचल को नीचा करने के लिए यहाँ से चले तो गए, पर उन्हें मेरे वियोग का बड़ा कष्ट है। वे अभी भी मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, एक तो श्री राम के तथा दूसरा अपने नाम पर स्थापित करने के लिए इन 2 लिंगों को ले चलो। इस पर हनुमान जी को अपनी महत्ता तथा तीव्रगामिता का थोड़ा सा गर्वाभास हो आया। इधर कृपा सिंधु भगवान को अपने इस भक्त की रोगोत्पत्ति की बात मालूम हो गई। उन्होंने सुग्रीव आदि को बुलाया, अब मुहूर्त बीतना ही चाहता है, अतएव मैं सैकत यानी बालुकामय लिंग की स्थापना किए देता हूँ। यूं कहकर मुनियों की सम्मति से उन्हीं के बीच बैठकर विधि विधान से उस सैकत लिंग की स्थापना कर दी। दक्षिणा दान के लिए प्रभु ने कौस्तुभ मणि को स्मरण किया। स्मरण करते ही वो मणि आकाश से सूर्यवत आ पहुंची। प्रभु ने उसे गले में बांध लिया। उस मणि के प्रभाव से वहां धन, वस्त्र, गौएं, अश्व, आभरण और पायस आदि दिव्य अन्नों का ढेर लग गया। भगवान से अभी पूजित होकर ऋषिगण अपने घर को चले।

0: समय उन्हें हनुमान जी मिले। उन्होंने मुनि से पूछा, महाराज आप लोगों की किसने पूजा की है? उन्होंने कहा, श्री राघवेंद्र ने शिवलिंग की प्रतिष्ठा की है, उन्होंने ही हमारी दक्षिणा दान मान आदि से पूजा की है। अब हनुमान जी को भगवान के मायावश क्रोध आया। वे सोचने लगे, देखो श्री राम ने व्यर्थ का श्रम करवाकर मेरे साथ ही कैसा व्यवहार किया। दूसरे ही क्षण वे प्रभु के पास पहुंच गए और कहने लगे, क्या लंका जाकर सीता का पता लगाने का यही इनाम है? यूं काशी भेजकर लिंग मंगाकर मेरा उपहास किया जा रहा है। यदि आपके मन में यही बात थी तो व्यर्थ को मेरे द्वारा श्रम क्यों कराया? दयाधाम भगवान शांति से बोले, पवन नंदन तुम बिल्कुल ठीक ही तो कहते हो। क्या हुआ? तुम मेरे द्वारा स्थापित इस बालुकामय लिंग को उखाड़ डालो, मैं अभी तुम्हारे लाए लिंग को स्थापित कर देता हूँ। बहुत ठीक कहकर अपनी पूंछ में लपेट कर हनुमान जी ने उस लिंग को बड़े जोर से खींचा। पर आश्चर्य, लिंग का उखड़ना या हिलना डुलना तो दूर की बात रही, वो टस से मस तक न हुआ, उल्टे हनुमान जी की पूंछ ही टूट गई। वीर शिरोमणि हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। सब वानर जोरों से हंस पड़े। स्वस्थ होने पर हनुमान जी सर्वथा गर्व विहीन हो गए। उन्होंने प्रभु के चरणों में नमस्कार किया और क्षमा मांगी। प्रभु को क्या था, क्षमा तो पहले से ही कर दी हुई थी। भक्त का भयंकर रोग उत्पन्न होते ना होते दूर कर दिया। तत्पश्चात विधिपूर्वक अपने स्थापित लिंग के उत्तर में विश्वनाथ लिंग के नाम से उन्होंने हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंगों की स्थापना कराई और वर दिया, कोई यदि पहले हनुमत प्रतिष्ठित विश्वनाथ लिंग की अर्चना ना कर मेरे द्वारा स्थापित रामेश्वर लिंग की पूजा करेगा तो उसकी पूजा व्यर्थ होगी। फिर प्रभु ने हनुमान जी से कहा, तुम भी यहाँ छिन्न पुच्छ गुप्त पाद रूप से गत गर्व होकर निवास करो। इस पर हनुमान जी ने भी एक वैसी ही छिन्न पुच्छ गुप्त पाद गत गर्व मुद्रामयी प्रतिमा स्थापित कर दी। वो आज भी वहां स्थापित है।
1: आत्मपथ पर आरूढ़ होने के लिए चित्त का विषयों से विरक्त होना प्राथमिक आवश्यकता है। इस क्रम में वैराग्य क्या है, पहले हम ये जानें। वैराग्य के स्वरूप को जान लेने के बाद उसकी प्राप्ति के उपायों को समझना भी परम आवश्यक है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में वैराग्य साधक नानाविध उपायों की चर्चा की है, जिनमें सरलतम उपाय है वीत राग विषयम वा चित्तम। संसार के पदार्थों में आसक्ति ना होने का नाम ही वैराग्य है।
2: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रस्तुतकर्ता थे डॉक्टर हुकुम शर्मा। वन 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यून इन है FM शिमला के साथ। 7:10 हो चुके हैं और ये समय रहता है ये जानने का कि आज दिन भर कौन से कार्यक्रम आप किस किस समय सुन पाएंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं कार्यक्रम रूपरेखा की, तो बता देते हैं आपको कि अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 7:15 पर आप सुनेंगे गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम। FM हाइलाइट्स का समय रहेगा 7:57, FM न्यूज़ हेडलाइंस 8:30 और 9:57। 8:00 सुनिएगा समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज लेकर हाजिर रहेंगे हिमाचली लोकगीतों का आनंद आप ले पाएंगे 8:32 पर लोक संगीत कार्यक्रम में और 11:30 पर पहाड़ी संगीत और 2:30 पर शिखरों के स्वर कार्यक्रम में। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकते हैं 9:20, 11:00, दोपहर 3:00, 6:30 और 7:45 पर। कुदरत के रंग ये कार्यक्रम सुनिएगा 9:30 पर और 10:00 सुनना ना भूलिएगा लाइव फोन इन प्रोग्राम आपकी फरमाइश। ग्यारह पर हाजिर रहेंगे पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम लेकर और 12:20 पर आप सुन सकते हैं महिला सम्मेलन कार्यक्रम और 1:10 का समय रहता है म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम का।

दो बजे आप सुन पाएंगे सबरंग कार्यक्रम 3:05 पर जिले की चिट्ठी और 3:10 पर लीजिएगा आनंद ओल्ड हिट्स फिल्म म्यूजिक का। युवा साथी अपना कार्यक्रम युववाणी सुन सकते हैं 3:30 पर और 4 स्थानीय सूचनाओं के साथ लीजिएगा आनंद फिल्म संगीत का। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में 4:20 पर आप सुनेंगे चंब्याली कार्यक्रम। 4:50 का समय रहेगा मंडियाली कार्यक्रम का। पंगवाली कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 5:20 पर। 6:06 पर सुनिएगा कांगड़ी कार्यक्रम और महासुई कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं 6:35 पर। हमेशा की तरह 7:10 पर आप सुन सकते हैं कृषि जगत कार्यक्रम।

कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 5:20 पर, 6:06 पर सुनिएगा कांगड़ी कार्यक्रम, और महासुई कार्यक्रम का आनंद आप ले सकते हैं 6:35 पर। हमेशा की तरह 7:10 पर आप सुन सकते हैं कृषि जगत कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:00। कार्यक्रम एक फिल्म से मैं आप सुन सकते हैं किसी एक फिल्म के गीत, ये आप सुन पाएंगे 9:15 पर, और 9:30 पर सुनना ना भूलिएगा ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन। गज़लें आप सुन पाएंगे 10:00 और 10:30 का समय रहेगा सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। इन सब के अलावा हिंदी में समाचार आप सुन सकते हैं 12:00, 1:00, 2:15 पर, और 8:45 पर, और 11:00। अंग्रेजी में समाचार आप सुनिएगा 12:05 पर, 1:05 पर, और 7:05 पर, और उसके बाद 11:05 पर। फिल्म संगीत 8:45 पर, 12:10 पर, और 8:30 पर आप सुन पाएंगे। तो ये थी कार्यक्रम रूपरेखा, बने रहिए FM शिमला के साथ।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यूनिंग है FM शिमला के साथ और आप सभी का स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में। जी हाँ, कार्यक्रम रहता है फुल ऑफ एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशंस भी हम जानते हैं इस कार्यक्रम में, और साथ ही साथ करते हैं बात आज के इतिहास की भी, यानी कि आज है 6 जून, क्या खास हुआ था आज के दिन इतिहास में ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत।

सूरज की पहली किरण के साथ नया दिन शुरू होता है और नए सपने और नए काम करने की इच्छा भी। अगर आप किसी कार्य को करने का दृढ़ निश्चय कर ले तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप। और देखिए ना, अपनी लाइफ में हर कोई एम्बिशियस रहता है, बहुत कुछ करना चाहता है, किंतु यदि मन में कुछ भी करने का दृढ़ निश्चय ना हो तो सफलता में थोड़ा सा संदेह रह ही जाता है। लेकिन यदि दृढ़ निश्चय हो तो कुछ भी कठिन नहीं। गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम रहता है इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट से भरपूर। गीत संगीत चला रहेगा, लेकिन बात करते हैं 6 जून की। 6 जून को मुख्य रूप से विश्व कीट दिवस और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की याद में डी डे मनाया जाता है। 6 जून 1944 को इतिहास की सबसे बड़ी उभयचर लैंडिंग डी डे की शुरुआत हुई थी, जब मित्र देशों की सेनाएं फ्रांस से उत्तरी तट पर स्थित नॉर्मेंडी में उतरी। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से 6 जून हमारे देश के लिए भी बहुत खास है। वर्ष 1674 में

6 जून को छत्रपति शिवाजी महाराज का रायगढ़ किले में राज्याभिषेक हुआ था। और साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि 6 जून के इतिहास की जब हम बात कर रहे हैं तो इस दिन 1966 को अमेरिका में जेम्स मेरेडिथ द्वारा शुरू किए गए मार्च अगेंस्ट फियर के दौरान उन पर जानलेवा हमला हुआ, जिससे नस्लभेदी विरोधी नागरिक अधिकार आंदोलन को एक नई दिशा मिली थी। और भी जानेंगे बहुत कुछ, फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: गुड मॉर्निंग, शिमला प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप FM शिमला से। जी हाँ, और हम बात कर रहे हैं 6 जून की महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो इसी कड़ी में जान लेते हैं कि वर्ष 1995 में आज ही के दिन यानी कि 6 जून को पाकिस्तान में बाल अपराधियों को कोड़े मारने और उनकी फांसी की सज़ा प्रतिबंधित की गई थी। आज ही के दिन वर्ष 1997 में बैंकॉक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड ने बिस्टेक नामक आर्थिक सहयोग समूह का गठन भी किया था। और वर्ष 2001 में शाही पर गोलियां दीपेंद्र ने चलाई थी। प्रत्यक्षदर्शी रिश्तेदार राजीव शाही का प्रेस में ये बयान निकला था। वर्ष 2002 में 6 जून को ही इसराइली सेना ने रामलल्ला में फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफत के मुख्यालय पर हमला किया था। और वर्ष 2004 में भूतपूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का निधन 6 जून को ही हुआ था।

और वर्ष 2005 में ईरान गैस पाइपलाइन योजना पर भारत और पाकिस्तान में सहमति जताई गई थी। वर्ष 2007 में 6 जून के दिन ही दक्षिण अफ्रीका की नस्ल विरोधी नेता विनी मेडिकिज़ेला मंडेला के कनाडा प्रवेश पर रोक लगाई गई थी। वर्ष 2008 में कर्नाटक में बीएस येदुरप्पा की अगुवाई वाली बीजेपी की पहली सरकार ने विश्वास मत हासिल किया था और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जापानी लैब कीबो ने कार्य करना शुरू किया था। और भी बहुत कुछ घटनाएं घटी आज के दिन, और बात वो भी करेंगे कि आज का दिन किसके लिए खास है, मतलब किन व्यक्तियों का या महान हस्तियों का जन्म आज के दिन हुआ था। फिलहाल सुन लेते हैं ये गीत।

0: इंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम और बात कर रहे हैं 6 जून की। 6 जून को घलूघारा दिवस भी मनाया जाता है पंजाब में, और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना आज के दिन हुई थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति स्थापना दिवस के रूप में भी 6 जून को हम जानते हैं। अब बात करते हैं उन फेमस हस्तियों की जिनका जन्म हुआ है 6 जून को। जी हाँ, 6 जून 1891 की अगर हम बात करें तो मास्ती वेंकटेश अयंकार, जो कि कन्नड़ कहानी के प्रवर्तक और कन्नड़ की संपत्ति के रूप में ख्याति प्राप्त कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और अनुवादक और आलोचक रहे, उनका जन्म हुआ था। और 1930 में 6 जून को ही हिंदी फिल्म अभिनेता सुनील दत्त का जन्म भी हुआ था। वर्ष 1936 में आज ही के दिन डी रामा नायडू, जो कि एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता रहे, उनका भी जन्म हुआ था। और वर्ष 1939 में गुरबचन सिंह रंधावा, भारत के प्रसिद्ध एथलीट ये रहे हैं, उनका जन्म भी हुआ था। और वर्ष 1924 में एस आर बोम्मई, जो कि जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने भी जन्म लिया था। इन सबके अलावा सुकर्णो, जो कि इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति रहे, उनका जन्म हुआ था वर्ष 1901 को 6 जून के ही दिन। और 6 जून 1884 को शौक बहराइची, जो कि एक प्रसिद्ध शायर रहे हैं, उनका भी जन्म हुआ था। 1829 में 6 जून के दिन ह्यूम एओ, जो कि एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे, उनका जन्म भी हुआ था। और 1955 में आज ही के दिन वेद प्रकाश शर्मा, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार रहे, उनका भी जन्म हुआ था। इसके अलावा वर्ष 1919 में राजेंद्र कृष्ण, हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध गीतकार ये रहे, उन्होंने भी जन्म लिया था। और गिरिधर शर्मा नवरत्न, जो कि हिंदी भाषा के साहित्यकार थे, उनका जन्म भी 6 जून को ही हुआ था वर्ष 1881 में। इन और एक और बात करते हैं आलमगीर द्वितीय की, जो कि 16वें मुगल बादशाह थे, जिन्होंने 1754 से 1759 ईस्वी तक राज्य किया, उनका जन्म भी हुआ था 6 जून 1999 को। और हमारे बहुत सारे लिसनर्स भी ऐसे होंगे जो आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके लिए आज का ये दिन खास होगा किसी और वजह से, तो उनको भी हमारी ओर से अनंत शुभकामनाएं। सुनते हैं एक और गीत, फिलहाल ये संदेश।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग शिमला, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप? और प्रोग्राम पहुंच चुका है अंतिम पड़ाव पर, प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग एंजॉय करने जा रहे हैं आप पूरब और पश्चिम फिल्म से, आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ, कुदरत के रंग कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे 9:30 पर। 10 बजे सुनना ना भूलिएगा लाइव फोन इन प्रोग्राम आपकी फरमाइश। और 11:05 पर हाजिर रहेंगे पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम लेकर। और 12:20 पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम आप सुनेंगे। और 1:10 का समय रहेगा म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम का। 2 बजे सुनिएगा सबरंग कार्यक्रम। 3:10 पर ओल्ड हिट्स। 3:05 पर जिले की चिट्ठी। और 3:30 पर युवा दोस्त सुन सकते हैं अपना कार्यक्रम युववाणी। और इसके अलावा शाम के कार्यक्रमों में 7:10 पर आप सुनिएगा कृषि जगत कार्यक्रम। 8 बजे भूले बिसरे गीत लेकर हाजिर रहेंगे। और 9:15 का समय रहेगा एक फिल्म से कार्यक्रम का। 9:30 पर सुनेगा दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम, जो कि रहेगा ईमेल बेस्ड। और 10 बजे लीजिएगा आनंद गजलों का। और 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे कार्यक्रम। FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप और हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:57 होने ही वाले हैं। और अब आप सुनेंगे FM न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। लोक निर्माण व शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में युवा चेहरे जीतकर आए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को स्वीकृति मिलने और विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने एवं सृजित करने का भी निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके अलावा इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। प्रदेश में कल रात 10 बजे के बाद कई स्थानों पर भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.0 व इससे नीचे की मापी गई है। भूकंप का केंद्र चंबा और कांगड़ा जिले की सीमा के निकट धर्मशाला क्षेत्र में जमीन से करीब 5 किलोमीटर की गहराई में स्थित था। इस भूकंप से किसी भी प्रकार के जानमाल

0: नुकसान की कोई सूचना नहीं है। शिमला जिला में पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने आदेश जारी कर जिला की सभी पंचायत समितियों के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, जबकि जिला परिषद शिमला के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह भी आज ही उपायुक्त कार्यालय में आयोजित होगा। पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 31 तारीख तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं। गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं भेजने की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू की गई है। राज्य सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने प्रदेश में जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल समावेशी व सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कल शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत अपशिष्ट प्रबंधन, कचरा संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और अन्य जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल विकास प्राथमिकताओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम शिमला सुन रहे हैं आप समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। मौसम विभाग ने 9 जून तक केरल के उत्तरी जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश ने वित्त वर्ष 2025-26 में 7.7% की मजबूत वृद्धि दर्ज की है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
5: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
4: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच

0: संतुलन बनाकर इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
1: ये जो वैश्विक संकट चल रहा है, ये दिखाता है कि एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भरता कितनी जरूरी है। और बीते 12 वर्षों में देश ने जो कैपेसिटी तैयार की है, उसका कितना बड़ा महत्व है। 12 वर्ष पहले भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन नाम मात्र का था, आज हम दुनिया के टॉप 5 देशों में से एक हैं।
0: इससे पहले श्री मोदी ने सूरत में 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट में गुजरात का योगदान 50 गीगावाट है। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। एक रिपोर्ट।
2: नई व्यवस्था के तहत जनरल रूट से निवेश करने वाले FPI को अधिक लचीलापन मिलेगा, क्योंकि कुछ निवेश संबंधी प्रतिबंध हटाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋणों में निवेश के लिए लागू जनरल और लॉन्ग टर्म श्रेणियों को मिलाकर एक एकीकृत निवेश सीमा भी निर्धारित की है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश सीमा 4,62,490 करोड़ और दूसरी छमाही के लिए 4,77,006 करोड़ तय की गई है। राज्य विकास ऋणों के लिए ये सीमा पहली छमाही में 1,53,043 करोड़ और दूसरी छमाही में 1,64,242 करोड़ निर्धारित की गई है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: वित्त वर्ष 2025-26 में भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत गति बरकरार है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 2024-25 के 7.1% की तुलना में 2025-26 में 7.7% की वृद्धि का अनुमान है। 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 323 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश भर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया ये अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है।
3: मंत्रालय के अनुसार अभियान के अंतर्गत अब तक 17,800 से अधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनसे लगभग 7 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 3,700 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 1,50,000 से अधिक प्रतिभागियों को उर्वरक उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती की जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने ये भी बताया कि किसानों को जैविक और वैकल्पिक पोषक तत्वों के उपयोग की जानकारी देने के लिए 8,850 से अधिक व्यावहारिक प्रदर्शन भी आयोजित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करना और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना है। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। 3 दिन की भारत यात्रा पर कल श्री खनाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ये यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी।
4: With Nepal, we have an expansive agenda.
5: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपने इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
4: Partnership that we have with Nepal.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
7: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
6: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से लगातार चल रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए

0: कर रहा है। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान के खोखले बयान और झूठे दावे इस मूलभूत वास्तविकता को नहीं बदल सकते।
1: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है, यह पक्षपाती और नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 2026 में अब तक 1076 भारतीय नागरिकों को अमेरिका से भारत वापस भेजा जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 2025 में अमेरिका से 3567 भारतीय नागरिक वापस भेजे गए थे। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच प्रवासन और आवागमन को लेकर बातचीत जारी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत में पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई SU-57 के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव दिया है। सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान उन्होंने कहा कि रूस SU-57 कार्यक्रम में भारत की भागीदारी का इच्छुक है। श्री पुतिन ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणालियों और अन्य रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी भारत के साथ सहयोग की इच्छा जताई है। भारतीय शांतिदूत मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने प्रतिष्ठित 2025 संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में भारतीय बटालियन के साथ सेवारत मेजर बराक को संयुक्त राष्ट्र शांतिदूतों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया। अमरीका की सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर हमला किया है। अमरीका ने कहा है कि क्षेत्रीय समुद्री यातायात को निशाना बनाने वाले ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जाने के बाद ये कार्रवाई की गई। इससे अमरीका और ईरान के बीच रुकी हुई शांति वार्ताओं पर और दबाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: ये हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच कूटनीतिक बातचीत रुकी हुई है। ईरान विदेशों में अपनी अरबों डॉलर की परिसंपत्तियों पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग कर रहा है। ईरान के अधिकारी किसी भी अंतरिम समझौते की प्रगति को इन प्रतिबंधों से जोड़ रहे हैं। इस बीच लेबनान में हिजबुल्ला ने अमेरिका की मध्यस्थता वाले इसराइल और लेबनान सरकार द्वारा स्वीकार किए युद्ध विराम प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हिजबुल्ला के अनुसार किसी भी समझौते में दक्षिणी लेबनान से इसराइल की सेना की वापसी की बात शामिल होनी चाहिए। हिजबुल्ला ने ब्यूफोर्ट किले के पास इजरायल की सेना पर हमले किए हैं। इस किले को इजरायल की सेना ने हालिया हमले के बाद अपने अधिकार में ले लिया था। ईरान ने हिजबुल्ला के लिए अपने समर्थन की बात दोहराई है। समाचार कक्ष से विनोद की रिपोर्ट के साथ मैं राजेश कुमार मीणा।
0: केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के तीव्र होने के साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी जिलों में 9 जून तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों के लिए आज रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड में कल भी रेड अलर्ट रहेगा। अन्य 6 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानानंद ने अंतिम दौर में जर्मनी की विंसेंट क्रीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं। नॉर्वे शतरंज में प्रज्ञानानंद ने विश्व के नंबर एक खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया था। भारत और अफगानिस्तान के बीच आज से शुरू हो रहा क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। इससे पहले 2018 में अफगानिस्तान ने भारत के साथ पहला टेस्ट मैच खेला था। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। गोवा के मडगांव में मैच शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: भारत की आर्थिक वृद्धि में बढ़त की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, संकट के बीच भारत की जीडीपी में उछाल, चौथी तिमाही में 7.8% रही। पत्र के अनुसार मजबूत मांग और उत्पादन के कारण रफ्तार तेज रही। नवभारत टाइम्स के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ये 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत और आर्थिक सुधारों का नतीजा है। पत्र के अनुसार विदेशी पूंजी के लिए टैक्स फ्री राहत तैयार, आरबीआई ने बिना सीमा

विदेशी निवेश का दायरा बढ़ाया। देशबंधु के अनुसार लोन महंगे नहीं होंगे और ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक शीर्षक से लिखा है, एआई का ग्लोबल हब बनेंगे हम। ऑस्ट्रेलियाई कंपनी देश में 3,00,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। 5 गीगावाट क्षमता का डेटा सेंटर बनाएगी एयर ट्रंक। जनसत्ता ने अध्ययन शीर्षक से लिखा है, अमेरिका के 96 यूनिकॉर्न में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान। इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संग SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR, दिल्ली की मुख्यमंत्री

0: में भारतीय मूल के उद्यमियों का योगदान, इनमें कृत्रिम मेधा आधारित सर्च इंजन परप्लेक्सिटी भी शामिल। पत्र के अनुसार नव उद्यमों में 59% की स्थापना प्रवासी उद्यमियों ने की। वीर अर्जुन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से लिखा है, मेरे मोदी अच्छे मित्र हैं, व्यापार समझौता हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, व्यापार समझौता का पहला चरण जुलाई तक संभव। दैनिक जागरण लिखता है, भारत संघ SU-57 बनाने को रूस तैयार। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान देने की पेशकश। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, लापरवाह अफसरों पर सीधे FIR। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों को और प्रभावी बनाने का ऐतिहासिक फैसला किया गया। जनसत्ता ने अनदेखी की आग शीर्षक से संपादकीय में लिखा है कि कोई हादसा एक मामूली कोताही का नतीजा हो सकता है, लेकिन अगर वो गलती बनी रही तो उन्हें आपराधिक लापरवाही से कम नहीं माना जा सकता।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था विशेष रूप से मजबूत बनी हुई है। रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों को नियमों में छूट दी। कृषि मंत्रालय ने कहा, संतुलित उर्वरक उपयोग और सतत कृषि के लिए 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान में शामिल हुए। भारत ने जम्मू कश्मीर मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग करने के लिए पाकिस्तान की निंदा की। और भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञान आनंद नॉर्वे शतरंज खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has asserted that the foundation of the Indian economy remains exceptionally strong, with the nation recording a robust 7.7% growth in the fiscal year 2025-26 despite a global economic crisis. Addressing a large gathering after launching a series of developmental projects worth around 2,970 crore rupees in Daman last evening, the Prime Minister noted that India continues to be among the fastest growing economies in the world. He assured the citizens that the country will forge ahead with its reform express while prioritizing massive infrastructure development and welfare schemes for the poor.
3: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
2: Earlier, Mr. Modi launched various infrastructure projects worth over 18,000 crore rupees in Surat. Addressing the gathering, the Prime Minister pointed out that out of India's total renewable energy capacity of 250 gigawatts, Gujarat alone contributes 50 gigawatts, accounting for a crucial fifth of the nation's green energy share. He added that the state is poised to play a massive role in shifting from solar energy to green hydrogen and green ammonia, which is essential for achieving energy self-reliance.
3: दुनिया अब हरित युग की तरफ, ग्रीन फ्यूचर की तरफ बहुत ही सावधान हो चुकी है। भारत भी ग्रीन ग्रोथ पर बहुत अधिक काम कर रहा है और इसमें भी गुजरात राज्य है जिसने इस शताब्दी के प्रारंभ में ही सरकार में क्लाइमेट चेंज का अलग डिपार्टमेंट बनाया था और गुजरात के चारणका गांव में भारत का पहला

0: economy sprints to 7.8% growth in fourth quarter for 2026. The first tranche of India-US interim trade deal likely by mid-July, says Piyush Goyal, reports the Hindu Business Line. The Pioneer informs Shah vows zero tolerance on demographic shifts as he addressed BSF personnel at Lankamura border outpost. CBSE drops CoEMS portal for re-evaluation with student and examination data migrated to infrastructure under the board's direct control, cites Hindustan Times. The Asian Age headlines, Putin says Russia ready to jointly build Su-57 stealth jet with India, suggests strong strategic partnership between the two countries. And finally, wind from Milky Way's black hole called Sagittarius A has been discovered after 5 decades of trying. Its wind is like a gentle breeze, not a hurricane. The wind has carved out a huge conical cavity in space, informs the Asian Age. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asserts Indian economy remains exceptionally strong despite global economic crisis. Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council to peddle false narratives about Jammu and Kashmir. IMD forecasts extremely heavy rainfall in northern districts of Kerala until June 9th. And Indian Grandmaster R. Pragyanan scripts history, becomes first Indian to win Norway chess title. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: पर आप ट्यूनिंग है आकाशवाणी FM शिमला के साथ. हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:30 हो चुके हैं. आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस.
3: नमस्कार, FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के कल 7 जून को 12 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं. इस अवसर पर प्रदेश भाजपा राज्यभर में महाजनसंपर्क अभियान चलाएगी. चंबा जिला में जनगणना 2027 के कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए लगभग 1400 अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. चंबा के उपायुक्त मुकेश जयसवाल ने जिले के सभी नागरिकों से जनगणना के दौरान सही व पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है. भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय से राज्य के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के 48 छात्रों का प्रतिनिधिमंडल पुडुचेरी के लिए रवाना हुआ. इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सामाजिक समन्वय को मजबूत बनाना है. प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में होगी. इस बैठक में मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को स्वीकृति मिलने और विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने व नए पद सृजित करने का भी निर्णय लिए जाने की संभावना है. इसके अलावा इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं. प्रदेश में कल रात 10 बजे के बाद कई स्थानों पर भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.0 व इससे नीचे की मापी गई है. भूकंप का केंद्र चंबा और कांगड़ा जिले की सीमा के निकट धर्मशाला क्षेत्र में जमीन से करीब 5 किलोमीटर की गहराई में स्थित था. इस भूकंप से किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. पद्म पुरस्कार 2027 के नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 31 तारीख तक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेजे जा सकते हैं. गृह मंत्रालय ने कहा है कि पद्म पुरस्कारों के लिए आवेदन और अनुशंसाएं भेजने की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू की गई है. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देशभर में अब तक 9,42,000 से अधिक किसान खेत बचाओ अभियान से जुड़ चुके हैं. संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया यह अभियान अब जन आंदोलन का रूप ले रहा है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर कल 7 जून तक कर दी है. CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब रविवार मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे. FM न्यूज़ हेडलाइंस में अभी बस इतना ही. नमस्कार.

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यूनिन है FM शिमला के साथ और फिल्म संगीत का समय है। सबसे पहले आपको सुनाते हैं अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान का गाया ये गीत।

दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे के नसीब में नहीं, फिर भी मोहब्बत दिन ब दिन बेपनाह होती जा रही है। कितनी खूबसूरत हो जाती है ये दुनिया जब कोई अपना कहता है कि तुम बहुत याद आते हो। दीवानी मस्तानी फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी श्रेया घोषाल की।

0: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं FM शिमला से। आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे हमने लिया है बागवान फिल्म से।
1: Listen up, yo.

खुशियों चली, पहली मुलाकात थी और हम दोनों ही बेबस। वो अपने जुल्फे ना संभाल पाए और हम खुद को। मुझसे जब भी मिलो तो नज़रें उठा के मिला करो, मुझे पसंद है अपने आप को तुम्हारी आंखों में देखना। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं FM शिमला से, और कार्यक्रम का अंतिम नगमा हमने लिया है हैप्पी न्यू ईयर फिल्म के इस गीत के रूप में। इरशाद कामिल के बोल हैं और आवाज़ें हैं नीति मोहन और विशाल डटलानी की। आइए सुनते हैं।

हम इस देश के वासी हैं जहां रोज ही दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी, हर दिल में तिरंगा रहता है।

आइए अब जान लेते हैं कि आज हमारे प्राइमरी चैनल से किन कार्यक्रमों का आनंद आप किस समय ले पाएंगे। जी हाँ, बात कर रहे हैं पीसी हाइलाइट्स की। 9:30 पर आप सुनिएगा सुरबेला कार्यक्रम। 10 बजे का समय रहेगा रिमझिम कार्यक्रम का और 11:05 पर आप लोक संगीत का आनंद ले सकते हैं। महिलाएं अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुन पाएंगी 12:20 पर और 1:10 का समय रहेगा सैनिकों के लिए कार्यक्रम का और 2 बजे सुनिएगा सुनहरी किरणें कार्यक्रम। हिम गुंजन आप सुन पाएंगे 2:30 पर और हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों के अंतर्गत 4:20 पर आप ले पाएंगे आनंद चंप्याली कार्यक्रम का। कांगड़ी कार्यक्रम आप सुनेंगे 6:06 पर और 6:35 पर सुनिएगा महासुई कार्यक्रम। पर जरूर सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले प्रोग्राम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। 7:10 पर केंद्र सरकार 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम आप सुन पाएंगे और 8 बजे सुनिएगा धारारे गीत कार्यक्रम। 8:30 पर आप आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। हिम दर्शन ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 9:15 पर और शाम 9:30 पर दिल्ली रिले किया जाएगा राष्ट्रीय साहित्य पत्रिका साहित्य भारती। रात 10 बजे आप सुनेंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। तो ये थी पीसी हाइलाइट्स यानी कि प्रमुख कार्यक्रम जिनका आनंद आप ले सकते हैं आज दिन भर हमारे प्राइमरी चैनल पर। FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप 103.7 MHz पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी प्रसारित कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय

0: वैसे स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा कर रही है राज्य सरकार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने और चुनावों में उत्साहपूर्वक भाग लेने का किया आह्वान। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में, लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिवा परियोजना के तहत 586 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान कर 10 जून से पहले कार्य पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब में हिमाचल के वाहनों से वसूले जा रहे खालसा टैक्स को गलत बताया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के निकट पोआबो गांव में वन विभाग द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित कमियाना हिल टॉप नेचर ट्रेल के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। करीब 8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस परियोजना में 2.5 किलोमीटर लंबा प्रकृति पथ विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता, प्रकृति के प्रति रुचि, जैव विविधता संरक्षण व सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ईमानदारी, पारदर्शिता व जनभावना की सेवा से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत 16 सड़कों के निर्माण के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपये देने की घोषणा भी की। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती मतदाताओं की जागरूकता और सहभागिता पर निर्भर करती है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने और चुनावों में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शिता चुनाव का आधार है और इस सूची में अनुपस्थित, डुप्लीकेट, मृत व विदेशी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रदेश के मतदाताओं का आभार भी जताया।
1: शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनाव का आधार है और शुद्ध मतदाता सूची में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और फॉरेनर्स, इनका स्थान नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी भारत का नागरिक 18 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो और उस मतदान केंद्र के आसपास रहता हो, उसका नाम अवश्य होना चाहिए।
0: प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों व पेंशनरों से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों पर चर्चा संभावित है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने व सृजित करने पर भी बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं को भी स्वीकृति मिल सकती है। प्रदेश में एचपी शिवा परियोजना के पहले चरण में लगभग 3,083 हेक्टेयर क्षेत्र को अंतिम रूप दिया गया है, जिस पर कार्य जारी है। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिमला में आयोजित इस परियोजना के दूसरे चरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि दूसरे चरण के लिए 7 जिलों में करीब 3,000 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया जाना है, जिसमें से 2,414 हेक्टेयर क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा रहा है और लगभग 586 हेक्टेयर क्षेत्र की कमी पाई गई है। उन्होंने अधिकारियों को 10 जून से पहले 586 हेक्टेयर क्षेत्र

0: की पहचान कर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। कांगड़ा व चंबा सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीती रात 10 बजे के बाद भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई और इसका केंद्र 32.289 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 76.434 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मात्र 5 किलोमीटर की कम गहराई पर स्थित था। हालांकि इस भूकंप से किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि भूकंप के 3 झटकों से लोग सहम गए।
1: चंबा जिला में 2 घंटे के अंतराल के बीच आए भूकंप के 3 झटकों ने जिलावासियों को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि इन झटकों से कहीं भी किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन एक के बाद एक महसूस हुए इन झटकों के बाद लोग सहमे हुए हैं। पहला झटका 10:04 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 5 आंकी गई। उसके पश्चात 11:03 पर दूसरा झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 2.8 आंकी गई। वहीं तीसरा झटका 11:52 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3 आंकी गई। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
0: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब में हिमाचल के वाहनों से वसूले जा रहे खालसा टैक्स को गलत बताया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल और पंजाब की सरकारों को इस विषय पर बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि दोनों राज्यों के नागरिकों का आपसी संपर्क और आवाजाही लगातार बनी रहती है। शिमला जिला में पंचायतीराज संस्थाओं के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जिले की सभी पंचायत समितियों के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, जबकि जिला परिषद शिमला के नव निर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में होगा। जिला की 13 पंचायत समितियों चौपाल, ननखड़ी, रामपुर, रोहड़ू, ठियोग, जुब्बल, कोटखाई, कुपबी, बसंतपुर, मशोबरा, ननखड़ी, छोहारा और टूटू में संबंधित एसडीएम व तहसीलदारों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों की निगरानी में नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। देश सहित प्रदेश भर में जनगणना 2026 का कार्य जारी है। जनगणना को अधिक सटीक व पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। हमारे ऊना जिला संवाददाता ने बताया कि ऊना जिले में भी जिला प्रशासन द्वारा जनगणना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
2: जनगणना 2026 के लिए ऊना जिला प्रशासन द्वारा जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस माह के आरंभ से 15 तारीख तक जिले के नागरिकों की सुविधा के लिए स्वगणना की व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है, जिसके तहत नागरिक sec.census.gov.in पोर्टल पर जाकर स्वयं अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। इसके उपरांत एक माह के दौरान प्रगणक घर घर जाकर वांछित जानकारी एकत्रित करेंगे। उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने जिले के सभी नागरिकों को जनगणना के प्रथम चरण में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की है। आकाशवाणी के लिए ऊना से राजेश शर्मा।
0: लाहौल स्पीति जिला के काजा में आज से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो गया है। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता ने बताया कि इसमें देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 50 युवा भाग ले रहे हैं।
3: स्पीति के मुख्यालय काजा में आज से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो गया है। कार्यक्रम में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा दादरा एवं नगर हवेली, दमन और द्वीप से आए 50 युवा भाग ले रहे हैं। ये युवा स्पीति के काजा खास, काजा सोमा, हल, शेगो, कीबर, रामा खास, लालुंग, हुरलिंग, ग्यू और लरी गांव में रहकर स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और विकास कार्यों को समझेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमांत भारत से जोड़ते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करना है। आकाशवाणी के लिए
0: लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने मुख्यमंत्री से राजकीय महाविद्यालय कुकुमसेरी को बंद ना करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि ये कॉलेज लाहौल घाटी का एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान है और इसके बंद होने से विशेषकर छात्राओं व आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध

0: में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कॉलेज को बंद करने संबंधी अधिसूचना को जल्द रद्द करने का आश्वासन दिया है। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने प्रदेश उच्च न्यायालय के हवाले से खबर दी है, हिम केयर योजना में निजी अस्पतालों का भुगतान रोकने के फैसले पर रोक, कोर्ट ने कहा विजिलेंस जांच का हवाला देकर राशि रोकना आदेश का उल्लंघन। पंजाब केसरी और दिव्य हिमाचल ने मुख्यमंत्री के बयान को लगभग एक जैसा शीर्षक दिया है, चिट्टा तस्कर नहीं सुधरे तो मिट्टी में मिला देंगे। दैनिक भास्कर की एक खबर है, पंचायत जन प्रतिनिधियों की शपथ व ट्रेनिंग को पंचायती राज विभाग ने मांगे 13 करोड़, मिले 3 करोड़। पूर्व सीएस की शिकायत पर रेरा के पूर्व चेयरमैन पर एफआईआर, दैनिक जागरण की एक खबर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ईमानदारी व पारदर्शिता के साथ जनता की सेवा कर रही है राज्य सरकार। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने और चुनावों में उत्साहपूर्वक भाग लेने का किया आह्वान। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में, लिए जा सकते हैं कई महत्वपूर्ण निर्णय। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शिवा परियोजना के तहत 586 हेक्टेयर क्षेत्र की पहचान कर 10 जून से पहले कार्य पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब में हिमाचल के वाहनों से वसूले जा रहे खालसा टैक्स को गलत बताया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने। इस एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
3: हर खुशी अब लगे नमी,
2: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए FM शिमला।

ट्यून इन है आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ और कुदरत के रंग कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम। देखिए ना, कुदरत ने सराबोर किया है इस धरा को सौंदर्य से भी और संसाधनों से भी। समय समय पर इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं सौंदर्य से भरपूर पर्यटन स्थलों की, जो अमिट छाप छोड़ देते हैं किसी के भी मन मस्तिष्क पर। और अगर हम बात करें हिमाचल की, तो यहाँ तो अनगिनत ऐसे प्राकृतिक स्थल हैं, मनोहर दृश्य हैं, जो अनायास ही किसी को भी आकर्षित कर लेते हैं। आज भी हम बात करेंगे एक ऐसे ही प्राकृतिक स्थल की, जी हाँ, बात करेंगे सूरज ताल की। साथ ही साथ रखेंगे आपके मनोरंजन का भी पूरा पूरा ख्याल। तो शुरुआत करते हैं इस गीत से।

गीत तो आप सुन ही चुके हैं और हम बात कर रहे हैं कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज सूरज ताल झील की। जी हाँ, ये एक सुंदर झील है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में और बारालाचा दर्रे के पास ये स्थित है। ये पवित्र उच्च ऊंचाई वाली झील है और सूरज ताल भारत की तीसरी सबसे ऊंची झीलों में आती है और सूरज ताल झील का अर्थ है सूर्यदेव की झील। ये झील भागा नदी का उद्गम स्थल है जो आगे चलकर चिनाब नदी में मिल जाती है। और अगर बात करें इसके धार्मिक महत्व की तो स्थानीय लोगों द्वारा इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस झील में पवित्र डुबकी लगाने से सभी पाप

उसे मुक्ति मिल जाती है। बता देते हैं आपको कि बारालाचा दर्रे से निकलने वाले हिमनद और नाले इस झील को पानी देते हैं और ये दर्रा 8 किलोमीटर लंबा है। इसे शिखर पर चौराहे वाला दर्रा भी कहा जाता है क्योंकि जस्कर, लद्दाख, स्पीति और लाहौल से आने वाली सड़कें इस दर्रे पर मिलती हैं और इसे निकलने वाली और सूरजताल से होकर बहने वाली भागा नदी के अलावा बारालाचा दर्रा दक्षिण पूर्व और उत्तर में क्रमशः चंद्र और यूनान नदियों का भी स्रोत है। बात करें हैं सूरज ताल झील की तो ये झील हिमालय के ऊपरी हिमालयी क्षेत्र और उच्च आकांक्षीय क्षेत्रों में स्थित है जहाँ जनसंख्या बहुत कम है और जलवायु ध्रुवीय क्षेत्रों के समान है। इस क्षेत्र में हिमपात कम होता है लेकिन पूरे वर्ष फैला रहता है। इस क्षेत्र में बारिश भी बहुत कम होती है। हिमपात के लगभग 50% मामलों में बर्फ की मात्रा 200 मिलीमीटर से भी कम बताई जाती है। भागा नदी बारालाचा दर्रे से निकलती है जैसा कि हम बात कर भी चुके हैं और सूरजताल से होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई टांडी तक जाती है जहां ये चंद्र नदी से मिलती है। भागा नदी 72 किलोमीटर लंबी है और ये घाटी जो एक संकरी दर्रे के रूप में है दर्जा तक वनस्पति रहित है और उसके बाद टांडी में चंद्र नदी से मिलने तक चौड़ी होती जाती है। दर्जा और टांडी के बीच सीढ़ीदार खेत हैं जिनकी निचली ढलानों पर खेती की जाती है जबकि मध्य ढलानों पर घास के मैदान हैं। ईंधन और चारे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पहाड़ी ढलानों पर पेड़ और झाड़ियों के वृक्षारोपण किए गए हैं। जी हाँ, और बेहद ही खूबसूरत है ये झील। लाहौल स्पीति घाटी सड़क यात्रा और ट्रैकिंग और मोटरसाइकिलिंग के लिए भारतीय और विदेशी पर्यटकों का एक लोकप्रिय गंतव्य है। मनाली से लेह तक का NH-21 मार्ग सूरजताल झील और बारालाचा दर्रे को कवर करता है। और अगर बात करें ट्रैकिंग की तो ट्रैकिंग टूर आम है। एक ट्रैक मार्ग जिंगजिंगबार, सूरजताल, बारालाचा, इसमें भागा नदी के किनारे 3 किलोमीटर तक ट्रैकिंग करना, उत्तरी तट पर एक पुल पार करना, फिर पुल से 2.5 किलोमीटर चढ़ाई करना और उसके बाद सूरजताल तक एक खड़ी पैदल पगडंडी पर चलना शामिल है। और भी बात करेंगे, फिलहाल सुन लेते हैं एक और गीत।

कुदरत के रंग प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप एफएम शिमला से, और बात हो रही है सूरज ताल झील की। जी हाँ, सूरज ताल झील ट्रैकिंग के लिए भी एक बेहद लोकप्रिय गंतव्य है, और अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ पर तो किस तरह से आप पहुँच पाएंगे ये भी जान लेते हैं। सूरज ताल लाहौल स्पीति ज़िले के मुख्यालय केलांग से 65 किलोमीटर यानी कि 40 मील की दूरी पर है, और ये राष्ट्रीय राजमार्ग NH 21 जिसे लेह मनाली राजमार्ग के नाम से जाना जाता है वहाँ से यहाँ पहुँचा जा सकता है। और सड़क सूरज ताल के किनारे से होकर गुजरती है जो बारा लाचा दर्रे से मात्र 3 किलोमीटर पहले है। नवंबर से अप्रैल के शीतकालीन महीनों के दौरान ये दर्रा पूरी तरह से बर्फ से ढक जाने के कारण दुर्गम रहता है। तो अगर आप जाना चाहते हैं यहाँ पर तो आपके लिए जो सही रहेगा वो है अक्टूबर का महीना। चलिए गीत संगीत की ओर एक बार फिर से चलते हैं, सुनते हैं ये गीत।

कुदरत की रंग कार्यक्रम पहुंच चुका है अपने अंतिम पड़ाव पर और कार्यक्रम के समापन की ओर घड़ी की सुइयां भी कर रही है इशारा। आज हमने बात की सूरज ताल झील की। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत ये झील है। तो आपको भी अगर जीवन में कभी समय मिले तो ज़रूर आप यहाँ होकर आएं और इसकी खूबसूरती का लुत्फ़ नज़दीक से उठाएं। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: इसी गीत के साथ कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं FM शिमला के साथ। 9:57 हो चुके हैं, आइए सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पुष्पा ठाकुर। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों व पेंशनरों से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों पर चर्चा संभावित है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने व सृजित करने पर भी बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना है। प्रदेश में HP शिवा परियोजना के पहले चरण में लगभग 3083 हेक्टेयर क्षेत्र को अंतिम रूप दिया गया है, जिस पर कार्य जारी है। दूसरे चरण के लिए 7 जिलों में करीब 3000 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया जाना है, जिसमें से 2414 हेक्टेयर क्षेत्र का मूल्यांकन किया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब में हिमाचल के वाहनों से वसूले जा रहे खालसा टैक्स को गलत बताया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल और पंजाब की सरकारों को इस विषय पर बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के निकट पोआबो गांव में वन विभाग द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से विकसित कमियाना हिल्स टॉप नेचर ट्रेल के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। करीब 8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस परियोजना में 2.5 किलोमीटर लंबा प्रकृति पथ विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता, प्रकृति के प्रति रुचि, जैव विविधता संरक्षण व सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती मतदाताओं की जागरूकता और सहभागिता पर निर्भर करती है। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रदेश के मतदाताओं का आभार जताया। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने मुख्यमंत्री से राजकीय महाविद्यालय कुमकुम सेरी को बंद न करने की मांग की है। मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा है कि ये कॉलेज लाहौल घाटी का एकमात्र उच्च शिक्षण संस्थान है और इसके बंद होने से विशेषकर छात्राओं

0: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुए कॉलेज को बंद करने संबंधी अधिसूचना को जल्द रद्द करने का आश्वासन दिया है। शिमला जिला में पंचायतीराज संस्थाओं के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित होगा। जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जिले की सभी पंचायत समितियों के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, जबकि जिला परिषद शिमला के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में होगा। देश सहित प्रदेश भर में जनगणना 2026 का कार्य जारी है। जनगणना को अधिक सटीक व पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। लाहौल स्पीति जिला के काजा में आज से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो गया है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 50 युवा भाग ले रहे हैं। एफएम न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।
1: एफएम शिमला से अब आइए जान लेते हैं एक बार हाइलाइट्स। जी हाँ, कौन से कार्यक्रम किस समय आप सुन सकते हैं, आपसे थोड़ी देर में आप सुनेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम। आपके फरमाइश म्यूजिक मस्ती का समय रहेगा 1:30, 3:30 पर युववाणी कार्यक्रम सुनेंगे आप, और 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे। 8:00 सुनेगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। 9:15 पर एक फिल्म से कार्यक्रम आप सुन सकते हैं, और ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुनेगा रात 9:30 पर। 10:00 का समय रहेगा गजलों के कार्यक्रम का, और 10:30 पर आप सुन सकते हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम।

ट्यूनिंग है आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ और 10 बज चुके हैं। ये टाइम है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम आपकी फरमाइश का। जी हाँ, लाइव फोन इन इस प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं। अपनी चॉइस का सॉन्ग एंजॉय करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स 2808034 और 2808152 पर। एक बार फिर से नोट कीजिएगा, फ़ोन नंबर 2808034 और 2808152। कुछ चुनिंदा मूवीज़ हम भी लेकर आए हैं आपके लिए, जिनमें शामिल है भूल भुलैया 3, सुहाग, खूबसूरत, 36 चाइना टाउन, कुछ कुछ होता है और प्रेम रोग। जिस भी फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। और जब तक आपकी कॉल्स हमें आती है तब तक इंजॉय कीजिए ये सॉन्ग।

0: श्रेया घोषाल की आवाज़ में आपने ये गीत सुना, फिल्म थी भूल भुलैया 3। जी हाँ, सॉन्ग आप इंजॉय कर ही चुके हैं और इसी बीच हमारे फर्स्ट कॉलर भी हमसे कनेक्ट हो चुके हैं। जानते हैं कौन और कहाँ से हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार जी, स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: नमस्कार जी, मैं सतीश बात कर रहा हूँ, कानपुर से।
0: जी कानपुर,
1: कानपुर से।
0: जी जी जी, कानपुर से आपने हमें कॉल की है, थैंक्स कहना चाहेंगे आपको।
1: मैं मैडम जी, मैं ट्रेन में चल रहा हूँ और कानपुर से घर पे जा रहा था।
0: क्या
1: तो
0: बात
1: फोन
0: है,
1: भी ट्राई कर रहे थे और फोन भी लग गया, तो आपसे बात भी हो रही है।
0: क्या बात है, आप ट्रेन का सफर भी कर रहे हैं, साथ में हमारे कार्यक्रम आपकी फरमाइश का आनंद भी ले रहे हैं, और सबसे बढ़िया बात ये कि आपकी कॉल भी कनेक्ट हो चुकी है ना।
1: हाँ, कॉल भी कनेक्ट हो चुकी है, अब तो रेडियो जैसा है, कहीं भी सुन सकते हो, मोबाइल ऐप पे, न्यूज़ ऑन है, ट्रेन में सफर करो चाहे कहीं भी सफर करो, सब आपके साथ है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आज आपने फोन किया तो किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: आज कुछ कुछ होता था, कोई सॉन्ग प्ले कर देना।
0: जी जरूर करेंगे। और मौसम कैसा है आपके वहाँ?
1: मौसम तो मैडम जी, जैसे गर्मी पड़ रही है, 45 डिग्री सेल्सियस हो गया है तापमान, यूपी में बहुत गर्मी पड़ती है।
0: चलिए, आप ट्रेन का सफर भी अपना जारी रखिए और साथ ही साथ सुनिए कुछ कुछ होता है फिल्म।
1: इस मौसम में पानी पीना चाहिए, जैसे अभी तो मौसम पालन कलीने खरबूजा इनका सेवन करना चाहिए।
0: जी ये आप हमारे लिसनर्स को संदेश दे रहे हैं कि गर्मियों में अपना ख्याल किस तरह से

0: रखा जा सकता है ना।
1: हाँ जैसे खरबूजा, कलिंदे, ककड़ी, खीरा, ककड़ी, ये चीज़ें खाना चाहिए कि कौन से फल को ना उठाना चाहिए। पानी शरीर में पानी की पूर्ति करता है, पानी से ज़्यादा जाना पीना चाहिए।
0: चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने, और हमारे लिसनर्स भी सुन चुके हैं, जान चुके होंगे। तो आप इंजॉय कीजिए अपनी पसंद का ये गीत। एक बार फिर से शुक्रिया करते हैं फ़ोन करने के लिए। तो आप तमाम लिसनर्स के लिए भी प्ले कर रहे हैं कुछ कुछ होता है फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। समीर के बोल है और जतिन ललित का संगीत। आइए सुनते हैं।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम आपकी फरमाइश इंजॉय कर रहे हैं आप एफएम शिमला से। और एक बार फिर से सुन लीजिएगा मूवीज़ के नाम जिनके सॉन्ग्स आज के इस कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं। हमारी आज की फिल्में हैं भूल भुलैया 3, सुहाग, 36 चाइना टाउन, खूबसूरत, बागी 4, कुछ कुछ होता है और प्रेम रोग। देखिए इसी बीच लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। नाम बताएंगे अपना?
1: मैम रामलाल हरिद्वार बोल रहा हूँ, गुना जिले से।
0: रामलाल जी कहाँ से?
1: कुमराज
0: जी, कुमराज से आपने हमें कॉल किया है। तो पहली बार फ़ोन किया है या आप हमारे जो श्रोताओं में हैं, पुराने श्रोताओं में से हैं जिनके कॉल्स यहाँ आते रहते हैं?
1: नहीं सर, मैं सुन लेता हूँ, पहली बार लगाया मैंने फोन, में डीटीएच पे सुनता हूँ।
0: बहुत अच्छा, और साथ में अपने काम भी करते रहते हैं, रेडियो भी सुनते रहते हैं, है ना?
1: जी जी जी।
0: वैसे आप करते क्या हैं?
1: अरे
0: आपका काम क्या है? दिन भर आप रेडियो सुनते हैं और अपना काम भी करते हैं, तो हम जान सकते हैं कि आपका काम क्या है?
1: कारीगरी का काम है, मैं सुबह से सुनता हूँ 11 बजे तक।
0: जी क्या बात है, कारीगरी भी करते रहते हैं और साथ में अपना मनोरंजन भी करते रहते हैं। तो आज आपने कॉल किया, धन्यवाद कहना चाहेंगे। किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: आज पहले तो मैं परिवार का नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि फर्स्ट बार फोन लगा मेरा। जी मेरे मम्मी पापा का नाम है, पापा का नाम है हरि सिंह अहिरवार और मम्मी का नाम बसंती अहिरवार, और मेरे मिसेस का नाम मनीषा भाई और लड़की का नाम ज्योति और लड़के का नाम आदर्श अहिरवार।
0: जी तो आप पूरे परिवार के साथ रेडियो सुन रहे हैं क्या?
1: जी जी जी जी, हमारे मम्मी पापा सुनते नहीं, मेरी मिसेज है, लड़की लड़की ये ज़रूर सुनते हैं।
0: क्या बात है, जी। और देखिए आपकी कोशिश कामयाब हो गई, आपका फ़ोन लग भी गया और प्रोग्राम में शामिल हो भी गया, तो बहुत अच्छी बात है कि आप रेडियो भी सुनते रहते हैं। रेडियो सुनने का यही एक फ़ायदा है कि आप अपना काम भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना मनोरंजन भी, है ना? तो एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहेंगे, सुनवाएंगे आपको आपकी फरमाइश पर गीत। कौन सी फिल्म से आप सुनना चाहेंगे?
1: सुहाग
0: फिल्म का गीत आपको जरूर सुनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले एक संदेश आइए सुनते हैं। सामाजिक

0: एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सुहाग फिल्म का गीत आपने सुना। लाइव फोन इन प्रोग्राम आपकी फरमाइश, आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला से और बहुत सारे लिसनर्स हमसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो चलिए लेते हैं प्रोग्राम की नेक्स्ट कॉल, जानते हैं कौन और कहां से हैं हमारे अगले लिसनर। हेलो
1: जी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। कौन और कहां से बोल रहे हैं
1: जी? थैंक यू सो मच, मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बचोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी क्या बात है, इतने दूर से हमें कॉल आ रही है। सिसोदिया जी क्या करते हैं, आप बताना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया। और इन दिनों आप जी इन दिनों आपने
1: आपको मैं मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुनता हूँ। मैं अभी कुछ दिनों से हिमाचल प्रदेश के कार्यक्रम को बंद कर दिए गए थे फोन इन प्रोग्राम जी, तो हमें मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर से कार्यक्रम शुरू हो गए तो हम फिर से जुड़ गए
0: जी। और बहुत ही अच्छा महसूस आप कर रहे होंगे, तो बताएंगे इन दिनों आपने अपने खेतों में क्या कुछ खास उगा रखा है?
1: जी अभी तो हमने खेत को मतलब सोयाबीन की फसल के लिए तैयार कर रखा है, अच्छी तरह से हल्का जुताई करके खेत को धूप के लिए छोड़ दिया है। अब आपको बताऊं, 25 जून के बाद जब बरसात होगी ना, तो फिर यहाँ पे सोयाबीन की फसल लगाई जाती है हमारे यहाँ पे।
0: क्या
1: और
0: 2.5 से 3
1: महीने में सोयाबीन पक के तैयार हो जाने के बाद में फिर गेहूँ और लहसुन की फसल लगाई जाती है।
0: जी बहुत बढ़िया, और आज आपने हमें कॉल किया इसके लिए थैंक्स कहना चाहेंगे। किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: जी प्रेम रोग फिल्म का आप सुनवा दीजिएगा, भंवरे ने खिलाया फूल।
0: जी प्रेम रोग फिल्म का गीत आपको ज़रूर सुनवा दिया जाएगा। कुछ और संदेश आप देना चाहते हैं या फिर गर्मी से बचाव का कोई टिप्स आप देना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल बताना चाहेंगे, हमारे मध्य प्रदेश में तो काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो हमें मध्य प्रदेश के साथ में जितने भी राज्य लगते हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन राज्यों में भी काफ़ी गर्मी पड़ती है, तो गर्मी से बचने के लिए सुबह शाम का समय निश्चित करें कहीं जाना हो तो। और अगर गर्मी में फिर भी अगर दिन में जाने का ऐसा हो तो कैप पहने और साथ में पानी की बोतल ले जाए और एक ऐसा मफलर ले जाए ताकि अपने मुंह को और ऐसे ढक के रखे ताकि गर्मी से बचाव हो सके।
0: जी ये तो आपने बहुत ही बढ़िया बात कही कि हमेशा हमारे पास पानी की बोतल रहनी चाहिए और हमारी स्किन गर्मी से ख़राब ना हो, इसके लिए कुछ मफलर या स्काफ टाइप भी कुछ होना चाहिए। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कॉल करने के लिए, आपकी फरमाइश ज़रूर पूरी होगी। बहुत सारे जो है कॉलर हमसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, तो लेना चाहेंगे कार्यक्रम में एक और कॉल।

0: नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में है, जानते हैं कौन और कहां से हमें कॉल कर रहे हैं। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं पंचीराम शर्मा बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर जिला डोडा तहसील ठाठरी गांव कंठी से।
0: जी, जम्मू कश्मीर से आप बोल रहे हैं, और देखिए जब कश्मीर की बात आती है तो अनायास ही खूबसूरती भी आंखों के सामने नज़र आने लग जाती है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: आपने कॉल किया इसके लिए थैंक्स कहना चाहेंगे, तो किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: ये पुरानी फिल्मों में से कोई भी अपनी मर्जी का गाना आज मुझे आप सुनाइए।
0: जी, प्रेम रोग फिल्म जो है, हमारे जो पहले आपसे पहले के जो श्रोता थे उनकी फरमाइश है प्रेम रोग फिल्म का गीत सुनाया जाए, तो आप भी इस फिल्म का गीत पसंद करना चाहेंगे?
1: बिल्कुल बिल्कुल दीदी जी,
0: जी
1: बहुत अच्छा है
0: जी। कुछ
1: तो मुझे तो सभी गाने पसंद है, और आपके
0: क्या बात है,
1: मुझे बेहद पसंद आते हैं, और आपके वहाँ आकाशवाणी केंद्र से मुझे जानकारियाँ बहुत अच्छी मिलती है।
0: जी शुक्रिया। और जब इस तरह का कुछ सुनने को मिलता है तो हमें लगता है कि हमारे प्रयास जो हैं वो सफल हो रहे हैं ना। तो आप रेडियो लगातार सुनते रहते हैं या फर्स्ट टाइम आपने कॉल किया है?
1: नहीं नहीं कॉल तो मैं आकाशवाणी शिमला में तो करता रहता था पहले भी, 2011-12 में भी, और एक प्रोग्राम चलता था पर्वत के उस पार।
0: जी जी जी,
1: गानों का प्रोग्राम होता, उसमें मैं भाग लेता था।
0: क्या बात है, तो चलिए आपको गीत सुनवा देंगे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कॉल करने के लिए। बने रही जी, बने रहिए FM शिमला के साथ। तो आप तमाम लिसनर्स के लिए भी प्ले कर रहे हैं प्रेम रोग फिल्म का ये गीत, आइए सुनते हैं।

0: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला, MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: आपकी फरमाइश प्रोग्राम का आनंद आप ले रहे हैं FM शिमला से और लाइव फोन इन इस प्रोग्राम में। लेते हैं अगली कॉल। हेलो, लगता है डिस्कनेक्ट हो गई है ये कॉल। नेक्स्ट कॉल आइए लेते हैं। हेलो हेलो,
4: कल्पना मैम देखो फोन कट गया फिर मिल गया।
3: जी क्या बात है, कौन बोल रहे हैं?
4: आज वो बात होनी होती
3: जी। आप लाइव फोन इन प्रोग्राम, आपकी फरमाइश सुन रहे हैं, तो स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। अपना नाम बताएंगे?
4: कुलशोभा कोटे सुनाम पंजाब से, रेगुलर लिसनर ऑफ AIRFM शिमला, विरोचनपुरी बात कर रहा हूँ। कल्पना मैम
3: क्या बात है, विरोचन जी स्वागत करते हैं आपका, और बड़े अरसे बाद आपने कॉल किया।
4: हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं ट्रैवल कर रहा था एक्चुअली, हिमाचल की तरफ ही आ रहे थे।
3: बहुत बढ़िया,
4: गाड़ी में बैठी दो बार फोन मिल गया मैम
3: जी, और आप ही का कॉल पहले डिस्कनेक्ट हो चुका था। चलिए, दूसरे नंबर पे आपने ट्राई किया और मिल भी गया है ना?
4: बिल्कुल बिल्कुल मैम।
3: तो किस फिल्म का गीत आज आप सुनना चाहेंगे?
4: मैम आप आज बहुत ही अच्छी, सारी मूवीज बहुत ही अच्छी लेके आए, मैं 10 बजे से लगातार सुन रहा हूँ आपको।
3: जी शुक्रिया।
4: और जो मूवीज बची है ना उसमें से खूबसूरत मूवी है
3: जी जी,
4: आप उसका जो भी सॉन्ग चलाएंगे हम सभी को पसंद आएगा। और जो मैं अक्सर अपने मैसेजेस में नेम भेजता रहता हूँ मैम अपनी फैमिली के, वो तकरीबन सारे मेंबर्स भी मेरे साथ गाड़ी में और FM शिमला एंजॉय कर रहे हैं मैम।
3: क्या बात है, साथ में सफर भी कर रहे हैं और अपना मनोरंजन भी है ना। देखिए एंटरटेनमेंट तो कभी भी रुकना नहीं चाहिए।
4: प्यार है मैम
3: जी, हिमाचल की वादियों का आप लुत्फ उठाने आ रहे हैं तो ये भी एक अच्छी बात है, और साथ में हमारे कार्यक्रम भी आप सुन रहे हैं, ये तो बहुत ही बढ़िया है ना।
4: हाँ जी मैम।
3: तो चलिए आपको जरूर सुनाएंगे खूबसूरत फिल्म का गीत, और एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहेंगे कॉल करने के लिए।
4: थैंक यू कल्पना मैम।
3: गीत सुनवाने से पहले लेते हैं एक और कॉल।

0: हेलो,
1: प्यार और सत्कार भरा नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नाम बताएंगे अपना?
1: मैं सोमदत्त बोल रहा हूँ जी, नाभा जिला पटियाला पंजाब से जी।
0: जी सोमदत्त जी, क्या करते हैं आप?
1: मेरा टेंट कैटरिंग का काम है जी।
0: बहुत बढ़िया। और हमारे रेगुलर लिसनर्स में आप आते हैं?
1: देखो आप लोगों, मैं सही बात बताता हूँ। पहले आपका चलता था प्रोग्राम शिमला, हेलो शिमला चलता था सवा एक बजे,
0: जी
1: वो सुनते थे। आज जब मैं आया स्टोर में, दुकान खोलकर आपका जब स्टेशन लगाया तो ये प्रोग्राम चल रहा था, और काल लगाया, काल भी लग गया।
0: क्या बात है। और जितने भी लिसनर्स हमारे साथ आज कनेक्ट हो चुके हैं, कोई गाड़ी का सफ़र कर रहा है, कोई ट्रेन में है, और देखिए आप भी जैसे ही पहुंचे अपने काम पर आपकी भी कॉल लग गई है ना।
1: बिल्कुल जी बिल्कुल, आपके प्रोग्राम अच्छे लगते हैं। वो हेलो शिमला सुनते थे हम, बहुत अच्छा लगता था। बंद क्यों कर दिया मैडम जी आपने?
0: जी देखिए, जो हमारे उच्च अधिकारी है उन

0: तक आपकी बात ज़रूर पहुंचाएंगे। कुछ ना कुछ परिस्थितियां या कारण रहते हैं जिस वजह से थोड़ा सा फेर बदल हो जाता है कार्यक्रमों में।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल
0: जी। तो कौन सी फिल्म का आप गीत सुनना चाहेंगे?
1: देखो, आपके प्रोग्राम में सभी गीत बहुत अच्छे चलते हैं, आप जो अपने पसंद का गीत लगा दें वो भी हमको अच्छा लगेगा। जी
0: जी, खूबसूरत फिल्म का गीत सुनाने हम जा रहे हैं, तो आप भी एंजॉय कीजिए।
1: और भी बहुत दोस्त हैं जो आपका एफएम शिमला सुनते हैं। जी
0: जी, बहुत अच्छा लगा ये जानकर भी कि आपके दोस्त भी आपके साथ साथ हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। और
1: रजेश जैन बिट्टू जी हैं मुल्लापुर दाखा मंडी से, बहुत सुनते हैं आपका प्रोग्राम। जी अमन वर्मा, रमन वर्मा जी हैं बुर्ज हनुमानगढ़ से, वो भी बहुत सुनते हैं आपका प्रोग्राम।
0: जी शुक्रिया। तो चलिए सुनिए अपनी फरमाइश
1: पर बहुत बहुत धन्यवाद
0: ये गीत। धन्यवाद जी।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम आपके फरमाइश आप एंजॉय कर रहे हैं और अब लेते हैं नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है आपका।
1: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी नमस्कार जी, और आपने कॉल किया, थैंक्स कहना चाहेंगे। योगेश जी क्या करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी करते हैं।
0: बहुत बढ़िया, और आज आपने कॉल किया, किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: 36 चाइना टाउन से सुनवा देंगे।
0: जी ज़रूर, आपको 36 चाइना टाउन से गीत सुनवा दिया जाएगा। और एक बार फिर से शुक्रिया करना चाहेंगे कि आपने हमें कॉल किया। कुछ और आप संदेश देना चाहेंगे?
1: अब अभी जैसे कल ही पर्यावरण दिवस मनाए हैं, तो बिल्कुल इस दिशा में सभी साथी सुनने वाले सार्थक प्रयास करें और प्रकृति को अपना स्वयं मानकर मतलब उनका देखभाल भी करें।
0: जी बहुत बढ़िया बात आपने कही, हमें बहुत से ज़्यादा हमें वृक्ष भी लगाने हैं, और लगाने ही नहीं है, उनकी देखरेख भी करनी है, और सबसे बड़ी बात जो प्राकृतिक संसाधन है उनका संरक्षण भी करना है आने वाली पीढ़ियों के लिए, है ना। तो चलिए गीत एंजॉय कीजिए आप अपनी चॉइस का।
1: धन्यवाद।
0: आप सभी के लिए भी प्ले कर रहे हैं ये सॉन्ग फ्रॉम द मूवी 36 चाइना टाउन।

0: आपकी फरमाइश प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप और माइंड अप करने का टाइम हो चुका है। लेते हैं कार्यक्रम की लास्ट कॉल। हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। कौन और कहां से बात कर रहे हैं
1: जी? मैं सुरेंद्र कुमार अन्नी, जिलोड़ी पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से
0: जी।

0: सुरेंद्र जी, कैसे हैं आप और क्या कुछ खास चला है इन दिनों आपके?
1: इन दिनों मैम आजकल तो हमारा बस लहसुन ही मिला बन रहा है अभी तो जी।
0: तो चलिए, आपने कॉल की कार्यक्रम में। तो फिल्म भी हमारे पास जो लास्ट रही है, बागी 4। तो आप इस फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे या कुछ और आप सुनना चाहते थे?
1: चाहता तो था मैं, बाकी वो आपकी मर्जी, अब सुनाना
0: हाँ
1: चाहेंगे आप। हाँ
0: जी
1: बेस्ट तो मैं तो वो सुन पाड़ू वाला है, वो सुंदर राम तेरी गंगा मैली का।
0: जी अभी बहुत सारे दिन भर कार्यक्रम चले रहेंगे, तो आप हो सकता है ले ले आनंद इस गीत का भी। फिलहाल आपके लिए सुनवा रहे हैं बागी 4 फिल्म का ये गीत, और एक बार फिर
1: धन्यवाद
0: से थैंक्स कहना चाहेंगे, है ना?
1: मैम कॉल के लिए, धन्यवाद
0: क्योंकि
1: कॉल के लिए
0: टाइम जो
1: धन्यवाद।
0: है, हम सब समय की पाबंदी में बंधे हैं, तो घड़ी की सुइयां इशारा भी कर रही है जल्दी से समापन की ओर। तो जाते जाते आपके लिए ये गीत, ठीक है
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद।
0: जी?

इसी के साथ कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: का ये शिमला केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप शशि चौहान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के निकट पोवाबो गांव में वन विभाग द्वारा लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित कमियाना हिल टॉप नेचर ट्रेल के प्रथम चरण का लोकार्पण किया। करीब 8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस परियोजना में 2.5 किलोमीटर लंबा प्रकृति पथ विकसित किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता, प्रकृति के प्रति रुचि, जैव विविधता संरक्षण व सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र में वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत स्वीकृत 16 सड़कों के निर्माण के लिए 5 करोड़ 20 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इस बीच प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज शिमला में होगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कर्मचारियों व पेंशनरों से जुड़े विभिन्न लंबित मामलों पर चर्चा संभावित है। इसके अलावा विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने व सृजित करने पर भी बैठक में निर्णय लिए जाने की संभावना है। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र की मजबूती मतदाताओं की जागरूकता और सहभागिता पर निर्भर करती है। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने सभी नागरिकों से लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने और चुनावों में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनाव का आधार है।
2: शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनाव का आधार है और शुद्ध मतदाता सूची में एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट और फॉरेनर्स, इनका स्थान नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ जो भी भारत का नागरिक 18 वर्ष की आयु को पूरी कर चुका हो और उस मतदान केंद्र के आसपास रहता हो, उसका नाम अवश्य होना चाहिए।
1: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पंजाब में हिमाचल के वाहनों से वसूले जा रहे खालसा टैक्स को गलत बताया है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हिमाचल और पंजाब की सरकारों को इस विषय पर बातचीत कर समाधान निकालना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। कांगड़ा व चंबा सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बीती रात 10 बजे के बाद भूकंप के 3 झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 5.0 मापी गई है और इसका केंद्र 32.289 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 76.434 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मात्र 5 किलोमीटर की कम गहराई पर स्थित था। हालांकि इस भूकंप से किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। हमारे चंबा जिला संवाददाता ने बताया कि भूकंप के 3 झटकों से लोग सहम गए।
3: चंबा जिला में 2 घंटे के अंतराल के बीच आए भूकंप के 3 झटकों ने जिलावासियों को झकझोर कर रख दिया है। हालांकि इन झटकों से कहीं भी किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन एक के बाद एक महसूस हुए इन झटकों के बाद लोग सहमे हुए हैं। पहला झटका 10:04 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता 5 आंकी गई। उसके पश्चात 11:03 पर दूसरा झटका महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 2.8 आंकी गई। वहीं तीसरा झटका 11:52 पर महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3 आंकी गई। आकाशवाणी के लिए चंबा से विकास ठाकुर।
1: शिमला जिला में पंचायती राज संस्थाओं के नव निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए आज शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने जिले की सभी पंचायत समितियों के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, जबकि जिला परिषद शिमला के निर्वाचन सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह उपायुक्त कार्यालय परिसर स्थित बचत भवन में होगा। जिला की 13 पंचायत समितियों में संबंधित एसडीएम व तहसीलदारों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। लाहौल स्पीति जिला के काजा में आज से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो गया है। हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता ने बताया कि इसमें देश के विभिन्न राज्यों से लगभग 50 युवा भाग ले रहे हैं।
4: स्पीति के मुख्यालय काजा में आज से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो गया है। कार्यक्रम में बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा दादरा एवं नगर हवेली, दमन और द्वीप से आए 50 युवा भाग ले रहे हैं। ये युवा स्पीति के काजा खास काजा

0: ता सोमा हल शेगो कीबर रामाखास लालुंग हुरलिंग ग्यू और लरी गांवों में रहकर स्थानीय संस्कृति परंपराओं और विकास कार्यों को समझेंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमांत भारत से जोड़ते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करना है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के अलावा FM शिमला पर भी प्रसारित किए गए। ये आकाशवाणी शिमला है, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर लिसनर्स. 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला. वक्त हुआ है प्रोग्राम पुरानी फिल्मों से का, तो प्रोग्राम लेकर मैं हाजिर हूं अनुराधा ठाकुर. आप सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार. दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहाँ हर चीज़ फास्ट है, लोगों के पास एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है. जी हाँ, समय जो है वो बहुत तेज़ी से निकल रहा है और हम यूं ही भागे चले जा रहे हैं. तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे दौर में जब प्यार फुर्सत में होता था और गाने रूह में उतरते थे. वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो धुन, वो नगमे, वो पुरानी कहानी. तो ठहर जाइए ज़रा दिल की महफिल में, ले चलते हैं आपको यादों की सुहानी कहानी में. जी हाँ दोस्तों, तो कार्यक्रम का आगाज़ कर रहे हैं फिल्म आया सावन झूम के. इस फिल्म के गीत के साथ लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने.

जिंदगी की राहों में हर मोड़ एक नया सफ़र होता है। जिंदगी की राहों में हर मोड़ एक नया सफ़र होता है। कुछ कदम साथ चलते हैं, कुछ यादें दिल के घर होते हैं। तो लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं सिर्फ तुम्हारे लिए, इस फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

जी हाँ दोस्तों, ये वो दौर था जहाँ लता जी की आवाज़ में जादू था, रफ़ी साहब की रूहानी आवाज़ में दर्द था और किशोर दा के गीतों में मस्ती थी, जब मजरू और साहिर के शब्दों से दिल धड़कते थे। तो चलिए निकालते हैं यादों का पिटारा और सुनवाते हैं उन सदाबहार गीतों की एक जादुई महफिल में एक और गीत, फिल्म श्री 420 से लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में।

0: Bum?
1: हम
2: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है? भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
3: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
4: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में

0: हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
1: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम का आनंद इस वक्त आप ले रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। तो लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म गहरा दाग से, आवाजें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी की।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 11:30 हुए हैं, वक्त हुआ है कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का। तो लीजिए, पेश है जयप्रकाश की आवाज़ में इस कार्यक्रम का ही पहला लोकगीत।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का आनंद इस वक्त आप ले रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। लीजिए कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं कुलदीप सिंह की आवाज़ में।

0: तो दोस्तों, इसी लोकगीत के साथ पहाड़ी संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 12 बजने को हैं हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के लिए। आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि यात्रा भारत और नेपाल के विशेष साझेदारी संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने में सहायक होगी। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन में हिस्सा लेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए सत्र आयोजित होंगे। आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए लिंगमनेनी रमेश को पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के आधिकारिक बयान में ये घोषणा की गई। लिंगमनेनी रमेश आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: भारत अमेरिका सेना ने अधिकारियों की वार्ता का 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीति लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वेवन ने की। चर्चा में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने, पेशेवर आदान प्रदान का विस्तार करने और साझा सुरक्षा हितों के समर्थन में सैन्य सहयोग को सुदृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों देशों ने सहभागिता के बढ़ते दायरे की सराहना की और भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों और व्यवसाय करने वाले या छात्र परमिट धारक विदेशी नागरिकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी। हालांकि यदि उन्होंने पिछले 3 हफ्तों में इन देशों में से किसी का भी दौरा किया है तो उन्हें 21 दिन के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भोजनावकाश तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए हैं। भारत की ओर से राजस्थान के ऑलराउंडर मानव सुथार टेस्ट क्रिकेट में पहली बार खेल रहे हैं। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 12:10 हुए हैं, वक्त हुआ है कार्यक्रम फिल्म संगीत का। तो लीजिए, फिल्म संगीत कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुना रहे हैं बॉर्डर फिल्म का ये गीत रूप कुमार राठौर की आवाज़ में। गीत की बोल लिखी है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 12:20 होने को है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: सुषमा वर्मा का
1: नमस्कार। देखिए सुषमा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जो होंठों तक आते आते लौट जाते हैं।
0: जी
1: कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिल में ही कहीं खो जाते हैं, और कभी-कभी एक छोटी सी झिझक हमसे वो मौके छीन लेती है जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं।
0: जी देखिए बहनों, कहते हैं ना कि जो नदी बहती है वही अपना रास्ता बनाती है, और जो चुप रहती है वो अक्सर किनारों में सिमट जाती है। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे गरिमा, उसी चुप्पी की जो कई बार हमारे मन में उठने वाले सवालों को दबा देती है।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ हम बात करेंगे उस घबराहट की जो हमें अपनी बात कहने से ही रोक देती है।
0: जी
1: देखिए, कई बार ऐसा हुआ होगा ना कि आपके मन में कोई सवाल आया हो मगर आपने उसे पूछने की हिम्मत ही ना जुटाई हो। कभी किसी बैठक में हो गया, कभी किसी दफ्तर की बात हो गई, या फिर आप बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पर ही आपके मन में कोई सवाल आया लेकिन आपने नहीं पूछा, झिझक के मारे उसे नहीं पूछा। और सबसे
0: जी
1: ज़्यादा खतरनाक जो ये चीज़ होती है वो होती है कभी डॉक्टर के पास हम गए हैं, डॉक्टर से कुछ सवाल पूछने का मन कर रहा है लेकिन झेप की वजह से, झिझक की वजह से हम उनसे भी ये सवाल नहीं पूछ पाते हैं। किसी उनके सामने पता नहीं क्यों हम डर से जाते हैं, क्यों
0: जी
1: हमें ये डर लगता
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। देखिए बहनों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि सवाल पूछना कोई कमज़ोरी नहीं है, बल्कि ये तो इस बात का संकेत है कि आप सीखना चाहती है,
1: बिल्कुल
0: समझना चाहती है और अपने अधिकारों के प्रति जो है आप जागरूक होना चाहती है।
1: बिल्कुल। तो देखिए, जरा सोच कर देखते हैं ना कि सवाल पूछने से हम बचते क्यों हैं, क्या
0: जी
1: चलता है हमारे दिमाग में कि हम वो सवाल पूछ ही नहीं पाते हैं।
0: जी बिल्कुल
1: हमें अक्सर यही लगता है ना कि अगर मेरा सवाल गलत हुआ तो, या फिर लोग क्या सोचेंगे कि ये क्या छोटे छोटे सवाल पूछते रहते हैं, या फिर कहीं सब हंसने ना लगे, शायद बाकी सबको पहले से ही पता होगा इसीलिए कोई और सवाल नहीं कर रहा है, सिर्फ मुझे ही नहीं पता। और यही जो सोच है ना, ये धीरे धीरे डर में बदल जाती है।
0: जी बिल्कुल। और देखिए गरिमा, मनोवैज्ञानिक इसे सामाजिक झिझक या सार्वजनिक रूप से बोलने का डर भी मानते हैं। तो देखिए हमारे समाज में कई महिलाओं को बचपन से ही यह सिखाया जाता है कि ज़्यादा सवाल मत पूछो,
1: जी
0: या चुप रहने को ही शालीनता समझा जाता है। मगर जब यही आदत बड़ी उम्र तक बनी रहती है ना बहनों, तो इसका जो है असर पढ़ाई पर, नौकरी पर, व्यवसाय और यहाँ तक कि हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ सकता है।
1: और देखिए, ये जो सवाल ना पूछना है ना, ये जो आदत जो ये बन जाती है,
0: जी
1: इसका नुकसान हमें ही फिर उठाना पड़ता
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल
1: सवाल ना पूछना का एक कारण देखिए ये भी हो सकता है कि बहुत से लोगों को लगता है कि उनका सवाल एकदम सही या फिर परफेक्ट होना चाहिए।
0: जी
1: हमारे अंदर ही अंदर चलता रहता है ना कि चलो मैं ये पूछूँ तो, लेकिन इसे मैं अच्छे से फ्रेम करूँ, अच्छे से इसे कहूँ। मन में बार बार सोचते रहते कि ऐसे पूछ लूँ या फिर वैसे पूछ लूँ, कहीं कोई शब्द तो गलत नहीं हो जाएगा, कहीं लोग ये तो नहीं सोचेंगे कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। और इस
0: जी
1: सब सोच में ही इतना समय निकल जाता है कि वो सवाल पूछने का जो मौका था वो ही आपके हाथ से निकल जाता है।
0: जी हाँ बिल्कुल। और देखिए बहनों, याद रखिए कि कोई भी सवाल पूछने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है बस इतना कि आप अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर सके, और
1: बिल्कुल
0: इस जिज्ञासा को व्यक्त ना किया जाए या हमेशा चुप ही रहा जाए तो इसके नुकसान भी है। जब हम ज़्यादातर समय चुप ही रहते हैं ना गरिमा, तो सामने वाला ये भी मानने लग जाता है कि अरे उससे तो कुछ रुचि ही नहीं है,
1: बिल्कुल
0: या यह कुछ जानना ही नहीं चाहते हैं। और इससे क्या होता है, इससे ये होता है बहनों कि हमारा जो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास है वो भी कम हो सकता है।
1: बिल्कुल। तो अब इससे बचने के लिए बहनों, भला हम क्या करें, क्या
0: जी
1: किया जा सकता है?
0: जी बिल्कुल
1: देखिए, कुछ भी अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें बड़े बड़े काम तो बाद में करने होते हैं, छोटे छोटे कदम उठाने होते हैं। जैसे शुरुआत आप घर परिवार के बीच अपनी राय, अपनी बात रख कर कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ बातचीत चल रही होती है किसी सामाजिक विषय पर, किसी राजनीतिक विषय पर, या फिर कुछ भी जो करंटली जो चल रहा है न्यूज़ से रिलेटेड, लोग बैठकर चर्चा करते हैं, लेकिन उसमें हम अपनी राय देना या फिर कुछ सवाल पूछना इसलिए ज़रूरी नहीं समझते हैं कि क्या अब हमारे मतलब की बात नहीं है।
0: जी
1: लेकिन मैंने, आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं, वहाँ पर अपनी राय रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। अगर आपको बड़े लोगों के सामने शर्म आ रही है, या फिर आपको लग रहा है कि कोई आपको जज करेगा या सोचेगा आपको कुछ चीज़ें पता नहीं है, तो आपके बच्चे तो आपके पास है ना, आप बच्चों से अपने विचार खुलकर साझा करें, फिर किसी ऐसे ही बढ़ते बढ़ते किसी परिचित समूह में चर्चा के दौरान अपनी बात कहना शुरू करें, और इसी से धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास जो है ना वो बढ़ने लगेगा।
0: जी तो बहनों याद रखें, सवाल पूछना कमज़ोरी नहीं बल्कि सीखने और आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी होती है, और इसीलिए

मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारा दैनिक आयोजन महिला सम्मेलन। श्रोताओं, हमारा ये कार्यक्रम आप हमारे FM चैनल पर भी सुन सकते हैं।

0: अपने सवालों को दबाए कम, चाहे वो घर से जुड़ा हो, बच्चों की पढ़ाई से जुड़ा हो, आपके स्वास्थ्य से, बैंक से, या फिर आपके सपनों से। मन में जो भी सवाल आए उन्हें ज़रूर पूछिए।
1: बिल्कुल,

गणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना।

0: हमारा विकास।
1: तो बहनों, आजकल जो है पूरे भारतवर्ष में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है
2: जी।
1: और आज हम बात करेंगे गरिमा, बच्चों और युवाओं में बढ़ता नशा और उसके प्रभाव और रोकथाम के बारे में।
2: बिल्कुल बहनों, देखिए हमारे देश के जो युवा है वही हमारे देश के भविष्य भी हैं
1: जी।
2: उनके जो सपने हैं, उनकी ऊर्जा, उनकी प्रतिभा पर ही हमारे कल का भारत निर्भर करता है। मगर नशे की बढ़ती प्रवृत्ति इस भविष्य को गंभीर चुनौती दे रहा है
1: जी। बिल्कुल, जिज्ञासा, दोस्तों का दबाव, तनाव या गलत संगति जो है, शुरुआत भले ही किसी भी कारण से हो, मगर धीरे धीरे यही आदत जो है एक गंभीर लत का रूप ले सकती है। नशा न सिर्फ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बहनों, बल्कि शिक्षा, करियर, पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालता है।
2: बिल्कुल, ये जो आज का हमारा विषय है, आज के समय में बड़ा ही चिंता का विषय बनता जा रहा है
1: जी।
2: आज हम अपने आसपास देखें या ऐसी खबरें भी सुनने को मिलती हैं कि हमारे आसपास के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, वो दोस्तों के दबाव या तनाव के कारण या जिज्ञासा के कारण, किन्हीं भी इन कारणों की वजह से नशे की ओर बढ़ रहे हैं
1: जी।
2: ये जानते हुए भी कि इन सब का उनके ऊपर कितना गंभीर असर पड़ रहा है, इसकी गंभीर परिणामों को भी वो लगातार नज़रअंदाज करते जा रहे हैं
1: जी। तो देखिए बहनों, सबसे पहले तो नशा बच्चों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। कम उम्र में जो है बच्चे नशा करने से शरीर का, जो बच्चों का शारीरिक विकास होता है वो प्रभावित हो रहा है। उनकी रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो भी कमज़ोर होने लगती है और जल्दी ही वे बीमार भी पड़ जाते हैं। ऐसा ही होता है ना?
2: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इतना ही नहीं, नशा जो है ना वो सीधे दिमाग पर भी असर डालता है
1: जी।
2: बच्चों की याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, उनका ध्यान केंद्रित करने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। यही कारण होता है कि कई बार हम देखते हैं ना कि बहुत अच्छे विद्यार्थी है, बहुत अच्छे उनके नंबर आते हैं, लेकिन जैसे ही नशे की लत लगने के बाद वो पढ़ाई में भी पीछे रह जाते हैं, उनके परीक्षा परिणाम देखें तो वो खराब होने लग जाते हैं और स्कूल और कॉलेज छोड़ने तक की नौबत आ जाती है
1: जी। बिल्कुल, देखिए नशा बच्चों में जो है व्यवहार को भी बदल देता है। वे चिड़चिड़े, गुस्सैल और अकेले रहने वाले हो जाते हैं और कई बार वे परिवार से झूठ बोलने भी लगते हैं और जिम्मेदारियों से भी दूर भागने लगते हैं। और एक गंभीर बात ये है बहनों कि नशे की लत आर्थिक और सामाजिक समस्याएं तो पैदा करती ही है। नशे के लिए पैसे जुटाने की जो कोशिश होती है ना, वो कुछ बच्चे गलत रास्तों पर भी जा रहे हैं और ये तो हर रोज़ देखने को मिलता है हमारे समाज में कि बच्चे जो है किस तरह से चोरी करने पे मजबूर हो जाते हैं इस नशे के कारण।
2: बिल्कुल, जो नशा है वो बच्चों के आत्मविश्वास और भविष्य दोनों को ही नुकसान पहुंचाता है
1: जी।
2: उनके सपने, करियर और जीवन के लक्ष्य भी इस कारण से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए देखिए, जो माता पिता है, जो अभिभावक है, जो समाज के बड़े लोग हैं, हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के व्यवहार में ये जो अचानक आने वाले बदलाव है इस पर ध्यान दिया जाए, उन्हें इस सब चीज़ों के प्रति जागरूक किया जाए, उनसे खुलकर बात करें और उन्हें समय समय पर सही मार्गदर्शन प्रदान करते रहें
1: जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कहा गरिमा कि जो माता पिता और बड़े हैं ना, उनको ध्यान देना चाहिए कि हमारा बच्चा कुछ अलग से व्यवहार तो नहीं कर रहा है, क्योंकि जनरली सबको पता होता है अपने बच्चों के बारे में कि वो उसका क्या व्यवहार है, उसकी क्या आदतें हैं। अगर उसकी आदतें चेंज हो रही है तो मतलब थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्यों हो रही है, क्योंकि बच्चों को खेल, योग, संगीत, पुस्तक पढ़ने और अन्य रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ना चाहिए। अगर आपका बच्चे में कुछ ऐसे सिम्टम दिखते हैं कि वो कुछ अलग सा व्यवहार कर रहा है तो उसको इस तरफ जो है जोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वो जो नकारात्मक चीज़ें होती है ना उनसे वो दूर रहने लगता है, क्योंकि वो इस तरह बिजी हो जाता है।
2: बिल्कुल, देखिए नशा जो है ना वो कुछ समय का सुख ज़रूर उन्हें दे सकता है, लेकिन इसके जो परिणाम हैं वो लंबे समय तक नुकसान पहुँचाते हैं। ये बात बच्चों को अच्छी तरह से समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है
1: जी।
2: तो आइए हम सभी मिलकर बच्चों और युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें और उन्हें स्वस्थ, सुरक्षित तथा उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने में सहयोग दे। नशे से दूर रहें और जीवन से प्यार करें।
1: और देखिए, कहा भी गया है ना बहनों कि नशा छीन लेता है बचपन की मुस्कान, इसीलिए बच्चों को दे सही दिशा और पहचान।
2: बिल्कुल। हुम हुमा हुमा हुम हुमा हुमा हुम हुमा हुमा हुम।

0: कोई आत्मनिर्भर बनना चाहता है कि खुद के पैसे कमाए, खुद के लिए जो अपने अरमान हैं, जो ख्वाहिशें हैं, उन्हें पूरा करें। और इस मामले में महिलाएं भी एकदम पीछे नहीं रह रही हैं। वो अलग अलग तरीके ढूंढ रही हैं अपने लिए व्यवसाय शुरू करने का, खुद से कुछ बिजनेस शुरू करने का या कहीं नौकरी करने का। तो आज भी हम ऐसे ही एक करियर विकल्प, ऐसे ही व्यवसाय की बात करेंगे जो कम निवेश में शुरू किया जा सकता है और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी देता है।
1: जी, आज हम बात करेंगे टिफ़िन सर्विस के व्यवसाय के बारे में।
0: बिल्कुल।
1: देखिए बहनों, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत से लोग जो है घर का खाना बना, जो ताज़ा खाना होता है, पौष्टिक खाना होता है, उसे खाना चाहते हैं।
0: जी।
1: लेकिन समय की कमी के कारण खुद खाना बनाना नहीं बना पाते हैं। ऐसे में टिफ़िन सर्विस की मांग जो है लगातार बढ़ रही है।
0: बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। देखिए, कई ऐसे नौकरी पेशा लोग हैं, कुछ ऐसे छात्र हैं, कुछ अकेले रहने वाले कोई कर्मचारी हो गए, या फिर ऐसे बुजुर्ग लोग भी हैं जो जैसा आपने कहा कि खाना नहीं बना पाते, लेकिन चाहते हैं कि घर का एकदम साफ सुथरा और पौष्टिक भोजन हमें मिले। तो उन लोगों के लिए वो अक्सर टिफिन सर्विसेज पर ही निर्भर रहते हैं। हम अपने आसपास देखें तो ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। सुनने में तो लगता है ना कि सभी तो घर पर बना लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूर, अपने घर से दूर रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि उन्हें घर का खाना मिले। तो उनके लिए आप टिफिन सर्विसेज शुरू कर सकते हैं, इसीलिए ये एक अच्छा और स्थायी करियर भी बन सकता है।
1: जी, और सबसे अच्छी बात ये है गरिमा के जो हमारी बहनें हैं ना, वो जो है इसे अपने घर से भी शुरू कर सकती है, यानी कि उन्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें कहीं अपना काम छोड़ के, अपना घर छोड़ के कहीं बाहर जाना पड़ता है। वो अपना ये काम अपने घर से शुरू कर सकती है, और शुरुआत में जो है बहुत बड़े निवेश की भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारी बहनें अक्सर ये सोचती है ना कि पैसा कहाँ से लाएंगे, अगर हम बिज़नेस शुरू करेंगे, अपना काम शुरू करेंगे तो बहुत पैसा लगेगा और वो कहाँ से लाएंगे। तो देखिए बहनों, ये व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें बहुत कम पैसों की ज़रूरत होती है। यदि खाना बनाने का शौक और स्वाद अच्छा हो तो धीरे धीरे ग्राहक जो है अपने आप ही बढ़ने लगते हैं।
0: आपने एकदम सही कहा। देखिए, वैसे भी जो हमारी बहनें हैं वो घर पे जब अपने लिए, अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं तो एक दो लोगों का खाना तो वैसे ही फालतू में बन ही जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्यों ना उस खाने को यूज किया जाए। और शुरुआत आप 5 से 10 टिफिन से शुरू कर सकती हैं। 5 से 10 लोगों का टिफिन दिया जाए, आप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए, सुबह के समय आपके पास समय नहीं होता है कि आप बच्चों को भी भेजना चाहती हैं, ऑफिस की तैयारी करनी होती है, तो दिन के समय अगर आप फ्री है तो दिन के समय का आप लंच उन्हें दे सकती हैं। और जैसे जैसे आपका जो मार्केटिंग है उसके लिए भी आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्वाद अच्छा होगा, आप साफ़ सुथरे तरीके से खाना बनाएंगे, तो ग्राहकों की संख्या बढ़ने पर इसे आप बड़े स्तर पर भी ले जा सकती हैं।
1: जी बिल्कुल। देखिए, केवल स्वादिष्ट खाना बनाना ही काफ़ी नहीं है, साफ़ सफाई, समय पर डिलीवरी और ग्राहकों की पसंद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी। ग्राहक को समय पर और गुणवत्ता भोजन मिले तो वो लंबे समय तक जुड़ा रहता है और दूसरों को भी आपकी सेवा के बारे में बताता है। तो देखिए बहनों, अगर आपको खाना बनाने का शौक है और आप इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकती है, साफ सफाई का, समय पर डिलीवरी का, ग्राहकों की पसंद का, तो आप जो है ये बिजनेस या ये व्यवसाय शुरू करने में देर मत करिए, क्योंकि ये व्यवसाय जो है थोड़े से कम पैसों में शुरू होगा और आपका लंबे समय तक अच्छा व्यवसाय चल सकता है।
0: बिल्कुल। और देखिए, आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया जो है वो व्यवसाय बढ़ाने में कितनी मदद कर रहा है।
1: जी बिल्कुल।
0: आप अपने टिफिन सर्विसेज की जानकारी और एडवर्टीजमेंट किसी भी सोशल मीडिया ऐप पर, वेबसाइट पर लोगों तक आप पहुंचा सकती है।
1: जी।
0: इसके अलावा आप अलग अलग तरह के मेन्यू भी तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए, एक हो गया सादा खाना जिसमें आप नमक कम, तेल कम, एक हो गया डाइट फूड, कुछ लोग डाइट भी करना चाहते हैं तो उन्हें उस तरह का खाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: कुछ लोगों को कम तेल, जैसे आज के समय में जैसे भागदौड़ बढ़ रही है तो उसके साथ साथ शारीरिक जो समस्याएं हैं वो भी बढ़ रही है।
1: जी हाँ।
0: तो उस लिहाज से आप कुछ अलग पैकेज उनके लिए कर सकती है, या फिर कोई विशेष अवसर हो गए, क्योंकि देखिए ना सुषमा, जब घर से दूर रहते हैं और कोई त्यौहार आते हैं तो वो त्यौहार वाला खाना खाने का मन भी करता है।
1: जी,
0: तो उसके लिए भी आप विशेष अवसरों के लिए कोई अलग मेन्यू तैयार कर सकती हैं। इससे जो ग्राहक है उन्हें विकल्प मिलता है और वो भी बढ़ता जाएगा और आपकी आय भी बढ़ती जाएगी।
1: जी हाँ। और इससे ग्राहकों को विकल्प मिलते हैं, व्यवसाय की आय बढ़ती है जैसे आपने अभी कहा। और कई बार जो है हमारी जो बहनें हैं वो छोटे स्तर से शुरुआत करके आजकल उद्यमी के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। कई ऐसी बहनें हैं गरिमा, आज के समाज में हमारी बहनों ने बहुत कुछ

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: बिनो आज के समय में हर

0: पाया है, बहुत आगे पहुंच गई है। तो
1: हम्म,
0: टिफिन सर्विस केवल कमाई का साधन नहीं है बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। इससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत बनाने में योगदान दे सकती है और अपने जो सपने होते हैं ना गरिमा, हमारी बहनों के बहुत सारी बहनें ऐसी होगी जो अपने सपने पूरे नहीं कर पाई है, तो अगर ये अपने सपने पूरा करना चाहती है तो देखिए बोलते हैं ना कि सपनों का कोई समय नहीं होता है, सपनों का कोई मतलब सपने जहाँ तक उड़ान भर सके भरने चाहिए और उसे समय नहीं देखना चाहिए। तो देखिए बहनों, अगर आप अपने समय पर अपने सपने पूरे नहीं कर पाई है तो आज आपके लिए बहुत अच्छा समय है।
1: बिल्कुल, तो बहनों अपने हुनर को पहचानिए, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अपने कदम बढ़ाइए।
0: जी बिल्कुल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो बहनों, कार्यक्रम के अंत में एक छोटी मगर बहुत काम की बात हम करते हैं। जरा सोचिए, रात के समय कभी अचानक बिजली चली जाए, किसी को हल्की चोट लग जाए या किसी ज़रूरी नंबर की तुरंत ज़रूरत पड़ जाए तो क्या होगा?
2: देखिए, अक्सर जो ये होता है ना, ज़रूरी चीज़ें होती है उन्हें हम अलग अलग जगहों पर रख देते हैं
1: जी,
2: और जब ज़रूरत पड़ती है, जब कोई मांगता है कि ये ला कर दो, तो फिर पूरा घर उथल पुथल हो जाता है। कभी गद्दों के नीचे देखा जाता है, अलमारियां खोली जाती है और इसी में काफ़ी समय निकल जाता है।
1: तो और देखिए गरिमा, जब हम कुछ ध्यान से रखते हैं ना किसी चीज़ को,
2: बिल्कुल,
1: तो कुछ एक्स्ट्रा ही ध्यान से रख देते हैं
2: बिल्कुल,
1: और वो हमें समय पर याद ही नहीं आती
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो यहीं पर काम आता है एक एमरजेंसी बॉक्स। एमरजेंसी

0: एमर्जेंसी बॉक्स यानी कि एक ऐसा डब्बा या बॉक्स जिसमें घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें एक ही जगह सुरक्षित रखी जाए।
1: जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इसमें एक टॉर्च और एक्स्ट्रा जो बैटरीज होती है वो रखी जा सकती है, क्योंकि अंधेरे में सबसे पहले रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। और इसके साथ ही चार्ज किया हुआ पावर बैंक भी रखा जा सकता है, क्योंकि आज के समय में मोबाइल ना सिर्फ संपर्क का ही सबसे बड़ा साधन है बल्कि ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें जो है इसी में पाई जाती है।
0: बिल्कुल, और अब बात करते हैं जैसे फर्स्ट एड किट की, तो रुई, पट्टी, बैंडेज, एंटीसेप्टिक जैसे जो बुनियादी चीज़ें हैं वो घर में हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए।
1: जी,
0: छोटी मोटी चोट लगने पर ये बहुत काम आती है। मगर ये भी बहनों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कोई भी दवा का उपयोग अगर आप कर रही हैं तो वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही कर रहे हैं।
1: जी, और फर्स्ट एड के बाद बात करते हैं उन नंबरों की जो हर घर में कई बार मोबाइल खराब हो जाए या संपर्क सूची उपलब्ध ना हो। ऐसे में एक कागज़ पर जो लिखे हुए नंबर होते हैं ना गरिमा, वो बहुत ही मदद कर सकते हैं हमारे इस कुछ भी ना मिल रहा हो।
0: बिल्कुल, और बहनों देखिए बरसात के मौसम में अक्सर जो मौसम है वो अचानक से ख़राब हो जाता है, ऐसे में कई बार रास्ते बंद हो जाते हैं या फिर जो बिजली है वो घंटों बाद भी नहीं आती है, तो ऐसे में कुछ मोमबत्तियाँ और माचिस भी आप इस बॉक्स में डाल सकती हैं।
1: तो बहनों ये बॉक्स आपकी जिम्मेदारी और समझदारी की निशानी है, क्योंकि संकट के समय घबराएं नहीं, तैयारी ही है जो है हमारे काम आती है।
0: बिल्कुल,
1: और तैयारी के शुरुआत किसी बड़े कदम से नहीं बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से होती है।
0: बिल्कुल, तो बहनों ऐसा एक बॉक्स आप भी बनाकर तैयार कर लें और अपने पास रख लें, क्योंकि देखिए कई लोग ऐसा सोच सकते हैं कि आप डर रहे हैं इसलिए ये बॉक्स तैयार करके रख रहे हैं, लेकिन ये आपका डर नहीं है, ये है आपकी समझदारी और सूझबूझ जो आप समय से पहले, मतलब ऐसी कोई परेशानी आने से पहले ही अपने लिए ऐसा कुछ तैयार कर रहे हैं। और सुषमा देखिए इसमें एक और चीज़ जो डाली जा सकती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है ना कि ये जो अभी हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि ज़रूरत की चीज़ें नहीं मिलती हैं, इसमें अक्सर ये होता है कि जो पहचान से संबंधित हमारे दस्तावेज होते हैं या फिर जो मार्कशीट्स होती है,
1: जी बिल्कुल,
0: या फिर बैंक के डॉक्यूमेंट्स हो गए या कहीं इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस की है, ये ज्यादातर उन चीजों के साथ होती है, क्यों नहीं हम कुछ ज्यादा।
1: जी बिल्कुल, मैं यही बात आपसे कहना चाह रही थी कि हम लोग जो है, हमारी बहनें होंगे, हम होंगे, हमें बोला जाता है कि नहीं इसे ध्यान से रखना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है इसे ध्यान से रखना, तो हमारी बहनें और हम जो है उसे इतना ध्यान से रखते हैं ना गरिमा कि जरूरत आने पर हमें मतलब जल्दी तो क्या मिलती है बल्कि उससे एक्स्ट्रा जो टाइम है वो हमें लग जाता है को ढूंढने में।
0: बिल्कुल, तो बहनों इसका भी आसान सा उपाय हम आपको बता देते हैं, आपके पहचान पत्र यानी कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड या जो भी आपको जरूरी दस्तावेज लगते हैं उनको फोटोस्टेट करवाकर इस बॉक्स में डाल दें। इसके बाद आते हैं आपके बैंक के डॉक्यूमेंट्स, उनकी भी एक कॉपी, पासबुक हो गई, आपकी चेकबुक हो गई या किसी भी जो भी बैंक से संबंधित आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी एक कॉपी भी इस बॉक्स में रखें। इसके बाद आते हैं आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जैसे कोई इंश्योरेंस हो गई या फिर आपने कुछ FD RD करवाई है उसकी जानकारी जो है वो भी आप इस बॉक्स में डाल सकते हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो सभी को पता हो कि इस बॉक्स में आपको ज़रूरत का सब सामान मिल
1: मतलब
0: सकता।
1: आपका कहने का मतलब ये है गरिमा कि मतलब अलमारी गद्दे ढूंढने से अच्छा है
0: एक बॉक्स में,
1: हाँ एक बॉक्स ढूंढो बस,
0: बिल्कुल
1: उस बॉक्स में ही आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा।
0: बिल्कुल, तो बहनों आप भी इस बात पर ध्यान दीजिएगा और आज ऐसा कोई एक बॉक्स बनाने के बारे में सोचिएगा जरूर।
1: जी बिल्कुल।

0: तो बहनों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कार्यक्रम समाप्ति की ओर। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की दीजिए अनुमति।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे हमारा दैनिक आयोजन महिला सम्मेलन। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर का एक बजने वाला है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
2: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।

0: और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा कि विश्व हरित भविष्य की ओर अग्रसर हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास को स्थिरता, आत्मविश्वास, निरंतरता और विश्वसनीयता के साथ जोड़ा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ वार्ता करेंगे। बैठक में व्यापार, निवेश, ऊर्जा और लोगों के बीच आपसी संपर्क सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होगी। श्री खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। वे 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज स्लोवेनिया के नवनियुक्त विदेश मंत्री टॉन काजर को बधाई दी और उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। पूर्व राजनयिक टॉन काजर ने स्लोवेनिया में प्रधानमंत्री जिनेश जानशा के नेतृत्व वाली नवगठित दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार में आधिकारिक तौर पर शपथ ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था। जाँच जारी है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उद्योग जगत के अग्रणी और बड़े निवेशक भी आयोजन का हिस्सा होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य भारत और इन देशों के बीच व्यापार तथा निवेश के नए अवसर खोजना है। भारत अमेरिका सेना के अधिकारियों की वार्ता को 29वां चरण हवाई में आयोजित किया गया। इसकी सह अध्यक्षता सेना प्रमुख रणनीतिक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और अमेरिकी सेना के उप कमान जनरल लेफ्टिनेंट जनरल जोएल वोवेल ने की। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल में आज भारतीय आम के प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रमुख भारतीय फल आयातकों ने हिस्सा लिया। इसमें महाराष्ट्र के अल्फांसो और केसर, आंध्र प्रदेश के बंगनपल्ली और हिमायत, उत्तर प्रदेश के लंगड़ा दशहरी और गुजरात के पके राजपुरी आम शामिल हैं। अमरीका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों की का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही पूरा नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। भारतीय वाणिज्य दूतावास ने पिछले वर्ष जुलाई में सिएटल में भारतीय आम की शुरुआत की थी। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय डियर लिसनर्स. 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला. वक्त हुआ है प्रोग्राम म्यूजिक मस्ती का. जी हाँ दोस्तों, तो इस कार्यक्रम का आनंद आप अब से लेकर ठीक 2 बजे तक उठा सकते हैं. तो यूं ही सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए FM शिमला के साथ. तो लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल की आवाजों में इस म्यूजिकल ट्रैक के साथ. गीत की बोल लिखे हैं विशाल मिश्रा ने, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने. फिल्म का नाम है हैप्पी हैडी एंड हीर.

0: है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
1: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें।
0: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक

0: के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में अगला गीत आपको सुना रहे हैं रक्षाबंधन फिल्म से हिमेश रेशमिया और निहाल तारू की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

0: संतान कर्तव्य से मुख ना मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुना रहे हैं फिल्म खेल खेल में। इस फिल्म से आवाजें हैं विशाल मिश्रा, ज़रे अस्कान, नबील शौकत अली की। गीत के बोल लिखे हैं कुमार और खादिम हुसैन ने। संगीत से सजाया है तनिष्क बागची और साजी अली ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कोई जाने ना से, आवाजें हैं लखविंदर वदाली और नीति मोहन की, शब्द रचना है मनोज मुंताशिर और श्याम दीवाना की, संगीत दिया है रोचक कोहली और विक्रम नेगी ने।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला पर। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुना रहे हैं सूर्यवंशी फिल्म से। आवाजें हैं अरिजीत सिंह और नीति मोहन की। गीत के बोल लिखे हैं रश्मि विर्क ने, संगीत दिया है कौशिक गुड्डू और अक्ष ने।

नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश। आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है, यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा। और इस बार हमारा स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है। आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जानकारी खुलकर प्रदान करें। आपके जो प्रगणक और पर्यवेक्षक हैं, यानी गणनाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आएं तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।

म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में अगला गीत आपको सुना रहे हैं मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं रानी मलिक ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में कार्यक्रम का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं एक रिश्ता फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: तो दोस्तों, इसी गीत के साथ म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम अब समाप्त होता है।
1: शुभ वाणी, लाभ वाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, FM।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दोपहर के 2:01 हो गया है और वक्त हुआ है कार्यक्रम सबरंग का। तो लीजिए, सबरंग कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं चित्रा सिंह की आवाज़ में ये गज़ल।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ सबरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 2:15 होने को हैं दोपहर। हिंदी समाचारों के लिए आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। सीबीएसई ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिल्का मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन स्तर और व्यापार में सुगमता लाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत और विश्व पर पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव

0: असाधारण रूप से मजबूत बनी हुई है। श्री मोदी ने दमण में कल लगभग 2,970 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
1: वर्ष 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था

0: रेट हासिल किए हैं और पिछला क्वार्टर जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है और ये दुनिया में तेज गति से आगे बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऐसे समय में जब कई देश आर्थिक अनिश्चितताओं का सामना कर रहे हैं, भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी हुई है। एक रिपोर्ट।
2: वित्त वर्ष 2025-26 में दर्ज 7.7% की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का जिक्र करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि पिछले 12 वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की दृढ़ता और मजबूती का संकेत है। रक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता, नवाचार, बुनियादी ढांचा और उद्यमिता तथा वैश्विक चुनौतियों से देश को उबारने की उनकी क्षमता ने भारत को एक आत्मविश्वासपूर्ण, दृढ़ और वैश्विक स्तर पर सम्मानित आर्थिक शक्ति में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ये उल्लेखनीय वृद्धि नए अवसर पैदा कर रही है और 14 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को मजबूत कर रही है। समर्थ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: रिजर्व बैंक ने विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। नए प्रावधानों के अंतर्गत सामान्य निवेश करने वाले विदेशी निवेशकों को अब कई तरह की निवेश सीमाओं से छूट दी गई है। आरबीआई ने केंद्र और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों के लिए पहले से लागू सामान्य और दीर्घकालिक निवेश सीमाओं को भी एक कर दिया है। नए दिशा निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। राज्य वित्त आयोगों के लिए डाटा सेट संबंधी समिति की रिपोर्ट 8 जून को जारी की जाएगी। केंद्र सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर वी अनंता नागेश्वरन ने इस रिपोर्ट को जारी करेंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि इस रिपोर्ट का जारी होना राजकोषीय विकेंद्रीकरण के लिए प्रमाण आधार को मजबूत करने की दिशा में सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। मंत्रालय के अनुसार यह रिपोर्ट राज्य वित्त आयोगों के लिए आवश्यक प्रमुख डाटा सेटों का एक सुव्यवस्थित और व्यापक विवरण प्रस्तुत करती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में व्यापार, निवेश, संपर्क, ऊर्जा और जन संबंधी सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्यों से आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दौरा भारत और नेपाल के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करेगा।
3: With Nepal, we have an expansive agenda.
4: नेपाल के साथ हमारा एजेंडा बहुत व्यापक है। इसमें विकास के लिए सहयोग से लेकर लोगों के बीच आपसी संबंध और व्यापार तथा निवेश शामिल हैं। इसलिए जब दोनों देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो इन सभी संबंधों पर चर्चा होगी। हम नेपाल के साथ अपनी इस बहुआयामी साझेदारी को और मजबूत करने के इच्छुक हैं।
3: Partnership that we have with Nepal.
1: भारत के 3 दिन के दौरे पर आए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार तथा निवेश मंच का आयोजन आज मध्य प्रदेश के इंदौर में किया जा रहा है। इसमें 15 लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन देशों के राजदूत और राजनयिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि छात्र अब कल मध्यरात्रि तक अपने आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 जून निर्धारित थी। CBSE ने सभी पात्र छात्रों से बढ़ी हुई समय सीमा का ध्यान रखते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। सभी पीड़ित एक ही परिवार के सदस्य थे और ब्यास नदी में अपने रिश्तेदार की अस्थियों को विसर्जित करने जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दुर्घटना स्थल पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से बचाव अभियान चलाया गया। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में रसोइये को गिरफ्तार किया है। इस होटल में 3 जून को आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य घायल हो गए। इससे पहले पुलिस ने होटल मालिक को भी गैर इरादतन हत्या और अन्य

0: संबंधित धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार किया था, जांच जारी है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.8 गीगावाट से बढ़कर 155 गीगावाट हो गई है। श्री शेखावत ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 40 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा क्षमता का दोगुना होना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ प्रगति का भी प्रमाण है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। श्री वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ कोलकाता के नबन्ना में आयोजित एक संयुक्त प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में 10 अमृत भारत स्टेशन पहले ही पूरे हो चुके हैं, जबकि 9 वंदे भारत एक्सप्रेस और कई अमृत भारत रेलगाड़ियां चल रही हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्ष में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: मुख्यमंत्री शिवेंदु अधिकारी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं को लागू करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के पूर्व अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के निष्कर्षों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणियों का खंडन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि जन स्वास्थ्य इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। श्री नड्डा ने बताया कि पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़कर 87.1% हो गया है, जबकि स्वास्थ्य बीमा कवरेज 4.9% से बढ़कर 60.2% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये प्रगति स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा पहुंचाने में निरंतर निवेश का परिणाम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई के सैन्य सलाहकार मोहसिन रेजाई ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इसराइल से स्वतंत्र होकर निर्णय लेने, होर्मुज जल टमरू मध्य में नाकाबंदी समाप्त करने और ईरान की जब्त संपत्तियों को छोड़ने का आह्वान किया है। रेजाई ने एक टेलीविजन चैनल के साथ साक्षात्कार में कहा कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता गतिरोध में है और ट्रंप को इस गतिरोध को तोड़ना होगा। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
2: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
3: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: मॉरिशस ने पिछले 21 दिनों में कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की यात्रा करने वाले या वहां से गुजरने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। ये कदम इबोला वायरस के प्रकोप को देखते हुए उठाया गया है। मौसम विभाग ने केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, रायलसीमा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी आज ऐसी ही स्थिति का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर में बिजली चमकने और तेज हवाओं का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बीते दिनों की गर्मी के बाद सुहावने मौसम से जनजीवन को काफी राहत मिली है।
4: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग

0: आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली टी20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। वैभव ने आईपीएल 2026 में सर्वोच्च रन बनाए थे। प्रिंस यादव को भी टीम में जगह मिली है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच न्यू चंडीगढ़ के मुल्तानपुर में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। चायकाल तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 209 रन बना लिए थे। भारत आज पुरुष अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान जापान से खेलेगा। ये मुकाबला जापान के काकामिगाहारा में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची शक्ति हैं और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन में डॉक्टर मांडविया ने ये बात कही। अमेरिका के सिएटल में मैंगो मैजिक फेस्टिवल भारतीय आम का प्रचार और स्वाद परीक्षण के दूसरे चरण का आज आयोजन किया गया। अमेरिका की सीनेटर मंका ढींगरा ने कहा कि खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान देशों के बीच केवल पोषण की जरूरतें ही नहीं करता बल्कि ये मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों की नींव भी रखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने के उपायों पर चर्चा की। रिजर्व बैंक ने भारत में निवेश को आसान बनाने के लिए विदेशी निवेशकों के सरकारी प्रतिभूतियों से जुड़े नियमों को सरल बनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज शाम नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि कल तक बढ़ाई। पंजाब में आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका मार्ग पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत। केरलम और माहे में कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी। और श्रेयस अय्यर सूर्यकांत यादव की जगह टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान बने। वैभव सूर्यवंशी पहली बार टीम में शामिल। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। FM

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 2:30 हुए हैं, वक्त हुआ है कार्यक्रम शिखरों के स्वर का। इस कार्यक्रम में आप आनंद लेते हैं लोकगीतों का। तो लीजिए, कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं संतोष की आवाज़ में इस लोकगीत के साथ।

शिखरों के स्वर कार्यक्रम का आनंद इस वक्त आप ले रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। लीजिए कार्यक्रम का अगला लोकगीत आपको सुना रहे हैं रंजीत कुमार की आवाज़ में।

0: तो दोस्तों, इसी लोकगीत के साथ शिखरों के स्वर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 3 बजने को है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 103.6 मीटर FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अब प्रादेशिक समाचार होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का दृष्टिकोण केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सामूहिक राष्ट्रीय मिशन है। वे पंचानद शोध संस्थान अध्ययन केंद्र द्वारा भारत 2047 विकसित भारत का संकल्प विषय पर आयोजित व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राज्यपाल ने भारत की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि देश ने डिजिटल तकनीक, नवाचार, स्टार्टअप, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने और सकारात्मक परिवर्तन के वाहक बनने का आह्वान किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 1 जून से 30 जून तक पूरे देश में खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिक, कृषि विश्वविद्यालयों के विशेषज्ञ, केंद्र व राज्य सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान गांव गांव जाकर किसानों को संतुलित खाद उपयोग, नकली पेस्टिसाइड की पहचान और वैज्ञानिक खेती की जानकारी देंगे। उन्होंने सभी किसानों से आग्रह किया है कि इस अभियान से जुड़कर वैज्ञानिक सलाह के अनुसार खाद का उपयोग करें और धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें।
3: अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही, इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केवीके के लोग, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी गांव गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे।

0: कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को अनुशासन और संवाद का संदेश दिया है। आज शिमला में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष नीरज भारती द्वारा अपनी ही सरकार पर लगाए गए आरोपों और पद से इस्तीफे को लेकर उपजे विवाद पर ये बात कही। चंद्र कुमार ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन बिना तथ्यों व पर्याप्त विचार विमर्श लगाए गए आरोप संगठन व सरकार दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। उन्होंने कहा कि नीरज भारती द्वारा दिए गए इस्तीफे को कांग्रेस नेतृत्व ने स्वीकार कर लिया है और इस संबंध में सभी पक्षों से बातचीत कर समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
1: जो कल स्टेटमेंट नीरज भारती ने दी है, उस स्टेटमेंट से ठीक मैसेज जो है वो नहीं है, क्योंकि राजनीति में कोई छोटा काम नहीं हुआ वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार के एलिगेशन लगाना हमारी पार्टी की जो सरकार है उसके ऊपर अटैक की बात, हम इसको डिसअप्रूव करते हैं। तो मैं उसको भी ये राय दूंगा कि इस प्रकार के एलिगेशन और बगैर तथ्य को बिना सोचे समझे कोई बात करना, ये पार्टी संगठन और पार्टी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है। जो कुछ उसका बयान इस चीज के ऊपर है उसका मैं खंडन करता हूँ।
0: उद्योग विभाग द्वारा शिमला जिला की थानाधार पंचायत में डिजिटल मार्केटिंग, जेम पोर्टल व एमएससी सीडीपी योजना पर एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय उद्यमियों व एमएसएमई इकाइयों को डिजिटल सशक्तिकरण, सरकारी खरीद प्लेटफॉर्म और विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक करना रहा। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग ने आज कुछ क्षेत्रों में वर्षा व ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता।
2: हिमाचल प्रदेश में जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के रोहतांग और कुंजम दर्रों पर बीते रोज हल्का हिमपात तथा कुछ क्षेत्रों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया है। बड़ी संख्या में पर्यटक हिमाचल के विभिन्न पर्यटन स्थलों की ओर रुख कर रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों के लिए अंधड़, ओलावृष्टि, वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: प्रदेश के शिमला, सोलन, कांगड़ा और सिरमौर जिलों में नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों ने आज पद व गोपनीयता की शपथ ली। शिमला के बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को शपथ दिलाई, जिसमें सभी 25 वार्डों के सदस्य शामिल रहे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचारों के बाद आकाशवाणी शिमला से लीजिए प्रस्तुत है हमीरपुर जिले की चिट्ठी। लेखक हैं हरीश नंदा और वाचिका हैं प्रभा शर्मा।
0: विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर हमीरपुर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा बचत भवन में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 66 लोगों ने रक्तदान किया। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी की अध्यक्ष गंधर्वा राठौड़ ने सभी लोगों को विश्व रेडक्रॉस दिवस की बधाई देते हुए कहा कि ये संस्था हमेशा असहाय व जरूरतमंद लोगों की मदद करती है। उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर में अधिक से अधिक लोगों को रेडक्रॉस सोसाइटी से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इन लोगों से प्राप्त होने वाले अंशदान से असहाय व जरूरतमंद लोगों की अधिक से अधिक मदद की जा सके। जिला हमीरपुर की उपायुक्त व जनगणना अधिकारी गंधर्वा राठौड़ ने सभी जिलावासियों से अपील की है कि वे भारत की 16वीं जनगणना की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने में सहयोग करें, ताकि जिला की जनसंख्या का सही डाटा सामने आ सके। उपायुक्त ने बताया कि जिला हमीरपुर में भी जनगणना की प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में मकानों की गणना व सूचीकरण किया जाएगा। इसके लिए जनगणना अधिकारी 16 जून से 15 जुलाई तक घर घर दस्तक देंगे। उपायुक्त ने कहा कि इस बार की जनगणना पूरी तरह डिजिटल होगी और इसके पहले चरण में 1 जून से 15 जून तक लोगों के पास स्वगणना का विकल्प रहेगा। इस अवधि के दौरान लोग स्वयं भी सेल्फ एलिमिनेशन यानी स्व प्रगणना पोर्टल एमएसएससी सेंसिस जीओवी इन ऑन पर ऑनलाइन अपनी जानकारी भर सकेंगे। उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने जिला मुख्यालय में विभिन्न संस्थाओं के परिसरों और मुख्य बाजार का निरीक्षण करके विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उनके साथ एडीसी अभिषेक गर्ग भी मौजूद रहे। उपायुक्त ने सर्वप्रथम जिला पुस्तकालय का निरीक्षण करके वहां युवाओं के लिए उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी ली और संबंधित अधिकारी

0: को दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि इस परिसर में आम पाठकों और विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने कई विद्यार्थियों के साथ संवाद भी किया। प्राकृतिक खेती में सराहनीय कार्य कर रहे हमीरपुर के निकटवर्ती गांव हरनेड़ के ललित कालिया ने इस सीजन में प्राकृतिक खेती से चने की खेती करके अच्छी खासी पैदावार हासिल करके अन्य किसानों के लिए एक मिसाल कायम की है। ललित कालिया ने बताया कि इस बार उन्होंने गेहूं के साथ ही चने की बुआई भी की थी। वे अपने खेतों में किसी भी तरह की रासायनिक खाद या कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। इस बार उन्हें गेहूं के साथ ही लगभग 75 किलोग्राम चने की पैदावार भी हुई है। इस चने की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इससे पहले ललित कालिया ने प्राकृतिक खेती से ही मात्र 18 मरले जमीन पर गन्ना लगाकर पहले ही सीजन में लगभग 70 किलोग्राम शक्कर तैयार की थी। वे पुराने देसी बीजों का संरक्षण भी कर रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय द्वारा संचालित ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान के अंतर्गत देश की अमूल्य पांडुलिपि विरासत के संरक्षण, दस्तावेजीकरण व अभिलेखीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिला भाषा अधिकारी संतोष कुमार पटियाल ने कहा कि हमारे देश में आज भी अनेक प्राचीन व दुर्लभ पांडुलिपियां आम घरों, मंदिरों, मठों, निजी परिवारों, संस्थाओं तथा विभिन्न समुदायों के पास सुरक्षित हैं, किंतु उनका अभी तक कोई आधिकारिक रिकॉर्ड तैयार नहीं हो पाया है। अब संस्कृति मंत्रालय ने इन अमूल्य सांस्कृतिक व ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान आरंभ किया है। गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव के लिए आरंभ किए गए HPV टीकाकरण अभियान के तहत जिला में 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की सभी लड़कियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त गंधर्वा राठौड़ ने भी स्वयं फील्ड में उतर गई हैं। HPV वैक्सीन के प्रति आम महिलाओं व लड़कियों को जागरूक करने के लिए उपायुक्त द्वारा स्वास्थ्य खंड गलोड़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत पनसाई के गांव बेहा का दौरा किया। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहा पहुंची उपायुक्त ने गांव की महिलाओं से HPV वैक्सीनेशन और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उपायुक्त ने कहा कि HPV वैक्सीन का टीका किशोरियों को जिंदगी भर सर्विकल कैंसर से जानलेवा रोग से बचा सकता है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक उपायुक्त की अध्यक्षता में की गई, जिसमें सड़क सुरक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी सरकारी अस्पतालों और अन्य सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.5 लाख रुपये तक का मुफ्त व कैशलेस इलाज हो सकता है। हमीरपुर जिला की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: हमीरपुर जिले की चिट्ठी आकाशवाणी शिमला से प्रसारित की जा रही थी। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

शुभ वाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एफएम

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। वक्त हुआ है प्रोग्राम फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स का। जी हाँ दोस्तों, तो आपको ले चलते हैं यादों के उस सुनहरे सफर पर जहाँ गीत दिल को छू लेते थे और बोल जिंदगी का फलसफा सिखाते थे। तो आइए आपके और हमारे पसंदीदा सदाबहार नगमों की महफिल सजाते हैं और सुनवाते हैं आपको किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म हाथी मेरे साथी। इस फिल्म का गीत आनंद बख्शी के बोल है।

कुछ बातें भूली बिसरी, कुछ यादें पुरानी है। कुछ बातें भूली बिसरी, कुछ यादें पुरानी है। ये खूबसूरत नगमे किसी की मीठी कहानी है। जी हाँ दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप आनंद लेते हैं पुराने गीतों का, जो आज भी संगीत की दुनिया में चमक रहे हैं। तो लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मेरे महबूब फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और संगीत दिया है नौशाद ने।

इस कार्यक्रम में आप आनंद लेते हैं पुराने गीतों का जो आज भी संगीत की दुनिया में चमक रहे हैं। तो लीजिए, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मेरी महबूब फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने और संगीत दिया है नौशाद ने।

फिल्म संगीत और लेट्स प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुना रहे हैं हिम्मत फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

तो दोस्तों, इसी गीत के साथ फिल्म संगीत ओल्ड हिट्स कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 3:30 हुए हैं। वक्त हुआ है युवा साथियों के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का।

सभी युवा दोस्तों को सर्वेश पंडित का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर और सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे गुण की जिसे हम डिस्कस तो बहुत करते हैं, लेकिन कभी आज के समय में उसकी कमी सबसे ज़्यादा महसूस हो रही है। टॉपिक है धैर्य का महत्व, तेज रफ्तार दौर में ठहरने की कला। आज का ज़माना इंस्टेंट रिजल्ट्स का ज़माना है। खाना ऑर्डर ऑनलाइन किया और कुछ मिनटों में चाहिए, मैसेजेस का भी फास्ट रिप्लाई चाहिए, मैसेजेस मेहनत शुरू करते ही सक्सेस भी जल्दी चाहिए। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां वेट करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या एक पौधा बीज बोते ही पेड़ बन सकता है? क्या एक आर्टिस्ट एक दिन के रियाज से आर्टिस्ट बन सकता है? शायद नहीं। नेचर हमें हर दिन धैर्य का पाठ पढ़ाती है। सूरज रोज अपने समय पर उगता है, नदियाँ धीरे धीरे अपना रास्ता बनाती हैं, फिर हम इंसान ही क्यों हर चीज़ को जल्दी पाने की बेचैनी में रहते हैं। आज के प्रोग्राम में इसी टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। धैर्य है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों है और हमारी लाइफ को ये कैसे बेहतर बना सकता है? तब तक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गाने के साथ।

दोस्तों, लोग धैर्य को केवल वेट करना समझते हैं, लेकिन असली में पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं, बल्कि वेट करते हुए पॉजिटिव बने रहना, मुश्किल सिचुएशंस में बैलेंस्ड रहना और असफलताओं के बावजूद एफर्ट्स करना है। पेशेंस कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी पावर है। जब हम किसी गोल की ओर बढ़ते हैं तो बहुत बाधाएँ आती हैं, रिजल्ट्स उम्मीद जितने नहीं मिलते और लोग भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। ऐसे समय में दो रास्ते सामने आते हैं, या तो हम हार मान लें या फिर धैर्य के साथ आगे बढ़ते रहें। इतिहास गवाह है कि बड़ी अचीवमेंट्स रातों रात हासिल नहीं होती, हर सक्सेस के पीछे सालों की मेहनत, हार्डवर्क और पेशेंस छिपी होती है। एक स्टूडेंट एग्जाम की तैयारी करता है, एक खिलाड़ी रोज ट्रेनिंग करता है, एक कलाकार सालों तक रियाज करता है, तब जाके कहीं सफलता का वो पल आता है। लेकिन हम सिर्फ रिजल्ट्स देखते हैं, उसके पीछे का सब्र नहीं। यही कारण है कि सब्र लाइफ की सबसे

आज अगर किसी चीज़ का सबसे बड़ा टेस्ट है तो वो है पेशेंस का। सोशल मीडिया के दौर में हम लगातार दूसरों की अचीवमेंट्स देखते रहते हैं। किसी को नौकरी मिल गई, किसी का बिजनेस अच्छा चल गया, किसी की वीडियो वायरल हो गई, और फिर अनजाने में हम खुद गोंद से कंपेयर करने लगते हैं। हमें लगने लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। यहीं से धैर्य की शुरुआत होती है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर इंसान का सफ़र अलग होता है, हर किसी की सिचुएशंस अलग होती हैं, सबका समय अलग होता है। आज के युवा इसी दबाव में जी रहे हैं कि उन्हें जल्दी सफल होना है, लेकिन सक्सेस की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाती है, कुछ को थोड़ा समय लगता है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उनके एफर्ट्स वेस्ट हैं। धैर्य हमें ये समझने में मदद करता है कि लाइफ कोई रेस नहीं बल्कि एक जर्नी है, और जर्नी का मज़ा तभी लिया जा सकता है जब हम हर पड़ाव को एक्सेप्ट करना सीखें। हमारा अगला गाना इसी सफ़र के नाम।

दोस्तों, पेशेंस का संबंध सिर्फ सक्सेस और अचीवमेंट से नहीं, बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ से भी है। जब हम डेस्परेट हो जाते हैं तो स्ट्रेस बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, निराशा बढ़ती है। पर जब हम धैर्य रखते हैं तो हर सिचुएशन को क्लियरली देख पाते हैं। ये हमें रिएक्ट करने के बजाय सोचने का मौका देती है। कई बार ऐसे पल भी आते हैं जब हमें सब कुछ काबू से बाहर लगता है। ऐसे समय में ये पेशेंस ही हमारा सबसे बड़ा सहारा बनती है। ये हमें सिखाती है कि प्रॉब्लम्स का सलूशन तुरंत नहीं मिलता, कुछ घाव भरने में समय लगता है, कुछ सवाल समय के साथ सुलझते हैं, कुछ सपने समय के साथ पूरे होते हैं। और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि समय और धैर्य मिलकर वो कर सकते हैं जो कोई दूसरी शक्ति नहीं कर सकती। आज जब दुनिया लगातार तेज होती जा रही है, तब ये हमें अंदर से स्थिर बनाए रखती है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले गीत की ओर।

तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक से हम ये समझ सकते हैं कि धैर्य या पेशेंस कोई इरेलेवेंट या पुराना गुण नहीं, बल्कि आज इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। पेशेंस रखने का मतलब ये नहीं कि हम प्रयास करना ही छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है लगातार एफर्ट्स करना बिना जल्दबाजी के, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना बिना निराश हुए, अपने वक्त पर हमेशा विश्वास रखना। याद रखिए, हर बीज को पेड़ बनने में वक्त लगता है, नदी को सागर से मिलने में भी वक्त लगता है, और इसी तरह हर इंसान को मंजिल मिलने में भी वक्त लगता है। इसलिए अगर आज आपको लग रहा है कि मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो निराश मत होइए। हो सकता है कि आपके एफर्ट्स अभी दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन वो बेकार नहीं जा रहे। इसी जज्बे और इन्हीं आशाओं के साथ बढ़ते हैं अपने अगले म्यूजिकल ट्रैक की तरफ।

दोस्तों, घड़ी की सुई आगे बढ़ती जा रही है और अब मैं सर्वेश आपसे इजाज़त चाहूँगा। याद रखिए, तेज़ी से आगे बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन सही दिशा में आगे बढ़ना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। और सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए धैर्य की ज़रूरत हमेशा रहेगी, इसलिए धैर्य रखिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए FM शिमला के साथ।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। वक्त हुआ है प्रोग्राम फिल्म संगीत का, और संगीत के साथ साथ इस कार्यक्रम में हम आपको देंगे जानकारी आपके आसपास की कि क्या कुछ खास चल रहा है आपके आसपास। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण संरक्षण, स्थायी गतिशीलता और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए शिमला में विश्व पर्यावरण दिवस साइकिल रैली निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में शहर की साइकिल चालकों ने हिस्सा लिया। रैली में साइकिल चालकों ने शिमला की ऐतिहासिक विरासत से जुड़े स्थानों जैसे ओकओवर, लोक भवन, फॉरेस्ट सड़क, सेंट पीट्स और प्रतिष्ठित रिज मैदान

से होकर रैली निकाली। रैली का समापन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकारी आवास पर हुआ और मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति सभी प्रतिभागियों के उत्साह और उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की।

तो जानकारियाँ और भी है, आपने बस इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहना है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए एफएम शिमला के साथ। फिलहाल आपके लिए प्ले कर रहे हैं गर्लफ्रेंड फिल्म का ये गीत श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

प्रोग्राम में नेक्स्ट आपको बता देते हैं कि गेटी थिएटर के टैवरन हॉल में शुक्रवार को युवा कलाकार रजत शर्मा की चित्रकला प्रदर्शनी शुरू हुई। इसमें हिमाचल की संस्कृति और प्रकृति को रंगों के माध्यम से कैनवस पर उकेरा है। 7 जून तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 200 से 15,000 तक के 100 से अधिक चित्र प्रदर्शित किए हैं। प्रकृति, हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं, वन्य जीव और हिमाचली संस्कृति से प्रेरित अनेक आकर्षक चित्र प्रदर्शित किए गए। ये प्रदर्शनी न केवल कला के प्रचार प्रसार में योगदान दे रही है, बल्कि स्थानीय युवा कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का प्रभावी मंच भी उपलब्ध करा रही है। तो लीजिए, कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुना रहे हैं आन मैन एट वर्क फिल्म से उदित नारायण, शब्बीर कुमार, सारिका कपूर और उज्ज्वला की आवाजों में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत दिया है अनु मलिक ने।

तो दोस्तों, चलते चलते आपको बता देते हैं कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जयंती पर 23 जून को मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ये प्रतियोगिता राजधानी के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित की जाएगी। इसमें भारत सहित 6 देशों के मुक्केबाज में बॉक्सिंग की जंग होगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे।

तो दोस्तों चलते चलते आपको बता देते हैं कि हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की जयंती पर 23 जून को मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ये प्रतियोगिता राजधानी के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित की जाएगी। इसमें भारत सहित 6 देशों के मुक्केबाज में बॉक्सिंग की जंग होगी। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ फिल्म संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। 4:20 होने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों में सबसे पहले सुनिए चंबियाली कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।

चंबियाली कार्यक्रम सुनने वाले सभी लोग का जो सुषमा शर्मा रा प्यार भरा नमस्कार जी ता हाजिर न अकबरी फेरी तुंदा ही अपना चंबियाली कार्यक्रम लेकर ही तय स्वागत कर दिया तुसु सभी लोगों रा इस कार्यक्रम मंच। बिल्कुल जी जियाँ तुसु पता ही है जे असे इस कार्यक्रम जो हर एक सुआर है ब्रिप्त ते संचरे लेकर इंदे आते कोशिश कर दिया से तुसु रताएं असें कोई ना कोई जे असे नए विषय ले करी इन ताकि तुसे जे असे इं विषय रे बारे में जाने करे जागरूक बुझी सकन ते सीते सीते असे तुसु चंबे रे लोक गीत जे हिंसे भी सुनांदे हिन ताकि तुंदा मनोरंजन जे असे भी जे असे भुंदा रहा। तो अज अस तुसी ते गल करने हाँ जीवन ज्योति बीमा योजना कने स्वास्थ्य कने योग रे बारे में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जे हाँ ये अक इदे योजना हाँ जिहड़ी कसी भी वजह कने मृत्यु होने पर जे असे जीवन बीमा जे असे कवर करते हाँ ये अक सालारा जे असे कवर भुंदा हाँ जे त्यो हर साल जे असे रिन्यू करते हैं। ये योजना जे असे बैंक डाकघर जे असे इं सभी जगह में जे असे चलाए जाते हाँ। भारत सरकार है समाज रे जड़े भी गरीब ते घट आय वाले लोग हैं त्यारे विकास रहता है अक नई बीमा योजना यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जड़ी 18 से 50 साल री उम्री रे लोका रहता है बनो रे हा। इतमा जे असे मनुरी जे मृत्यु होने पर बीमा कंपनी जे असे 2 लाख रुपये री आर्थिक मदद भी जे असे दें हा। इस

कंपनी रिजड़ी प्रीमियम दर हा से होनी बीमा पॉलिसी री तुलना में जे असें सभी थों जे असें बल्ले सकते जे कि फायदे हा सस्ते हा ते इटेर ताई तुसु सिर्फ 436 रुपये जे असें प्रीमियम देना हा ते ए प्रीमियम जे असें हर साल द्वारा जे असें तुसु देना पैंदा हा। ता असु जी असें जीवन ज्योति बीमा योजना पर गलबात जे असें जारी रखने आ। कार्यक्रम री शुरुआत करदे किशोर कुमार जी रे गाए इस बढ़िया जिने लोकगीत कन्नै।

જી, અબે તુએ શુણવા એ બધ્યા જીણા લોકગીત સાંય સાંય મત કર રાવીએ, તાસે ગાલા તું સીતે કર દે જીવન જ્યોતિ બીમા યોજના રે। ऐसा बीमा योजना रा लाभ जहाँ से लेने रहता है तुसो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना रा फॉर्म जहाँ से भरना पैना हा। ऐसा योजना रहता है जहाँ से आवेदन करने रहता है 45 रोजा रह बाद जहाँ से बीमा कंपनी रा द्वारा जहाँ से प्रीमियम जहाँ से शुरू करी दिता गांदा हा। ऐसा योजना रह जहाँ से मेच्योर भूनरी उम्र 55 साल हा, ते ऐसा योजना कने जुड़ने रहता है जैसे तुसो कसी भी किस्मा री मेडिकल जांच जैसे करवाने री जरूरत नहीं है। ते ऑनलाइन आवेदन भी तुसे जैसे आसानी कने करे सकते हा। ऑनलाइन आवेदन जैसे इतमा करना बड़ा ही आसान हा, इतमा तुसो कसी भी किस्मा री परेशानी रा सामना जैसे ना करना पैंदा। टैक्स छूट जैसे इतमा गल करते हा ता ऐसा योजना रे प्रीमियम पुर जैसे आयकर अधिनियम री धारा 80C रे अंदर छूट जैसे मुल दे हा। तैसे इते ही जैसे नॉमनी जो मुलने वाले डेथ क्लेम रे रकम भी जैसे टैक्स फ्री जैसे भुंदे हा। ऑटो डेबिट री सहूलत भी इतमा तुसु देते गांदे हा, जिया प्रीमियम रे रकम हर साल जैसे सीधे तुंदे बचत खाते थों जैसे ऑटो कट भुज गांदे हा। जित्थों तुसे जैसे घड़ी घड़ी फॉर्म भरने की नवीनीकरण की भाग दौड़ थों जैसे बचे गांदे हा। जे इतमा उम्र ते पात्रता री गल करन ता 18 थों 50 साल रे जैसे उम्री रा कोई भी भारतीय नागरिक जैसे ऐसा स्कीमा कने जैसे जुड़ सकता हा। ते स्कीमा कने जुड़ने रहता है तुसो डाकघर की बैंक मा जैसे तुंदा बचत खाता भूना जैसे जरूरी हा। ऐसा योजना रहता है पात्र सही भूने हिन जारा जैसे बैंक खाता डाकघर माँ भूला कि बैंक माँ जैसे भूला। इतियो 55 वर्ष जियाँ से पहले ही बोलू अजे ताएँ जैसे तुसे रिन्यू भी करवाए सकते हा। योजना माँ जैसे नामांकन तय ज़्यादा जानकारी रहता है तुसे अपने नज़दीकी बैंक की डाकघर माँ जैसे खींची सकते हा। ज़्यादा जानकारी जैसे जन सुरक्षा री आधिकारिक वेबसाइट थाओं भी तुसु मुल सकते हा। 9 मई 2015 जो जैसे ऐसा योजना जो करोड़ा टबरा रा सुरक्षा कवच ते संकट रे रूप माँ जैसे ले करे जैसे सरकार आए थे, यानी कि इटेरी शुरुआत जैसे सरकार करे थे। ता ये योजना जी असे बले सकदे असे बड़े ही खरे आके योजना हा तियां लोका रताएं जिड़े भी लोग अपना जैसे प्रीमियम करवाना चाहते हैं। जीवन बीमा तुंदे परिवार ते रताएं आक जरूरी जे असे वित्तीय सुरक्षा कवच भी हा। ये ना सिर्फ मृत्यु रे जोखिम सा तुसो बचांदा हा, बल्कि बचत हा, निवेश हा, टैक्स मा भारी छूट दिलाने राह भी जे असे काम करता हा। परिवार जो वित्तीय सुरक्षा भी इतमा दिते गांदे हा, जियाँ पॉलिसी धारक रे अकदम मृत्यु भूने पर बीमा कंपनी द्वारा जैसे टबरा जो जैसे पैसे दिते गांदे हैं। ता तेरे बारे में असू थोड़े आग तुसी ते होर गल करने हाँ। सुनद्या अकोर बदिया जीना लोकगीत कृष्ण लाल सहगल जी रे भाग में।

जी अबे तू शुणुआ ए बदिया जिना लोकगीत ता गल करते हाँ जीवन जिहड़ी इन जीवन ज्योति बीमा योजना हाँ इटेरे बारे में। ए जी ऐसे रकम जिहड़ी बुंदे हाँ इंदी ए घर रे खर्चे है ते बच्चे री जिहड़ी इंदी शिक्षा हाँ घर चलाने दे ताएं अक बड़ा ही मजबूत असे बले सकदे अजे सहारा भी बन।

या सही आसे बल दे जे जीवन पॉलिसी लैने थाउं जे आसे तुसे ते तुंदा जेड़ा टब्बर हा से चिंता मुक्त जे आसे रहंदा हा ते तुंदे ना भुने पर भी तुंदा जेड़ा भविष्य हा से सुरक्षित जे आसे रहंदा हा। तुंदा भविष्य यानी कि जेड़े तुंदे बच्चे हिन तुंदे जेड़ा टब्बर हा से सुरक्षा मां रहंदे हिन ते तुसे भी जे आसे चिंता मुक्त जे आसे महसूस करदे हा। ता आसे यही बलदे हा जे योजना कने जुड़ा ते कुछ अगर जानकारी असें उम्मीद करते हाँ जे तुसे भी जे असें लोका तकर जे असें पुजाने रा काम करदे भूलेगा जो कि तुसे जे कार्यक्रम जो सुनते हाँ ता तुस वो भी जे असें इंदी सहायता जे असें करना चाहते हाँ लोका तकर इन्या जानकारी जो पुजाने रहता है ता यही टाइम हाँ अपनी पॉलिसी चुनने रहता है ते इन्या स्कीम रा भरपूर फायदा लेने रहता है। भारत सरकार जे ऐसे किस्मा किस्मा री स्कीम हर साल जे ऐसे शुरू कर दे हाँ ताकि सभी भारतवासी जो जे ऐसे किसी भी चीज़ा री कोई भी तंगी जे ऐसे ना भुआ अपने आर्थिक स्थिति थों ऊपर से इची सकन इटे रहता है जे ऐसे भारत सरकार ता कोशिश लगूरी ही करना हा। पर असे भी ये उम्मीद करते हाँ तुसी ते जे जड़े भी लोग इस कार्यक्रम जो सुनते हैं से जे असे इस अभियान जो अपना अक अभियान मन्ने करे अपने नेड़े तेड़े रे लोका मां जे असे जागरूकता फैलान ते तिया जो दसन जे त्यारे फायदे रहता है भारत सरकार है कुन स्कीम जे असे चला रहे हा। कजू कि भारत सरकार जे असे हर साल है जे असे नई नई स्कीम जे असे चलांदे रहते हाँ ता कुन स्कीम कस रकम जे असे ईणे हाँ ये सिर्फ ते सिर्फ जे असे जानकारी अक पढ़ूरा लिखूरा जड़ा इंसान हाँ सही जे असे दसी सकदा हाँ। असे सब जानते हैं जे इंदे जड़े दूर दराज जे इलाके में लोग रहते हैं तियां तकर ना टीवी बुंदा हाँ ना तियां मले अखबार पुछदे हाँ कजो कि रोड़ा रे जड़े हालत बुंदे असे इतनी खराब बुंदे आ जे त्यों ताएं जे असे कसी रे घर में टीवी ना बुंदा ते जियां से गल करे या अखबार ना बुंदे तियां मले सिर्फ आकी साधन रहेगा अंदा हा रेडियो ता जे तुंदे तिठी रेडियो चलदा हा ता रेडियो रे माध्यम कने तुसे कोई जानकारी सुनी लैंदे आ तुसु तकर कोई जानकारी पुजी गांदे आ ता तुसु कोशिश करना चाहिंदे आ जे जेड़े तुंदे आसे पासे रे लोग हिन कि तुंदे कोई घरा मन जी कोई अपना टबरा राही कोई सदस्य ए दिया हा ता तेसी जो इस जानकारी जो जरूर साझा करा कजो कि अक गल तुसे दुए माणु जो दस लै ता दुए थाउं जे असे त्रिये तकर ते त्रिये थाउं फिर से चौथे तकर जे असे गांदे हा। पर जे असे इयां जानकारी जो सिर्फ ते सिर्फ अपने मना मां रखी लै लै ता ए सिर्फ इंदे मना मां ही दबी जे से रही गाणी हिन ते जेड़ा असे चांदे हिन जे इंदा भारत रा विकास हुआ इंदे ग्रां रा विकास हुआ इंदे हर एक जड़ा माणु आ हर एक लोग जड़ा गरीबी थाउं असें जगह जगह हेरदे हैं जे बिठूरे हुंदे हैं कोई पैसे मंगने रहता है बिठूरे हुंदे हैं कोई जे असे दहाड़ी पुट्ठी लगूरे हुंदे हैं अपने बच्चे जे हैं से पिट्ठी पुट्ठी जे हुंदे हैं से मणिए चोरे हुंदे हैं ते दहाड़ी हुंदी हैं बेचारी लगूरी करना ता असू तिस टाइम में जे असे कितना ज़्यादा तियां पुट्ठी जे असे तरस सींदा हा। पर तिस तरस रा कोई फायदा नहीं है जे तुसे तियां जो हेरी करी तियां जो त्यारे हाका रहता है ते त्यारे जड़े भी स्कीम हैं त्यारे तैयार जागरूक ना कर ले कजू कि तिस टाइम में तिस जगह था गिच चली करे गाना ये सोची करे जे असे के करे सकते हा ता तुसु मले अक बड़ा ही अस जागरूकता रा माध्यम आ एडा मोटा जे तुसे त्यारी सहायता करे सकते हा तियां जो दस सकते हा जे भारत सरकार है तुंदे रहता है मनरेगा स्कीम की कोई होर स्कीम स्वास्थ्य रे स्कीम हा ता इदी स्कीम जे हिन से चलौरी हिन ता तुसे इयां सीते जोड़ी सकते हा इत सीते तुंदे आर्थिक आय माता जे असे बढ़ोतरी भूणी ही हा। पर तुस वो जे असे तुंदे घर जियां इंदे अस वो घर दिता गांदा हा इंदा पक्का मकान जे असे अस वो बनाने री स्कीम बना रहे हा ता ए भी जे असे तुसु दे रहे हा तुसु इं करे सड़का मा जे असे बेचने री जरूरत नहीं है तुस वो अक अपना पक्का घर इंदिरा आवास योजना जितियो असे पहले बंदे थिए ते अब आवास योजना रे नाँ कने जान दे हिन ता इस स्कीम रे माध्यम कने इत कने जुड़े करे जे असे तुसे अपना अपूरा घर जे असे बनाए सकते हा इतमा शौचालय हा पानी हा हर किस्म की सहूलत जे असे तुसु दित्ते गाने हा। बस तूनी आग गल्ला जे असे इयां जो समझाए दे लै ता असे अपना जे असे काम जे असे करी दिंदे हा ते फिरी त्यारी पूरी तियां लोकां री अपनी मर्जी हा जैसे तियां स्कीम असी ते जुड़ना चाहते हैं कि ना जुड़ना चाहते हैं कजो कि अवे इंदे भारत में बड़े घट लोग इधर रह गए हैं जियां मले जे असे जागरूकता जे असे घट हा

जो कि ज़्यादातर लोग का जो जो यहाँ से हर एक चीज़ रे बारे में पता, चाहे तू ये फैक्ट्री री गल कर दे हा, चाहे तू ये नौकरी री गल कर दे हा, हर एक चीज़ री जानकारी तियाँ मले हा। पर जे असें स्हूलता री जखने गल कर दे हा, जखने असें इं स्कीमा री गल कर दे हा, तो देखने जखने असें तियाँ जो दस दिया इं स्कीमा रे बारे में, तो त्यारा बस अक्की ही गल हुंदे जे असकू तो पता ही नहीं है, असकू तो कसी दसूरा ही नहीं है। तो असकू ये कोशिश करने हैं जे असू किठी करे जे असे इस अभियान जो इस जागरूकता रहे अभियान जो अगू ले करे गाना हा, ते हर एक माणू जो जड़ा भी तुसू माणू सुझदा हा, तुसू लगदा हा जे इं जो इस स्कीमा री जरूरत हा, तो तुसू जरूर जे असे तियाँ जो जानकारी जे असे देने री कोशिश करने हा। ये इंदा फर्ज भी हा, ते अक भारत रे नागरिक होने रा जे असे कर्तव्य भी हा। ता जी चलदे चलदे सुनदे हा कार्यक्रम रा आखिरी लोकगीत कमर सिंह जी री भाकमा।

0: चंबियाली कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला है। हिमाचली बोलियों के अंतर्गत लीजिए सुनिए मंडियाली कार्यक्रम।

मंडियाली कार्यक्रम सुनने वाले जो जया शर्मा जी नमस्कार ता देखा हम भी प्रोग्राम लेके हाजिर हैगी आज अपने सुनने वाले जो असा वधिया वधिया लोक गीत सुनाने और इदी के सौगी जिहड़ी देखा असा अपने सुनने वाले कने गलबात भी करनी और असरे देसा प्रदेसा मंज क्या क्या होया करा नवी ताजी खबर असा अपने सुनने वाले जो सुनानी तो सभी तो पहले हम सोचा कि आ सर देसा प्रदेसा मंज क्या क्या होया करा अपने सुनने वाले जो नवी ताजी खबर सुनाई लाए। राजधानी शिमले समेत प्रदेश सारी ज़्यादातर भागा मंज आज मौसम साफ रहा जिदे लोग बड़ी राहतारी सांस लीती और देखा हालांकि मौसम विभागे आज कुछ स्थानों पर बरखा संभावना भी जताई रही। अगली खबरी राज्यपाल कविंदर गुप्ता तीने बोलिया कि जड़े आ सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रे विकसित भारत 2047 रा सरकारी कार्यक्रम नहीं आ बल्कि 140 करोड़ भारतीयों रा सामूहिक जड़ा ये राष्ट्रीय मिशन आ। अगली खबरी प्रदेश सारे शिमला सोलन कांगड़ा होर सिरमौर जिले मंजा नए बने जिला परिषद सदस्यों जो आज पद होर गोपनीयता री शपथ दिलाई। शिमले मंजा आयोजित बचत भवन मंजा अनुपम कश्यप जो उपायुक्त तिने नए बने जड़े सदस्य तिना जो शपथ दिलाई। ता देखा ये तो होगी नवी ताजी खबर आ सारे देसा प्रदेसा मंज क्या क्या होया करा ये भी हम सोचें भी अपने सुनने वाले जो एक बढ़िया जी लोक गीत सुनाई लाएं तो सुना तुसे ये लोक गीत

आऊँ भी चली सकाँ है, इहदे ते भी बड़ी शांति मिला है। होर असे जिहड़ा देखा भी ब्यागा जिवे सैर कराएँ ता तिहदे ते देखा जिहड़े कई मोटे आदमी होए तिन्हारा वजन घटा, होर लंबे समय तक वजन नहीं बढ़ता। इहड़ा नहीं है कि भी अज तुसे सैर करदे चली गए होर फिर हफ्ते भर मजे कने ब्यागा सही रहे, तो तिहदे ते भी आस्था जो भी कोई फायदा नहीं मिलना। अगर असे आदत पांगे कि भी जीवन मंज आसा ब्यागा रोज़ उठना, हर रोज़ सैर करनी, तो तिहदे ते आसा जो बहुत सारे फायदे होने। इहदे ते आसा रहे हिरदे स्वास्थ्य सुधार हुआ, आसर जिहड़ी फेफड़े री क्षमता है से भी बढ़ाई। अगर आसा रे जोड़ा अंदर मांसपेशियां रे किथी भी आसा जो कोई भी दर्द लग रही ता तिहदे जो भी आसा जो आराम मिलना। इधर कट्ठे अपने ब्यागा उठो किसी बाग बगीचे मंजा अपने जड़े आसरे गाँव लोग अपने मजे कने तिथे जाओ सैर करो, और इदी कने सौगी सौगी योगा अभ्यास करो। इदी ते आसा जो बड़ा फायदा मिलना। देखा योग असे बहुत प्रकार योगे सो असे किसी जानकार ते ही सलाह लेकर नहीं करी सका है। एड़ा नहीं है कि तुसे खाना खाद्या फिर तिहदे ते बाद तुसे योग करदे लगे तो ये भी गलत गली। और जब भी असे घूमते जाएँ तो इस मौके भी असो देखना चाहिए भी जगह सुरक्षित हो, जिथे भी आसे पासे जिथे चहल पहल हो लोग चलते लग रहे तिस भी सही जगह दिखनी तो सभी जी तिथि ही घूमते जाना, ताकि तुसा जो भी कोई एड़ा भी नहीं भी कितने कई बार एकांत जगह गए तो तिथि डर भी लगा। इधर कट्ठे आसा जो ये भी ध्यान रखना। जे भी अस ब्यागा चलाएं तो जो बच्चे सो देखा दौड़ लगाई सकें तिथि तो बच्चों जो फायदे। आसरी जिहड़ी जनानियां ही सो देखा जिहड़े भी लंबे लंबे कदम अंदर चली सकें तो इं चारे लंबी लंबी सांस लेनी, इं चारे अस जो ब्यागारी जिहड़ी ताजी हवा है तिहदी रा फायदा उठाना चाहिए। होर लोग देखा कई बार क्या करें कि भी राती सो मोबाइल अंदर बैठे रहे, राती 11-11, 12-12 बजे तक तिना मोबाइल अंदर लगी रहना, फिर ब्यागा तिना जो जागना कियां चारे आनी। इधर कट्ठे अस जो सांझा जल्दी खाना खाई कने सही जाना चाहिए, ताकि असी ब्यागा जल्दी उठ जाओ और अपने सैर आर कट्ठे निकली जाओ। जे भी तुसे सैर करने की आदत पाई देंगे तो तुसारी सारी बीमारियां दूर भागी जानी। होर इहदे तुसे सारा दिन दफ्तरा बाजारा जिथे भी तुसे जांगे तुसे तंदुरुस्त दिखने होर स्वस्थ दिखने, और इधर कट्ठे तुसा जो अस्पताल जाने की भी कोई जरूरत नहीं पौनी। तो देखा ये तो होगी गलबात, अस जो ब्यागा री सैर करनी बड़ी जरूरी। तो यह भी हम सोचें अपने सुनने वाले जो एक होर बढ़िया जे गीत सुनाए लाएँ तो सोना तुसे ये गीत।

अभी आप सुन रहे थे मंडियाली कार्यक्रम आकाशवाणी 103.7 MHz पर एफएम शिमला है। हिमाचली बोलियों के अंतर्गत सुनिए पंगवाली कार्यक्रम।

आकाशवाणी एफएम शिमले कार्यक्रम सुनने वाले सभी जनों करताप सिंह ठाकुर पंगवा तरफा बेल दी नमस्ते। सुनने वाले तुम सभी के स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम अंतरक पर। फिर फर्क ये है कि आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी एफएम चैनल पुठाई और प्राइमरी चैनल पुठ जो है दिल्ली के और प्रोग्राम चलो रहा, और साथ साथ यही कार्यक्रम तुम जना प्रोग्राम उठा पूरी आदत डीटीएस तो मोबाइल ऐप भी सुनते। कार्यक्रम दौरान अस तो जो डकबोक लाते जे भी देर विषय बुते आ सके से लाते अस तो जो देशे प्रदेशे खास खास खबर अस तो सुनाते और अबल अबल घी तैयारी के आवाज़ अंतर अस छांटी के घी त्या तोरे बुते से भी तुम सुनाते हैं। कार्यक्रम जिन्हें सुनने वाले पता है कि हफ्ते अंतर चार रोज सोमवार बजते शंट से बेल दिया 5:00 BM शुरू करते 5:00 BM और 5:55 तक कार्यक्रम चलता पंगाड़ी बोलिया। आज के प्रोग्राम अंतर अस तो जो डकबोक लानी है पशु पालन तथा ऊन वाला जो काम है तनी बारे साथ साथ पीएम किसान सम्मान निधि स्कीमी बारे भी थोड़ी गल आनी अस्ती। शुरुआत अंतर रख भजन सुनाते मते दिन भोरे भजन नहीं तुम्हें शुरुआत करते इस बेदे जनों शिव भजन क्या फिर लाते तुम्हें अगर डकबोक तो सुनते इस भजन।

जी शून्य वाले नियमत हुसैन आवाज़ अंतर बेदे जुनशी भजन तुआ शुणु ऐवे तुआ जो डक बोख लाते पैशु पाने तथा यूनी के कम एनी बारे पैशु पाने हैं देशे अंतर खासकर ग्रां अंतर खास कम आई खेती बाड़े जो साते साते पैशु पाने चाहे किसानी गल कर या ग्राएं होरे जो टब्बर ऐसे अलग आमदन रुजगार तथा खीणो खुराक समेत कई सहूलतें दी जैसा से यह कम कते खास तौर पर जे पहाड़ी तथा जनजाति हैं पैंगे जने कठिन इलाके अंतर भेड़ बकरी चूरी चूर तथा दचूर समेत होरी भी जे नस्ले अस्ती रीं बीं गैरी पाने जैसा से रोजी रोटी उपान दी एक खास साधन पुराने टाइम पुठा चलो थिया दूध घ्यू ऊन मांस या फिर रोजगार जो साते साते जो होरी मते जे फायदे ना जो जुड़ो रस्ते चाहे से खेती बाड़े दी से जुड़ो रे चाहे मल वगैरह वास्ता से भी पशु पाने जिस तरह से फायदा है उन्हीं के कम हैं देश भारत इन्हें तो उन्हीं दिखे जिस तरह से खास करी भेड़ बकरी पान पुठ जैसे निर्भर रस्ता

हिमालयी किनारे जे स्टेट आस्ते खास कर जना है हिमाचल आए, जम्मू कश्मीर आए, लद्दाख, उत्तराखंड, राजस्थान कुछ इलाके अंतर भी जैसे उन्हीं के खासा काम जस्ता से हो भी चलता। कि बनते उन्हीं के चिबे के पहले तो उन्हीं कपड़े शॉल, टोपी, मफलर, जैकेट, कंबल, कालीन तथा हुरी भी जस्ता से मते किस्में जस्ता से चीज़ें जे हाथ ले उन्हीं के भी बनती। दिखते भी कुछ ऐसा मंत्र ही थी जने कि उन्हीं के जो बाजार रास्ता से तसंतर उतार चढ़ाव बड़ा चलता, कदी तने कीमतें खारी तो कड़ी कदी बड़ी घट भी भई गई थी। और जे ऐजे जुड़ोरे जे क्या भेड़ बकरी पशु हस्ते तने जे हस्ते से बीमारी के खतरा बार बार अलग अलग किस्में बीमारी से भी एक दिक्कत थी। नौजवान जस्ते से असकम के थोड़े दूर रस्ते और साथ ही साथ जे सस्ते और जे सिंथेटिक कपड़े आज बाजार अंतर जे आराम जे हथिंग घेते से भी अख कारण हस्ता से भी एक दिक्कत समझ सकते कि भाई उन्हीं के जे बनोरे झड़े हस्ते तस अंतर जे हस्ते से कदी इजाफा बूता कदी जे घटो मतलब कमी भी थी। और की संभावनाएँ हस्ती इस बारे जैविक तथा कुदरती जे बनोरी चीज़ें तनी मांग जिस तरह से एक्नार बढ़ना भी लगो रही। लोकल जे ब्रांडिंग लोकल फॉर वोकल करके आज नारा भी चलता तथा ई कॉमर्स जे बारे मौके आस्ते तसे भी थोड़ी संभावना बढ़ती। उन जो जोड़ो रे काम काज आस्ते तसपुर सरकार भी बढ़ावा देन लगो रही। जलहना तथा जे जलहना जो जोड़ो रे सेहत समूह आए या फिर सरकारी समिति तने भूमिका बढ़ने कारण भी जस्ते थोड़ा यानी जे कम जस्ता से बढ़ने आसार कहते। पशु पालने तथा उन्हीं के कम सिर्फ अख आमदन जरिया नहीं बल्कि हैं संस्कृति, हैं परंपरा, हैं जरूरतें तस् भी जुड़ो रस्ता अनुभूति कि मजबूत अगर पशु पालन आ रहा है तो समृद्ध जस्ता से इलाका स्ता और मजबूत जस्ता से समृद्ध किसान आए। ऐ कुछ गल है तुह जैसा लाई इसके पहले कि होरी गल नहीं तुह जो अख बेदे जिन्हें होर लोग की छुनाते फिर लाते तुह जो डकबोक।

जी सुनने वाले शांति बिष्ट आवाज अंतर बेदे जन लोक गीत तो सुनो अगर बल ते डक बोक लाते थोड़ जनी पीएम किसान सम्मान निधि स्कीमी बारे सुनने वाले स्कीम भारत सरकार या खैनी स्कीम है जैसे तहत जस्ते से पात्र किसान टबर 6000 रुपये सालाना माली सहायता सीधे जस्ते से तने बैंक खाते अंतर जसबते DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीमी माध्यम जस्ते से दी थी ए राशि दुई दुई हजारे जे चार किश्तियाँ अंतर जस्ते से दी थी। खासियत की इस स्कीमी जन असा तुम जो गल आई कि भाई सालाना 6000 रुपये अति ते 2000 चार किश्ते बनती राशि जस्ते से सीधे बैंक खाते अंतर इती ए पूरी तरह जस्ते से सेंटर सरकार तरफ स्कीम आई देशे जे जिमी वाले किसान टब्बर है तने वास्ते स्कीम अस्ती कर नहीं सकते जैसे नौ खेती बाड़ी वाली जिमी भें आधार कार्ड तथा बैंक खाता भें EKYC पूरे रोड लोड़ी EKYC जस्त से इस वास्ते भी जरूरी अस्ती कि भाई अगर है पूरे रोड़ी बोल तो बैंक खाते जस्त से आधार बाड़ा मिलान भुने कारण जस्त से किश्त हती थी न तसे किश्त जैसे रुकी गए थे कर नहीं सकते माफ़ करे कर नहीं सकते जे टैक्स देने वाले संस्था वाली कोई जिमी तना नहती थी है कुछ अक सरकारी नौकरी वाले जे तना भी है स्कीम अंतर जस्त से फायदा नहती था दरख्वास्त तथा जांच पड़ताल करने वास्ते आधिकारिक जे पोर्टल है तत्पुट जस्त से बते जानकारी नहीं सकते और दरख्वास्त कर सकते और ऐसे अलावा जस्ते से तड़ी नौ लिख सकते फायदे बारे जस्ते हो जानकारी नहीं सकते EKYC जस्ते से कर सकते पूरी सूची जस्ते से लिस्ट हेरी सकते कि भाई कैसे स्कीम है तीन लगो रही और कस नहीं है तीन लगो रही कैसे कैसे नवे थन रस्ते ऐसा स्कीमी जरिए जस्ते से करोड़ों किसान टबर लगातार आमदन जस्ते से हथीण लगो रही पिछले कुछ साल पुथा था इस किश्ती अंतर जस्ते से करीब करीब बते हर किश्त जस्ते से

100 करोड़ के भी ज़्यादा किसान टबर जस्ता से ऐसे फ़ायदा भून लगोरा। किसान वास्ते सुझाव आए कि अगर किस्त नहीं हतीना लगोरी तो तुम्हें सभ्या क्या पहले जस्ता से हेनू कि हैं KYC जस्ता से आधार बैंक लिंक तथा जिमी ज रिकॉर्ड रस्ता तैसे स्थिति जरूर है नहीं ऐसे मतलब कि ज़्यादातर जे भुगतान रुकने बते यही कारण है। इस वास्ते जे रस्ते से अपने कागज रस्ते से जे भी अद्दी लटे खास कर जे आधार कार्ड रस्ता है ना बैंक खाता रस्ता से सुसर जे तसे मिलान अगर भोरा रस्ता नहीं भोरता से आज कने टाइम अंतर जस्ते से अगर सरकारी दफ्तर के कुड़ी ये काम दूर है दफ्तर था तो नीड़े आज कने टाइम अंतर जो लोक मित्र केंद्र है तड़ी गई के भी है काम जस्ते से आराम जे भज सकता और टाइम पुट करना चाहिए ताकि अगर सरकार ऐसा कोई है ना फायदा देन लग रही ऐसा दी इमदाद कर लग रही ऐसा दी मदद कर लग रही कि भाई ऐसा थोड़े बहुत अपने जे खेती बाड़ी वाले काम आस्ते ती कोई और चीज़ लोटी बोलता से अस तसे आर बटे ते कुछ जानकारी थी तुहान जो PM किसान सम्मान निधि स्कीमी बारे अगर बढ़ते एक दो खबरें भी तुम्हें सुनाई छटे खास खास खबरें। सुबह के पहली खबर है राज्यपाल कविंदर गुप्ते साफ सुथरे वातावरण तथा नशा मुक्त हिमाचल बनाने वास्ते जे कठिन के कोशिश कनपुर जोर दतोरा जन कि तुम्हें सुबह पता है कि ही पर्यावरण दिवस मनाई और अलग अलग जगह जस्ते से जल से भी भें और उम्मीद नहीं करते कि भाई अजय जल से जाए कि दिन लेड़ी यहाँ से हर टाइम जस्ता से पर्यावरण वातावरण जस्ता से ध्यान थाना है। दो की खबर है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुख ने बोलो कि चिट्टा तथा नशीले पदार्थ के कारोबार अंतर जे भी शामिल मैं आए से नहीं बख्शने हिमाचल सरकार अंतर मतलब कि अस पुट जस्ते से आबे इने वाले टाइम अंतर होर कड़े कदम न उठाने वास्ते और जे भी अन्य काम अंतर जे जुड़ो रस्ते तने आबे खैर नहीं तने कोशिश करनी चाहिए कि कोई आपू होरू कम पकड़े किस मैणु के भी जस्ते से गबरू के बर्बादी और आप भी बदनाम होना तो इस कम जस्ता सा दूरी ऐसा करनी चाहिए और अगर का अन्य आस पास कम कते के थे तो जरूर तेने जानकारियाँ सब पुलिस वाले तक पुजानी चाहिए या फिर कम से कम तेना क्या दूर रहनी चाहिए कि तेने चक्कर अस ना फंसे। ही धर्मशाले आस पास ही चाह भुंजले झटके भी लगे और अखोरियाँ से की खबर हस्ती कि भाई हिमाचले जे जिला परिषद सदस्य बनोरे नवे तथा जे पंचायत समिति सदस्य बनोरे तेना जस्त से आज सोदियो है जे जिला परिषद वाली के सोदियो आने वाला जे काम है से DC स्तर पुटभा और जे पंचायत समिति जे मेम्बर बनोरे नवे सदस्य बनोरे तने जे सोदियो आने वाला जे काम अस्ता से ब्लॉक स्तर पुटभा जड़ी SDM तहसीलदार वगैरह जे भी उपलब्ध हैं तने काम करावा SDM अस्तिक खास तौर से आधिकारिक तौर पर सोदियो आने वाले अधिकारी तय कुछ खास खास खबरें थी नु छोटी अख लोग ही सुनान के पहले जरूर सुनने वाले हैं ये बोलना चाहते कि हैं कार्यक्रम जस्त से पंगवाड़ी बोली अंतर ईता हफ्ते अंतर चार रोज अस 5:20 कर 5:50 तक पंगवाड़ी बोली अस डकबोक भी लाते अवलबल गीते भी सुनाते और देशी प्रदेशी खास खास खबर भी सुनाते तो तुम जरूर जुड़े रहे कुछ कुछ टाइम अंतर जैसे बच बच आवे सोशल मीडिया माध्यम जो भी जस्त से जुड़ लगो रहे तुम हेते तो तु जे जानकारी साझा करते तो बड़ो खरु लगतु अखनु छोटी बेदे जन लोक गीत तैयार थे सुनाते तुम श्लोक गीत।

जी सुनने वाले हो राकेश कुमार चस्क वाले आवाज़ अंतर अबे दर्जन लोग गीत चुना सुनू चस्के ठारी ना गल होती और गीत तो चाओ जे शनोर बोल। सुनने वाले हो न छोटियाँ सी ये गल आते कि भाई ही ऐसा बड़े जोर शोर जे हालांकियाँ पूरा जे पर्यावरण है वातावरण है चौरू किनार जे साफ सुथरा थैने वास्ते बूटे भी लवे साफ सफाई भी की ए काम जिस तरह से हेना उरालना दी भी ठीक है जरूरत अस्ती काम करके भी उरालना ही था और इस टाइम अंतर से भी चाहे आम मैन थे चाहे से सरकारी अधिकारी थे चाहे फिर अलग अलग स्तर पुटने थे सुबह जिस तरह से साफ सफाई और वातावरण साफ थे वाले जिस तरह से कम करके उराला उम्मीद करते इने वाले टाइम अंतर सुब जिस तरह से इस इने वाले टाइम अंतर आप जिंदगी अंतर जिस तरह से आख बोते रोजाना आदत बनाते और ताकि अस फिर जिस तरह से बार बार हुरालने काम न जोड़ी करना येरा और अस न सिर्फ अपने जे बते आस पास अपने गह बल्कि जिस तरह जड़ी भी अस कुड़ी जरूरत पड़ी साफ सफाई का मंत्र सगर नस्ते और अपने तरफ तक कोशिश करनी चाहिए हर मैन कि असा जरूरत इन्हें पड़ी कि भाई अस अगर पहले अगर बेरने चीज़ें न करेल तो अलग से जिस तरह सफाई अभियान चलाने जरूरत न पड़ती। खैर मौके

गलतियाँ सभी लाई छड़ी और तुहाँ भी अपना हिसाब जो कम कर छड़ा। तो ऐसे जो साथ आवे घड़ी शारकन लगोरी मुँह करताप सिंह ठाकुर पंगवा पंगवाड़ी कार्यक्रम पूरी दें इजाजत तुहाँ से ब्याह जमेली नमस्ते।

पंगवाली कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह FM शिमला है। कृपया आप हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का शिमला केंद्र। लीजिए पेश है लोकगीत। आवाजें हैं अमरनाथ शर्मा और साथियों की।

लोकगीत अभी आपने सुने। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला। अब प्रादेशिक समाचार प्रसार

0: होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आप डीटीएच सेवा, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय युवा मामले व खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा राष्ट्र की सच्ची और विकसित भारत के सपने को साकार करने वाली प्रेरक शक्ति हैं। नई दिल्ली में आयोजित मेरा भारत युवा सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि देश की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो भारत को विश्व के सबसे युवा देशों में से एक बनाती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार राष्ट्र निर्माण और भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लक्ष्य की दिशा में युवाओं की ऊर्जा और क्षमता को सही दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शिमला के बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को शपथ दिलाई, जिसमें सभी 25 वार्डों के सदस्य शामिल रहे। इधर सोलन में आयोजित समारोह में उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने जिला परिषद सदस्यों को, जबकि उपमंडल अधिकारी डॉक्टर पूनम बंसल ने पंचायत समिति सदस्यों को शपथ दिलाई। उधर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में सभी 17 वार्डों के नव निर्वाचित सदस्यों को उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि सदस्यों से विस्तृत चर्चा के बाद जल्द अगली बैठक निर्धारित की जाएगी, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा।
2: जिला सिरमौर में जिला परिषद के टोटल 17 सदस्य हैं। आज हमने यहाँ पे सदस्य जो जिला परिषद के चयनित होके आए हैं उनकी शपथ समारोह रखा था, और आज सभी 17 जिला परिषद के सदस्य यहाँ आए, सभी ने अपना शपथ ग्रहण किया, और आज उन्होंने ऑफिशियल तौर पे जिला परिषद को एज माननीय सदस्य उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जो हमारा एक्ट कहता है उसमें के है कि हम इसमें सफिशियंट टाइम दें इलेक्टेड मेंबर्स को, तो जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग होगी वो जल्द से जल्द हम करेंगे, और नोटिस जारी करके सभी सदस्य माननीय सदस्य को ये हम अवगत करवा देंगे किस दिन उनको आना है, और ये नेक्स्ट मीटिंग में जल्द करेंगे। उस मीटिंग में हमारे जो जिला परिषद के चेयरपर्सन या वाइस चेयरपर्सन है उसका चुनाव हो।
0: धर्मशाला विकास खंड की पंचायत समिति के नव निर्वाचित सदस्यों को एसडीएम मोहित रतन ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस बीच कुल्लू जिला परिषद के नव निर्वाचित सदस्यों को उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने एक समारोह में शपथ दिलाई। इस दौरान सभी सदस्यों ने कुल्लू जिला के विकास को प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दोहराई। अखिल भारतीय कलाकार संघ के अध्यक्ष व प्रसिद्ध अभिनेता रोहिताश गौड़ और संघ की उपाध्यक्ष रेखा गौड़ ने आज लोकभवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर रोहिताश गौड़ ने राज्यपाल को अखिल भारतीय कलाकार संघ की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि 71वीं वार्षिक अखिल भारतीय नाटक व नृत्य प्रतियोगिता आज से शिमला में शुरू हो रही है। उन्होंने कहा कि 10 जून तक चलने वाले इस सांस्कृतिक आयोजन में देश भर से हजारों कलाकार भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान कुल 27 नाट्य दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे और लगभग 280 नृत्य प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। राज्यपाल ने संघ द्वारा नाटक, नृत्य और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। नई दिल्ली में प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत के प्रधान प्रशांत

0: के लाहौल पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस पंचायत को सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
1: लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत को सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली में प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत स्तर विकास राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आज पंचायत के प्रधान प्रशांत के लाहौल पहुंचने पर अटल टनल के उत्तरी द्वार पर ग्रामीणों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें पारंपरिक कथा पहनाकर सम्मानित किया गया। पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की खुशी में ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर रखते हुए जश्न मनाया। इसके बाद शांशा गांव पहुंचने पर सभी ग्रामीणों ने पुनः लाहौली परंपरा के अनुसार स्वागत किया। शांशा पंचायत की सफलता ने लाहौल स्पीति और हिमाचल प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कांगड़ी कार्यक्रम।

श्रोतियों नमस्कार, राम राम। हाजिर अश्विनी कांगड़ी कार्यक्रम लेकर। रेखा जी, खुशी एक मानसिक स्थिति है जिड़ी बाहर ते नहीं बल्कि अंदरा ते होंदी है। खुशी दे मायने हर माणुए ताई अलग अलग होंदे न, कि कोई इस चो भौतिक सुखां दा तोपदा है तो कोई रिश्तियां च। खुशी दा मतलब सिर्फ हसना नहीं है, बल्कि एक ऐसी अवस्था जितू मन कने दिमाग दोनों शांत कने संतुष्ट रहते हैं। खुशी पाने ताई सारे दे पहले असां चू अपने अंदर झांकना चाहिए, कने जानना चाहिए कि असां ताई असली खुशी क्या है। खुशी का असली मतलब तालू होंदा है जालू इसो असां बाहर दी नज़रां ते नहीं बल्कि अपने अंदर छुपते हैं। इस ताई जरूरी है कि असां अपने मन की स्थिति जो समझन कने उस जो संतुलित रखन बराबर रखन।

शोभा गौतम कने साथी आवाज़ सुने तुसें लोक गीत गल करनी शक्तिपीठां दी पावन स्थली हिमाचल प्रदेश। दिखा जी हिमाचल प्रदेश जित्थे अपने कुदरती नज़ारे कने छैल छवेली उची उची पहाड़ियां ताई पूरे संसार च मशहूर है, उत्थों थां थां पर विराजमान दने देवतियां दे कारण ही देव भूमि दे नाए ते यह प्रदेश जाने जांदा है। एक पुरानी कथा के मुताबक देवी सती के पिता दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिस विच उन्हें शिव कने देवी सती जो नहीं सद्या, सह शिव जी जो अपने बराबर नहीं समझते थे। सती यज्ञ च बगैर सदे ही चली गई। उतो सती जो शिव के खिलाफ सुनने जो मिलिया था उन्हें उसका अपमान समझिया। इस गल सती जो खरी नहीं लगी कने इस गल्ला जो सहन नहीं करी सकी कने देवी सती ने उतू हवन कुंडे च छाल दे दिती। जलो भगवान शिव जी जो इस गल्ला दा पता चलिया तो सह उतू आए कने हवन कुंडे से देवी सती दा मृतशीर कढ़िया, तांडव करना लगे जिस कारण पूरे ब्रह्मांड च हाहाकार मची गया। पूरे ब्रह्मांड जो इस संकट से बचाने तई भगवान विष्णु ने देवी सती दे मृत शीर जो जड़ा शिव भोले ने अपने कंधे पर चुकिया था उससे सुदर्शन चक्र ने कटी करी कुंजा भांगा च जो है बंडी दिता, कुंजा हिस्से च बंडी दिता। ये कुंजा हिस्से जित जितू पै उतू शक्तिपीठ बनी गया। असां दे हिमाचल च भी कुंजा शक्तिपीठां ते कुछ शक्तिपीठ हिमाचल च भी हैं। इन्हां च सारे से पहले गल करिए सह श्री ज्वाला जी मुखी। मन्या जाता है कि इस थां पर माता सती दी जी पई थी कने शक्ति पीठ

अगली पीठ है श्री नाना देवी शक्तिपीठ, जिला जिला बिलासपुर है। बिलासपुर से इसकी दूरी 70 किलोमीटर, श्री आनंदपुर साहिब से इसकी दूरी 22 किलोमीटर है। कन्हे मंदिर 900 मीटर ऊंची पहाड़ियां पर बसे है। देखा जी, ऐसा माना जाता है कि ये थू माता सती दिया आखी पही थी कने ताई था इसा थान जो नैना देवी के नाएं ते जानिया जाता है। इस मंदिर जो 8वीं शताब्दी च राजा वीर सिंह ने बनाया था। कने अगली शक्तिपीठ है माँ चिंतपूर्णी, जिड़ा कि जिला ऊना च है। ये शक्तिपीठ जिला ऊना कने कांगड़ा जिले दी बाउंड्री पर है। कने जिला ऊना से इसकी दूरी 52 किलोमीटर है। इस माता जो बगैर सिरे यानी कि छिन्न मस्तिका के रूप च जाने जाता है। एक कथा के मुताबिक देवी ने मलदास नाए दे ब्राह्मण जो सुपने च दर्शन देकरी दस्या कि फिर बोलिया कि जेड़ा भक्त श्रद्धा कने इत्थू माता दी पूजा आराधना करगा उसकी सारी चिंता कने तनाव खत्म हो जाएगा। इस ताई माता जो चिंता दूर करने वाली माता भी बोलिया जाता है। नाते च इन सारिया शक्तिपीठां च भक्ति भाव ने पूजा पाठ हुंदा है। मंदिर सजे हुंदे हन कने माता ते भक्त दूरा दूरा ते आई करी दर्शन करते हैं, मन्नत मंगते हैं।

कार्यक्रम जो अग्गें बधांदे होए गल करनी असां प्रधानमंत्री जन धन योजना दी। दिखा जी, प्रधानमंत्री जन धन योजना एक राष्ट्रीय मिशन है जिहड़ा देश दे सारे लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने ताईं जे चलाया जा करदा है। इस स्कीम के तहत बैंकों दीआं सेवां दा मुनाफा लैने ताईं हर टबरे दे जे घटे दे घट एक बैंक च खाता होना चाहीदा। जिहड़ा भी माणू जन धन खाता खुलवांदा है उसे रूपे डेबिट कार्ड मिलता है, कन उस बाद उस 2 लाख रुपए का चाणक बीमा दिता जाता है। इस स्कीम आवेदन करने समय आवेदन पत्र सोगी कोई एक दस्तावेज लगाना पौंदा, उन्हां च पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की कापी, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, जॉब कार्ड, आधार कार्ड की कापी जे इन्हां च एक अद लगाना पौंदा है। जिहड़ा भी पैसा इस स्कीम के तहत जमा हुंदा है उस पर बैंक ते ब्याज मिलदा है। कने जल आवेदक खाता खुलांदा तां उस समय पैसे जमा कराने की जरूरत नहीं है, बगैर पैसे से भी खाता खिलाई सकते हैं। खाता सही खिलाई सकता जो भारत का नागरिक हो। ये स्कीम जीवन बीमा भी दिंदी है, कने जीवन बीमा की राशि जी है 30,000 रुपये होंगी। इस खाते के जरिए सौखे तरीके ने पैसा एक ही थान से दूजे थान पर बदली सकते हैं। कने 6 महीने तक इस स्कीम के तहत खोले खातों जो चलाने के बाद ओवरड्राफ्ट की सहूलियत मिलगी। इस स्कीम के तहत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा जो है दिए होगा। ये थी जानकारी प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे लगाई लेंगे खबर। कांगड़ा कने चंबा समेत प्रदेश के कई हिस्सों च बीती रात 10 बजे के बाद हिलने के 3 झटके महसूस किए गए। कने रिक्टर पैमाने च हिलने की तीव्रता 5.20 मानी जो है मापी गई। इसका केंद्र 32.289 डिग्री उत्तरी अक्षांश, कने 7.434 डिग्री पूर्वी देशांतर पर मात्र 5 किलोमीटर की घट गहराई पर स्थित था। लाहौल स्पीति जिला के काजज च अज से विकसित भारत वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो गया। कने इस विच देश के अलग अलग राज्यों के तकरीबन 50 नौजवान हिस्सा लिया करते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 1 जून से 30 जून तक पूरे प्रदेश देश जो है खेती बचाओ अभियान चलाया जा करता है। इस अभियान के तहत कृषि विज्ञानक, कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ, केंद्र कने राज्य सरकार के अधिकारी, जन प्रतिनिधि कने प्रगतिशील किसान ग्रां ग्रां जाकर जिमीदारा जो संतुलित खाद प्रयोग, नकली पेस्टिसाइड की पछाण कने विज्ञानक खेती की जानकारी देंगे। उन्होंने सारे जिमीदारा से आग्रह किया कि इस अभियान ने जुड़न, कने हौले हौले जो है प्राकृतिक खेती की तरफ जान। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने बोलिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई च विकसित भारत 2047 का नज़रिया केवल सरकारी कार्यक्रम की तरक जो है बल्कि 140 करोड़ भारतीय का समूह राष्ट्रीय मिशन है। सब पंचानंद शोध संस्थान अध्ययन केंद्र का भारत 2047 विकसित भारत का संकल्प विषय पर आयोजित व्याख्यान जो संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बोले कि युवा केवल सरकारी नौकरी की आकांक्षा न रखे बल्कि रोजगार पैदा

करने आला बनना। प्रदेश शिमला सोलन कांगड़ा कनेसर मोरजिलिया चिनोई चुने जिला परिषद सदस्य ने अज पद कने गोपनीयता की सोच चुकी। राजधानी शिमला समेत मते सारे हिस्सों अज मौसम साफ रहा कने मौसम महकमे ने अज कुछ हिस्सों बरखा कने सनाट पौने अलर्ट भी जारी किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला दे नेड़े पुआबू ग्रां च वन महकमे द्वारा तकरीबन 5 करोड़ रुपए की लागत से विकसित कमियाना हिल टॉप नेचर ट्रेल के पहले चरण का लोकार्पण किया। कहते तकरीबन 8 हेक्टेयर इलाके फैलियो इस स्कीम 2.5 किलोमीटर लंबा कुदरती पथ विकसित किया गया है, जिसका मकसद पर्यावरण चतनगी कुदरत प्रतिरुचि जैव विविधता जो बचाने कने पर्यटन जो बढ़ावा देना है। ये थी खबरें।

महास्वी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं के मीरा वर्मारा नमस्कार। उम्मीद करूँ हमारे श्रोता ठीक ठाक हो ले। और जी देखो हिमाचली कार्यक्रम वाला आनंद लेने लग रहे होले, सुनने लग रहे होले। तो आज कार्यक्रम अभी मेरे तो सही जो बातचीत करनी हमारे हिमाचल प्रदेश और शक्तिपीठ और बारे दी। और देखो जी दूजी बातचीत करनी हमारे सुकन्या समृद्धि योजना और खबरसार और लोकगीत तो जी ओने ही ओने। तो सभी तो पहले बात करें लगे हमारे हिमाचल प्रदेश और शक्तिपीठ और बारे दें। हमारे भारतवर्ष दे 51 शक्तिपीठ असो जिथे बीचे दो 5 शक्तिपीठ हमारे हिमाचल प्रदेश दे असो। राजा दक्ष है एक बार बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया और तब तीन दे सभी देवी देवताओं के न्योंदा दीता और भगवान शिव जी के इस यज्ञ का न्योंदा नहीं दीता गया। तब माता पार्वती है अपने पिताजी सही रोश होई रो यज्ञ कुंडों दे अपने प्राण त्यागी दीते। तेथे बाद शिव जी क्रोधित होई रो माता पार्वती री देह के लई रो सारी सृष्टि दे घूमने लगे। शिव जी रे गुस्से के शांत करने री खातिर तब विष्णु जी माता पार्वती रे शरीरों के अपने चक्रों सही टुकड़े टुकड़े करी दीते और माता पार्वती रे शरीरों रे टुकड़े जीती जीती गिरे। तब इसे स्थान जो सो शक्तिपीठ कहलाए। मारे हिमाचल प्रदेश और इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वाला जी चिंतपूर्णी चामुंडा देवी नैना देवी और ब्रजेश्वरी देवी असो। बात कर लेनी मारे ज्वालामुखी देवी कांगड़ा रे बारे दी। ये माता रा मंदिर जो सो सारे विश्व रे सभी दो ज़्यादा मशहूर मंदिरों बीचों दो एक असो। एती देश विदेश दो रोजाना हजारों श्रद्धालु आओ। हिमाचल प्रदेश दे कांगड़ा दो 30 किलोमीटर दूर स्थित असो ये ज्वालामुखी देवी रा मंदिर। ज्वालामुखी मंदिरों के खोजने रा श्रेय पांडवों के जाओ। एती देवी सती री जीव गिरी थी। ये मंदिर माता रे और ही मंदिरों री तुलना दे अनोखा सो क्योंकि एती कसी भी मूर्ति री पूजा नहीं होंगी बल्कि पृथ्वी रे गर्भ दो निकलने वाली 9 ज्वालाओं री पूजा की जाओ। इस मंदिरों का निर्माण राजा भूमिचंद ने करवाया था। बाद दो महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद 1835 दे इस मंदिरों का पूर्ण निर्माण करवाया। दूजा शक्तिपीठ है सो जी चिंतपूर्णी धाम। ऊना जिले ने भरवाई नावरी जगह पाए ये माता रा मंदिर है सो। मान्यता सो जो चिंतपूर्णी देव माता सती रे चरण गिरे थे इन्हों के छिन्नमस्तिका देवी भी बोला जाओ। चिंता के पूर्ण करने वाली देवी चिंतपूर्णी रा ये मंदिर काफ़ी प्राचीन है सो। श्री मार्कंडेय पुराणों के अनुसार जब माँ चंडीए राक्षसों रा संहार करी रो विजय प्राप्त की तो माते योगिनियों के जो माता री सहायक थी तीनों री रुधिर पिपासा के शांत करने री तई अपना मस्तक काटी रो तीनों री प्यास बुझाई थी। तभी माता रा नाव छिन्नमस्तिका पड़ा। तीजा शक्तिपीठ असो माँ चामुंडा देवी। पालमपुरों तो लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पाए माता रा ये मंदिर असो। ये मंदिर माँ चामुंडा देवी के समर्पित असो जो कि भगवती काली राई एक रूप असो। दुर्गा सप्तशती रे अध्याय दे वर्णित कथाओं के अनुसार एक बार चंडमुंड नामक दो महादैत्य देवी साई युद्ध करने आए तो देवी काली रा रूप धारण करी रो तीनों रा वध कर दीता। चंड मुंडोरा वध करने रे कारण ही माता रा नाव चामुंडा रखा गया। यही कारण असो जे भक्तगण देवी रे इस स्वरूपों के चामुंडा रे रूपों दे पूजो। चौथा शक्तिपीठ असो जी माँ ब्रजेश्वरी देवी कांगड़ा। इथे के नगरकोट भी बोला जाओ। इति माता सती रा वक्ष गिरा था। माता रे इस

दामोदय मारी तीन पिंडियां भी असो, पिंडी रूपों दे मातारी पूजा अर्चना की जाओ। इस शक्तिपीठों दे मातारी आरती पांच बारी की जाओ। ब्रजेश्वरी मंदिरों दे कई देवी और देवताओं की प्रतिमाएं भी असो। मंदिरों रे बाएं किनारे भैरवनाथों की मूर्ति विराजमान असो। भैरवनाथों के भगवान शिव और अवतार माना जाओ। पांचवा शक्तिपीठ असो नैना देवी माता रा मंदिर बिलासपुर जिले दे असो। इस शिवालिक पर्वत श्रेणी री पहाड़ियों पाएं स्थित असो। श्री नैना देवी मंदिर से जगह असो जिति माता सती री आंखें गिरी थी। श्री नैना देवी मंदिर महेश पीठों रे नाव साई भी प्रसिद्ध असो, क्योंकि इति माँ श्री नैना देवी महिषासुरोरा वध किया था। मंदिरों दे माता भगवती नैना देवी री दर्शन पिंडी रे रूपों दे हो। नवरात्रे दे इति मेले भी लगो और नैना देवी रे मंदिरों दे पीपलोरा जो पेड़ असो से कई शताब्दी पुराना असो। तो जी इतु थी बातचीत थी हिमाचल प्रदेश और शक्ति पीठों रे बारे दी। और देखो हमें सब जानू जब भाई मारे हिमाचल हो के तब भाई देवभूमि भी बोला जाओ। तो ये भी सुनो तुसे लोकगीत।

माता सतरंग चोलियां वाली है। तो जी बहुत बढ़िया लोक भजन था और गाने लग रहे थे प्रकाश भारती। बात कर लेनी है हमारे सुकन्या समृद्धि योजना रे बारे दी। सुकन्या समृद्धि योजना केंद्र सरकार और री बालिकाओं री ती एक छोटी बचत योजना सो जो बेटियों रे भविष्य दे होने वाले खर्चों के पूरा कर ली। इस योजना के सरकारों द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियानों रे अंतर्गत शुरू किया गया सो सुकन्या 10 सालों तो कम आयुरी बालिकाओं रे नाव साई या माता पिता या तीनों रे लीगल अभिभावकों द्वारा एक खाता खुलवाया जा सको जो 250 रुपये तो शुरू हो रो 1.5 लाख रुपये हो सको। इतना उद्देश्य भविष्य दे होने वाले खर्चों की पूर्ति तई के बचत इकट्ठी करना सो। सरकार और आ इस योजना के शुरू करने रा मुख्य मकसद इस योजना रे माध्यमों से ही देश और बेटियों रा भविष्य सुरक्षित करना सो। योजना रे तहत केवल बेटियों रा खाता खोला जाओ तुसे सुकन्या समृद्धि योजना रा खाता अपने किसी भी नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या अधिकृत बैंकों दे जाई रो खुलवाई सको। इस योजना रे तई बालिकारी अधिकतम प्रवेश आयु 10 साल सो सालाना न्यूनतम निवेश राशि 1 लाख रुपये सो। इस स्कीमों दे 15 सालों तई प्रीमियम राशि जमा करनी हो जनेरी परिपक्वता अवधि 21 साल सो। वर्तमानों दे इथेरा जो लाभरीदार सो से 7.60 प्रीमियम जे तुसे महीने का देने लग रहे तो हर महीने री 1 तारीखों के और जे सालाना देने लग रहे तो हर साल 1 अप्रैल के जमा किया जाना। बालिका रे 18 सालों री उम्र पूरी होने पाए ते सोरी उच्च शिक्षा री पढ़ाई री दे 50% राशि निकालने रा विकल्प सो। इस योजना रा खाता तुसे दूजी जगह भी ट्रांसफर करवाई सको। योजना रा लाभ दत्तक पुत्री जिसके गोद लिया गुआ हो से भी ले सको। जे लड़की बालिग होने पाए अपना खाता आप ही चलाना चाहो तो से खाते के आप ही भी चलाई सको। सुकन्या समृद्धि योजना रे खाते मुख्यतः पोस्ट ऑफिसों दे खुलवाए जा सको। इत्थे रे साथी लगभग सभी सरकारी बैंकों दे भी इस योजना रा खाता तुसे खुलवाई सको। इंदा निवेश शुरू किया जा सको। जे तुसे सुकन्या समृद्धि योजना रे तहत पैसे जमा कराने चाहो तो तुसों के इथेरी तई के कुछ दस्तावेजों की जरूरत होनी। खाता खोलने की तई बालिका रा जन्म संबंधी प्रमाण पत्र होना बहुत जरूरी है सो। माता पिता रा आधार कार्ड पैन कार्ड आदि भी होना चाहिए। बालिका री आयु 10 सालों तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस योजना दे 15 सालों तई के पैसा जमा होना और इथेरी तई तुसों के पता होना चाहिए जे पैसा किसा जमा होना। जे तुसोरी किश्त मासिक असो तो सालों दे 12 न्यूनतम किश्तें जमा करनी पड़नी और जे सालाना दे एक किश्त देनी तो से सालाना होनी। एक किश्तें तुसे घरे बैठी रहो भी जमा करवाई सको। नगद चेक डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन ई ट्रांसफर जे उपलब्ध असो। इस योजना के तहत 2 लड़कियों रा अकाउंट खुलवाई सको। जे कसी 3 बेटियां सो तो से केवल अपनी बड़ी 2 बेटियों रा अकाउंट खुलवाई सको। हालांकि कसीरी पहली बारी दे 1 बेटी पैदा हो और दूजी बारी दे 2 जुड़वा बेटियां पैदा हो तो इस मामले दे 3 बेटियों रा अकाउंट खुलवाई सको। पर सामान्य मामले दे केवल 2 बेटियों रा ही खाता खुलवाया जा सको। सुकन्या

समृद्धि योजनारा फार्म ऑनलाइन भी डाउनलोड करी सको और इस योजनारी तें के निवेदन करी सको। भारी सरकारों द्वारा वक्त वक्त पाए इसी योजनाएं चलाई जाओ जिन्होंने फायदा हम ओके जरूर उठाना चाहिए। तो जी ये तो थी बातचीत सुकन्या समृद्धि योजना रे बारे दी। ये भी सुनो तुसे लोकगीत।

माना किया। तिने बोला जे इस कार्यक्रम रा उद्देश्य देशों रे विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों रे युवाओं रे बीचे सांस्कृतिक शैक्षणिक और सामाजिक समन्वय के मजबूत बनावना सो। तो जी ये तो थी खबर सार और ए भी सुनो तुसे लोकगीत।

चंपा शर्मा रे गाए इस लोकगीतों साई मारे कार्यक्रम रो भक्त गुआवई मुलाकातों लिए आने वाले सारे ताऊ ती के इजाजत दियो सभी सुनने वाले के राम राम।

0: he pledged. The Prime Minister said this triumph also reflects hockey's growing popularity among the youth. He conveyed best wishes to the team for their future endeavours. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह एफएम शिमला है। 7:10 हुए हैं। किसान और बागवानों के लिए पेश है कृषि जगत कार्यक्रम।
2: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में मैं हूं अश्विनी शर्मा।
3: मैं जयप्रकाश।
2: तो जयप्रकाश जी, क्या हाल है आपके?
3: मैं अश्विनी जी ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हैं?
2: जी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे किसान बागवान भाई बहन भी स्वस्थ होंगे।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: और आजकल जैसे कि मौसम ने फिर से करवट ले ली है, बीच बीच में बारिशें भी हो रही है, तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों का थोड़ा जो है काम बढ़ जाता है। अब किसान भाइयों ने अपनी पिछली फसलों को तो काट कर भंडारित कर ही लिया है, तो अब इस वक्त किसान भाई जो है वो खरीफ की फसलों में की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें और बारिश या तेज़ धूप के समय कम काम करें, और जब मौसम बिल्कुल ठीक हो तभी अपने काम को अंजाम दें।
2: जी, तो किसान भाइयों, आज काम की बातों में बात करेंगे हम जल संरक्षण का महत्व के बारे में। तो किसान भाइयों, हिमाचल में एक पहाड़ी राज्य है, यहाँ की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियाँ मैदानी क्षेत्रों से बिल्कुल अलग रहती है। प्रदेश में 84% छोटे और सीमांत किसान है, जो कि दूर दराज के दुर्गम इलाकों में बसे हुए हैं। प्रदेश का 80% क्षेत्र वर्षा पर निर्भर रहता है, केवल 20% क्षेत्र में ही सिंचाई की जा सकती है। प्रदेश में वर्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। 12 जिलों में से 9 जिलों में वर्षा वर्ष भर औसत वार्षिक वर्षा 1000 मिलीमीटर या इससे अधिक होती है, लेकिन 80% वर्षा इससे अधिक होती है।
1: जी, वर्षा ऋतु में सारी वर्षा 200 घंटों में हो जाती है तथा आधी से ज़्यादा वर्षा सिर्फ 20 से 30 घंटों में ही हो जाती है, जो कि बहुत ही तेज होती है। वर्षा का सारा पानी बह जाता है और बहुत तेज़ी से बाढ़ आ जाती है। बहता हुआ पानी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी को भी ले जाता है, जिससे उत्पादकता प्रभावित होती है। दूसरी तरफ वर्षा भी हर साल अलग अलग तरह से होती है, किसी वर्ष बहुत ज़्यादा और किसी वर्ष बहुत कम। इतना ही नहीं, कभी कभी तो मानसून ऋतु में भी सूखा पड़ जाता है। ऐसे में बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि जल संरक्षण किया जाए, ताकि सूखे की स्थिति आने पर किसान जो है वो संरक्षित जल से अपनी फसलों की सिंचाई कर सके।
2: किसान भाइयों, बात कर लेते हैं समुच्चय रेखा पर हल चलाने के लिए। तो यदि ढलान की दिशा में जुताई की जाए तो भूमि कटाव को बढ़ावा मिलता है और उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। इसे रोकने के लिए ढलान युक्त खेतों में समुच्चय रेखा यानी कि ढलान के विपरीत 90 डिग्री कोण पर जुताई की जा सकती है। ऐसा करने से हल से बनी छोटी छोटी मेड़े पानी की गति को कम करके भूमि कटाव को रोकती है, साथ ही पानी को भूमि में शोषित होने के लिए ज़्यादा समय मिल जाता है।
1: जी,

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: इसके अतिरिक्त किसान भाइयों समुच्चय बांध तथा नालियां बनाकर भी

0: जल संरक्षण किया जा सकता है। अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में पानी के बहाव को रोकने के लिए समुच्चय रेखा पर छोटे बड़े मिट्टी या सीमेंट के बांध बनाए जाते हैं और अपवाह जल को सुचारू ढंग से बाहर निकालने के लिए समुच्चय रेखाओं पर नालियाँ बनाई जा सकती है। सीढ़ीदार खेत समुच्चय रेखाओं पर प्राचीन काल से ही बनाए जाते रहे हैं।
1: जी किसान भाइयों, कम वार मेड़ों के बारे में अगर बात करें तो अधिक ढलान वाले क्षेत्रों में वर्षा जल तीव्र वेग या कम जल ग्रहण क्षमता के कारण भूमि के अंदर नहीं जा पाता, वहां कम वार मेड़े बनाकर पानी को संरक्षित किया जा सकता है। वायु रक्षा पट्टी बनाने के बारे में अगर बात करें तो ये पट्टी सूखे क्षेत्रों में शुष्क वायु द्वारा जमीन की नमी को नुकसान होने से बचाती है। इस विधि में जिस तरफ से शुष्क वायु आती हो उस तरफ ऊंचे सघन छत्र वाले पेड़ लगाए जाते हैं।
0: जी, पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जैसे कि मिट्टी में पानी सोखने की क्षमता बढ़ाने के लिए जैविक खादों का प्रयोग करें। दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करके मिट्टी को 2 से 3 सालों में अधिक उपजाऊ बनाया जा सकता है। रबी की फसल काटने के बाद खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए ताकि मानसून में वर्षा का पानी निचली सतहों पर इकट्ठा किया जा सके और मानसून खत्म होने पर खेत की जुताई करके उसे सुहागा दे दें। इससे जमीन में जमा नमी अगली फसल की बिजाई तक बनी रहती है। भूमि में संरक्षित जल को वाष्पीकरण से बचाने के लिए ऊपरी सतह पर घास आदि या प्लास्टिक की चादर भी बिछाई जा सकती है।
1: जी
0: बिजाई कतारों में करें, कम बीज का इस्तेमाल करें। यदि नमी कम हो तो बीज को पानी में भिगोकर बिजाई करें।
1: जी किसान भाइयों, वर्षा जल के सारे खेत में समान रूप से शोषित होने के लिए ऊंची नीची भूमि का समतल करना अति आवश्यक होता है। यदि जमीन में नमी कम हो तो खादों का सीमित प्रयोग करें। अनुमोदित खाद का आधा भाग ही खेत में बिजाई के समय गहराई में जहां उचित नमी हो वहीं डालें। इससे पोषक तत्व सीधे जड़ों तक पहुँचते हैं, अन्यथा पोषक तत्व सतह पर ही रहकर पौधों को उपलब्ध नहीं होंगे। उर्वरकों खासकर नाइट्रोजन, पोटाशियम और जस्ते का 2 से 3% घोल बनाकर स्प्रे भी किया जा सकता है। फूल आने की अवस्था में इस तरह के स्प्रे बहुत लाभकारी होते हैं। आमतौर पर किसान देसी खाद के साथ यूरिया खाद ही डालते हैं, जिससे सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। मिश्रित खादों का इस्तेमाल अवश्य करें ताकि सभी पोषक तत्व पौधों को मिल सके। जल संरक्षण के लिए पॉलीथीन तह वाले टैंक की अगर बात करें तो पॉलीथीन वाले तालाब जल संचय के लिए बेहतर और कम खर्च वाला विकल्प है, क्योंकि पॉलीथीन की तरह जमीन में भी पानी के रिसाव को रोकती है। इससे एकत्रित जल सिंचाई के लिए ज़्यादा समय तक या फिर ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहता है। वर्षा ऋतु में इकट्ठा किया हुआ पानी अक्टूबर से दिसंबर तक की सिंचाइयों के लिए काफ़ी होता है। सर्दियों की वर्षा से टैंक फिर भर जाता है, जिससे सर्दियों के उपरांत फसल के पकने के समय पर सिंचाई की जा सकती है।
0: जी, यदि आप टैंक बना रहे हैं तो जगह का चुनाव करना बहुत ही आवश्यक होता है। बांध बनाकर और समतल क्षेत्र में जमीन खोदकर टैंक बनाए जा सकते हैं। टैंक बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करें। इसके लिए जमीन का वह हिस्सा लें जहां सभी ओर का फालतू पानी जैसे वर्षा अपवाह जल, नल कुहल, बावड़ी, रसोई घर या बाथरूम का बहता पानी आसानी से इकट्ठा किया जा सके। यदि ऐसी जगह खेत के ऊपरी सिरे पर हो तो एकत्रित जल का बिना किसी अतिरिक्त खर्च के रबड़ पाइप या जल वितरण नालियों द्वारा किया जा सकता है। बात करें आकार की तो टैंक का आकार और क्षमता पानी की जगह की उपलब्धता और सिंचाई की आवश्यकता पर निर्भर करता है। 15,000 लीटर क्षमता वाले टैंक को बनाने के लिए ऊपरी सतह की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, निचली सतह की लंबाई 3 मीटर और चौड़ाई 2 मीटर, मध्य की गहराई 1 मीटर और चारों ओर की ढलान 1:1 रखें। इस क्षमता से बने टैंक से 100 वर्ग मीटर 1/4 कनाल क्षेत्र में 8 सिंचाइयां की जा सकती है।
1: किसान भाइयों, टैंक की खुदाई के बारे में अगर बात करें तो टैंक की खुदाई शुरू करने से पहले बताए गए माप के अनुसार चारों किनारों पर निशान लगाएं। पहले ऊपरी सतह के लिए निशान और फिर निचली सतह के लिए निशान लगाएं। अब निचली सतह के निशान से खुदाई शुरू करें और खुदाई तब तक जारी रखें जब तक जितनी गहराई चाहिए उतनी गहराई हो जाए। खुदाई से निकलने वाली मिट्टी को टैंक के चारों तरफ टैंक की ऊपर वाली सतह के निशानों के बाहर ही फेंकें। इसके बाद टैंक की चारों दीवारों को तिरछा काटना शुरू करें और तब तक काटते जाएं जब तक ऊपर वाली

0: सतह के निशानों पर ना पहुंच जाए। खुदाई समाप्त होने पर चारों दीवारों की ढलान 1:1 के अनुपात में होनी चाहिए। इसके बाद अब चारों तरफ खुदाई इस तरह से करें कि ऊपर वाली सतह के निशानों पर पहुंच जाए। बांध के बाहर वाली दीवार और बांध के ऊपर ऐसी घास लगाएं कि वर्षा से मिट्टी का कटाव ना हो। इसके लिए पत्थर की परत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
1: जी, तालाब बनाते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि तालाब के चारों तरफ जानवरों और बच्चों से बचाव के लिए बाड़ जरूर लगाएं। तालाब से पानी एक ही तरफ से आए तथा फालतू पानी का निकास दूसरी तरफ से हो। किसी कारणवश यदि चादर थोड़ी फट जाती है तो उसे फेविकोल से जोड़ा जा सकता है। तो किसान भाइयों, ये तो बात हुई जल संरक्षण के महत्व के विषय पर, और साथ ही साथ ये कि हम जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अब कार्यक्रम में समय हो चला है मनोरंजन का, तो आइए किशोर कुमार की आवाज़ में सुनते हैं ये पहाड़ी लोकगीत।

तत्व के विषय पर और साथ ही साथ ये कि हम जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं। अब कार्यक्रम में समय हो चला है मनोरंजन का, तो आइए किशोर कुमार की आवाज में सुनते हैं ये पहाड़ी लोकगीत।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत। तो किसान भाइयों, आइए सुनते हैं जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। मौन पालन में रोजगार की संभावनाएं, बातचीत में भाग ले रहे हैं डॉक्टर ज्ञान वर्मा और उनसे बातचीत करेंगे निशा शर्मा।
1: किसान भाइयों नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं जानकारीपूर्ण बातचीत, जिसका विषय है मधुमक्खी पालन में रोजगार की संभावनाएं। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर ज्ञान वर्मा। ज्ञान वर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर हम मधुमक्खी पालन की बात करते हैं तो ये मधुमक्खी पालन है क्या और इसकी उपयोगिता क्या है?
2: मधुमक्खी पालन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मधुमक्खियों का बहुत प्राचीन समय से लेकर जो है मनुष्यों के साथ इसकी एसोसिएशन रही है।
1: जी,
2: मौन पालन जो है एक कृषि और बागवानी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इनका योगदान रहता है। मौन पालन को बी कीपिंग भी कहा जाता है, एपी कल्चर भी कहा जाता है। एपी कल्चर का मतलब है एपिस जमा कल्चर, ये दो शब्द से बना है।
1: जी,
2: एपिस का मतलब होता है मौन और कल्चर का मतलब होता है पालन। तो जब हम आधुनिक ढंग से और वैज्ञानिक ढंग से मधुमक्खियों का पालन पोषण करते हैं तो उसे मौन पालन या मधुमक्खी पालन भी कहा जाता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, मधुमक्खियों की प्रजातियां कितनी हैं और कौन कौन से उत्पाद जो हैं वो हम मधुमक्खियों से प्राप्त कर सकते हैं?
2: हमारे देश में मधुमक्खियों की चार प्रजातियां पाई जाती है, जो जिनसे हमें शहद और अन्य उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। पहली जो इसकी प्रजाति है वो है इंडियन हनी बी,
1: जी,
2: जिसे कि एपिस सराना इंडिका भी कहा जाता है। ये हमारे देश की अपनी मक्खी है, नेटिव, जो यहाँ इसका ओरिजिन हुआ है। तो इस मधुमक्खी से हमें 5 से 7 किलोग्राम शहद प्रतिवर्ष प्राप्त होता है।
1: जी
2: दूसरी प्रकार की जो मधुमक्खी की प्रजाति है वो एपिस डोरसेटा है, जिसे रॉक बी भी कहते हैं। इस मधुमक्खी से हम शहद उत्पादन तो काफी होता है, लेकिन इस मधुमक्खी को पालना असंभव है क्योंकि ये काफी एग्रेसिव और गुस्से वाली होती है और इसे बी हाइव में या मौन ग्रहों में नहीं पाला जा सकता है। शहद उत्पादन इससे 50 से 60 किलो तक प्राप्त होता है।
1: जी
2: तीसरे प्रकार की जो मधुमक्खी की प्रजाति है वो एपिस फ्लोरिया है, जिसे लिटल बी कहा जाता है। इससे हमें 1 से 2 किलोग्राम शहद उत्पादन प्राप्त होता है और ये हमारे निचले जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ये मधुमक्खी पाई जाती है। चौथी प्रकार की जो मधुमक्खी की प्रजाति है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है, उसे इटालियन हनी बी कहा जाता है, एपिस मेलिफेरा इसका नाम है। यह मधुमक्खी हमने विदेशों से आयात की है। सबसे पहले 1961 में हिमाचल प्रदेश में ही इस मधुमक्खी को लाया गया था और हमारे जो मौन पालक है, मधुमक्खी पालक है, वो भी व्यावसायिक रूप से इसी मधुमक्खी की प्रजाति का को पाल रहे हैं डब्बों में। इससे शहद उत्पादन जो है, अगर हम माइग्रेटरी कंडीशन में जब हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इससे 20 से 25 किलोग्राम शहद उत्पादन प्रतिवर्ष प्राप्त हो जाता है।
1: जी
2: इसके अतिरिक्त मधुमक्खियों से हमें बहुत से, जैसे कि आपने कहा है कि इससे हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं, तो मधुमक्खियों से हमें शहद मुख्यतः एक इसका मुख्य उत्पाद है। इसके अलावा जैसे मोम है, जिसे वैक्स भी कहा जाता है, वो भी हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादन जिसे रॉयल जेली कहा जाता है, जिसका कि बाहर विदेशों में भी काफी उत्पादन हो रहा है, वो भी हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। मधुमक्खियों की जो वर्कर बीज होती है, इससे हमें एक जो इनका जहर होता है, डंक जिसे कहते हैं, उससे हमें एक उत्पाद प्राप्त होता है जिसे हम बी वेनम कहते हैं। इसका भी बहुत ही औषधीय उपयोग इसका काफी है। इसके अतिरिक्त एक और मधुमक्खियों से हमें उत्पाद प्राप्त होता है जिसे प्रोपोलिस कहा जाता है, जिसके कि बहुत से दवाइयों और अन्य चीजों में बनाने में काम आता है।
1: जी,
2: आपको विदिती है कि मौन पालन या मधुमक्खी पालन का जो है हमारे कृषि और बागवानी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारी जो भी विश्व की जनसंख्या है उसका 1/3 जो खाद्य पदार्थ है वो मधुमक्खियों द्वारा ही लाभान्वित होकर हमें प्राप्त हो रहे हैं। यदि इस संसार में मधुमक्खियां नहीं होगी तो मनुष्यों का जीवन भी ज्यादा देर तक संभव नहीं हो सकता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब देखिए, हमारे जो रोजगार की दृष्टि से अपनाना चाहते हैं इस व्यवसाय को, तो उन्होंने शुरुआत कैसे करनी है? जैसे वो मधुमक्खी पालना चाहते हैं तो कहाँ संपर्क कर सकते हैं?
2: ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि मधुमक्खी पालन जो है अभी तक जो हमारे ट्रेडिशनल परंपरागत तरीकों से ही मधुमक्खी पालन हो रहा था, जैसे मधुमक्खियां घरों में भी लोग उसका पालन पोषण करते थे, जिसे जिन्हें हम वाल हाइव्स कहते हैं। तो कुछ एक जंगलों में भी मधुमक्खियां पाई जाती है, जो कि पेड़ों के खोखलों या उसमें बड़े वृक्षों पे रहती है, जिन्हें लॉग हाइव्स कहते हैं। तो आधुनिक ढंग से जो मौन पालन है वो मौन ग्रहों में किया जा रहा है। ये जो हमारी इंडिका मक्खी है, इसको भी हम मौन ग्रहों में पाल सकते हैं। इसके मौन ग्रह को हम जॉलीकॉट बी हाइव कहते हैं। और ये जो हमारी इटालियन मधुमक्खी है, इसे भी हम

0: मौन ग्रह में पाल सकते हैं। इसके जो मौन ग्रह को हम मेलिफेरा बी हाइव्स कहते हैं, मौन ग्रह कहते हैं। इसके बाद जो है मधुमक्खियां जो है वो मधुमक्खी पालन का काम करना चाहता है, उसे मधुमक्खियां खरीद के जो है मधुमक्खियों की जो कॉलोनीज हैं वो कम से कम, अगर व्यावसायिक रूप से मधुमक्खी पालन व्यवसाय करना है तो इसके लिए कम से कम 50 कॉलोनीज खरीदना आवश्यक रहता है, तभी इसमें जो है आगे बढ़ोतरी भी होगी और इसमें मौन पालन व्यवसाय से फायदा भी हो सकता है। तो मधुमक्खी पालन के लिए सबसे पहले प्रशिक्षण, उसके बाद जो है मधुमक्खियों से संबंधित जो भी सामग्री है उसे प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, मौन पालन व्यवसाय को व्यावसायिक रूप में अपनाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं?
0: मधुमक्खियों पालन व्यवसाय व्यावसायिक रूप से अपनाने पे इसमें बहुत से फायदे हैं, जैसे कि मधुमक्खिया से हमें महत्वपूर्ण उत्पाद, जैसे पहले भी मैंने बताया है कि एक तो शहद ही प्राप्त होता है, शहद के बहुत से औषधीय गुण हैं, शहद की हमारे प्रदेश देश और विदेशों में भी इसकी काफी मांग है।
1: जी
0: मधुमक्खियों के शहद को बेच के भी हमारे जो मौन पालक है, मधुमक्खी पालक है, वो काफी अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है जो हमारे मधुमक्खियों के कॉलोनीज हैं उसमें जो है फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, पॉलिनेशन जिसको कहते हैं, परागण क्रिया संपन्न करवाने के लिए भी बागवान जो है मधुमक्खियों के बक्से जो है वो मौन पालकों से किराए पे लेते हैं। तो मौन पालकों को इनसे एक बॉक्स, एक कॉलोनीज में जो है वो 1,000 रुपए किराया प्राप्त होता है। इसके अलावा हर वर्ष जो मौन वंशों में बढ़ोतरी होती है, मौन वंशों की बिक्री से भी मौन पालक अपनी आय में इजाफा कर सकते हैं।
1: जी, तो डॉक्टर साहब, मौन पालन एवं मधुमक्खियों का पर्यावरण संतुलन में क्या योगदान है?
0: मधुमक्खियों का फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के अलावा, जैसा कि आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कहा, मधुमक्खियों को यदि हम सेब, नाशपाती, चेरी या इन बगीचों में रखते हैं तो इसमें फसल की जो उत्पादकता है वो 20 से 25% उत्पादकता बढ़ जाती है। फलों की गुणवत्ता, फलों की क्वालिटी और फलों की जो शेल्फ लाइफ है उसमें भी सुधार होता है। इसके अलावा जो हमारी दूसरी फसलें हैं, जैसे सरसों हैं, तोरिया है, सूरजमुखी है और दूसरी सब्जियों वाली फसलें हैं जैसे प्याज है, मूली है, इनमें भी यदि हम मधुमक्खियों के बॉक्सेस को अपने खेतों में रखते हैं तो इसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ फसलों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। तेल वाली फसलों में तेल की जो मात्रा है उसमें भी बढ़ोतरी हो जाती है। इसके अलावा पर्यावरण संतुलन में भी, इकोलॉजिकल बैलेंस में भी मधुमक्खियों का बहुत सा योगदान है, क्योंकि मधुमक्खियां जो है एक फूल से दूसरे फूल पर जब भ्रमण करती है तो वो परागकणों को एक पौधे से दूसरे पौधे पर ले जाती है, जिससे कि पौधों में जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन भी होता है, पर परागण भी होता है। इसके अलावा जो है उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होती है और मधुमक्खियों का पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है।
1: जी, और किसान और बागवानों की हम बात करें तो फसलों की उपयोगिता जो है वो मधुमक्खी बढ़ा सकती है, इसमें इनका क्या योगदान रहता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं।
0: इस विषय में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। जैसे कि हमारे सेब उत्पादक क्षेत्रों के जो बागवान है, जब सेब में फ्लावरिंग शुरू होती है मार्च अप्रैल के महीने में, तो जब 10 या 15% फ्लावरिंग हो जाती है तो बागवानों को चाहिए कि वो अपने बगीचों में जो है मौन वंशों को, मधुमक्खियों के कॉलोनीज को रखें, तो 1 एकड़ के लिए जो है वो 2 से 3 कॉलोनीज काफी रहती है। और मधुमक्खियों को बगीचे में जो है निचले या मध्य स्थान पे रखना चाहिए
1: जी
0: और मधुमक्खियों का जो मुंह है वो पूरब की दिशा की ओर होना चाहिए, जहां से सुबह सूरज निकलता है। इसके अलावा जो है मधुमक्खियों को जब पॉलिनेशन के लिए बगीचों में रखते हैं तो उस टाइम जो है बागवान किसी भी कीटनाशक या दूसरे कोई फफूंदनाशकों का छिड़काव ना करें, क्योंकि इससे मधुमक्खियों को काफी नुकसान होता है। पॉलिनेशन, परागण क्रिया संपन्न करवाने में मधुमक्खियों का बहुत योगदान रहता है, क्योंकि मधुमक्खियों की पिछली टांगों में एक पोलन बास्केट होती है जिसमें ये अपनी टांगों में पोलन फ्लावर से कलेक्ट करके अपने कॉलोनीज में लाती है और ये अपने जो परिवार होता है इनका, मधुमक्खियों का परिवार, छोटे बच्चे होते हैं उनको पोलन प्लस नेक्टर ये फीड करवाती है। तो जिससे को है ये तो अपने लिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए नेक्टर और पोलन कलेक्ट करती है, लेकिन बागवान को जो है इससे काफी फायदा होता है, क्योंकि जब ये एक फूल से दूसरे फूल पे भ्रमण करती है तो उसमें फसल की उत्पादकता में भी बढ़ोतरी होती है
1: जी
0: और अब बागवानों को जो है इससे अच्छी आमदनी प्राप्त होती है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, देखिए, हमारी हिमाचल प्रदेश की जिस तरह की जलवायु है, तो यहाँ कौन सी प्रजाति है जो अच्छी तरह से उत्पाद दे सकती है, या जिससे हमारे किसान बागवान या हमारे जो रोजगार की दृष्टि से इसे अपना रहे हैं, तो किस तरह से वो लाभ उठा सकते हैं?
0: हिमाचल प्रदेश की जलवायु जो है मौन पालन के लिए काफी अनुकूल है। यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों में जिस तरह से हमारा जोन जो है सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल, सब टेम्परेट्स और ऊपर ड्राई टेम्परेट जोन तक हमारे प्रदेश में अलग अलग तरह के पुष्प पौधे पाए जाते हैं जो कि मधुमक्खियों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो जो हमारे मौन पालक हैं वो अतिरिक्त शहद उत्पादन इनसे कर सकते हैं।

0: जैसे कि हमारे प्रदेश में खिचड़ी है, एक इसका भी बहुत अच्छा हनी निकलता है, ओगला है, खैर है, लीची है, जामुन है, यूकेलिप्टस है, बहुत तरह के पुष्प पौधे जो हैं हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं। और हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है मौन पालन व्यवसाय को अपनाकर अपनी आमदनी में काफी इजाफा कर सकते हैं। इसके अलावा मौन वंशों को हम प्रदेश या दूसरे प्रदेशों में भी प्रवर्जित करते हैं, माइग्रेट करते हैं,
1: जी
0: वहाँ पर भी बागवानों को काफ़ी अच्छा पुष्प पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें मुख्यतः सरसों है, तोरिया है, लीची है और भी अन्य काफ़ी फसलें हैं हमारे मैदानी क्षेत्रों में। तो वहाँ सर्दियों के मौसम में हमारे जो मौन पालक है वो मौन वंशों को वहाँ प्रवर्जित करते हैं और काफ़ी शहद उत्पादन प्राप्त करते हैं, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकती है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, देखिए अंत में आप हमारे किसान बागवान भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: प्रदेश के किसान और बागवान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि मौन पालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए आप लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि मधुमक्खी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसको कोई भी जो बेरोजगार युवा है, जिसके पास की अपनी जमीन भी नहीं है, वो भी मौन पालन का व्यवसाय शुरू कर सकता है। क्योंकि जो हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड और एक्टिविटीज हैं, उसके लिए हमें जमीन की आवश्यकता रहती है, क्योंकि जमीन पे ही हमारी खेती होगी, पौधे भी लगने हैं। लेकिन मौन पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसके पास जमीन भी नहीं है, कृषि योग्य भूमि भी नहीं है, जो
1: जी
0: हमारे शहर के भी बेरोजगार युवा हैं वो भी इस व्यवसाय को अपना सकते हैं। मौन पालन के लिए बहुत ज्यादा स्थान की आवश्यकता भी नहीं होती है, बहुत ज्यादा लेबर की आवश्यकता भी नहीं होती है, और बहुत ज्यादा इसमें थोड़ा सा स्किल की जरूरत होती है,
1: जी
0: जो कि आप एक ट्रेनिंग द्वारा जो है इसको पूरा कर सकते हैं। और इसमें ज्यादा लेबर इंटेंसिव भी नहीं है और इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा है। यदि हम 50 कॉलोनीज को रखते हैं तो एक मौन पालक का जो है उसमें 2-1 लाख रुपया खर्च आता है,
1: जी
0: और साल में जो है इतनी ही 1.5 से 2 लाख रुपए उसकी आय भी वो इससे प्राप्त कर सकता है। तो मेरी किसानों और बागवान भाई बहनों से ये अनुरोध रहेगा कि वो मौन पालन की उपयोगिता को समझते हुए मौन पालन व्यवसाय को जरूर अपनाएं, और जो हमारे बागवान और किसान गांव में भी अपने जो वाल हाइव्स में भी जो उन्होंने मधुमक्खियां पाल रखी है उसको भी वैज्ञानिक ढंग से वो अपने मौन ग्रहों में पालें और शहद के साथ साथ फसलों की उत्पादकता तथा पर्यावरण संतुलन में भी अपना योगदान दें।
1: जी तो डॉक्टर ज्ञान वर्मा जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी हमारे किसान बागवान और बेरोजगार भाई बहनों को मधुमक्खी पालन में रोजगार की संभावना के बारे में। तो इन सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुना एक जानकारीपूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था मौन पालन में रोजगार की संभावनाएं। बातचीत में ज़्यादा जानकारी दे रहे थे डॉक्टर ज्ञान वर्मा और उनसे जानकारी हासिल कर रही थी निशा। तो किसान भाइयों, अब कार्यक्रम में समय हो चला है फिर से मनोरंजन का, तो आइए करनैल राणा की आवाज़ में सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

0: किसान भाइयों, कर्नेल राणा की आवाज में सुना ये लोक गीत।
1: तो किसान भाइयों, अब इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम का समय भी संपन्न हो चला है। आप सहमति चाहेंगे?
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला है।
1: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
2: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप कार्यक्रमों का आनंद उठाते हैं और हम भी आपकी जो फरमाइशें हैं उन्हें तरह तरह से जो हैं जिस तरह से कार्यक्रम के माध्यम से आप 9:30 पर कार्यक्रम सुनेंगे, आज रात दिल की आवाज़ भी सुन, उसमें हम मेल पर आधारित ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। आपकी मेल हम तक पहुँचती है और हम आपकी जो फरमाइश, आपका जो गीत आप सबके दिल के करीब है, वो ही गीत हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। तो आप सबसे हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने फरमाइशी गीत को सुनना चाहते हैं तो आज रात 9:30 पर आप हमें हमारे मेल एड्रेस airfmshimlamusicmail@gmail.com पर हमें मेल भेजें, हम आपको सुनाएंगे आपके पसंद के गीत। बस बने रहे हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: 103.7 MHz पर यह FM शिमला है। 7:45 होने को हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की आप प्रतीक्षा करें।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का शिमला केंद्र। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आप DTH सेवा, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
3: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
2: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों के लिए नियमितीकरण नीति 2026 को दी मंजूरी। अस्वीकृत किए गए करुणामूलक नियुक्ति मामलों पर पुनर्विचार पर भी लगाई मुहर। हिम केयर योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज बीमा मॉडल के अंतर्गत संचालित करेगी सरकार। नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को 15 जून को जिला स्तर पर दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री धर्मशाला में दिलाएंगे शपथ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री बौखलाहट में जनादेश का लगातार कर रहे हैं अपना अपमान। और सांसद अनुराग ठाकुर ने अंब अंदौरा से कोलकाता के लिए साप्ताहिक गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर किया रवाना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों द्वारा अलग अलग कारणों से अस्वीकृत किए गए करुणामूलक नियुक्ति के मामले पर पुनर्विचार के मामले को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि बैठक में सरकारी भूमि पर कुछ अतिक्रमणों के लिए नियमितीकरण नीति 2026 को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि ये नीति सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई है और इसे मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा गया है।
5: हिमाचल प्रदेश में जो सरकारी भूमि पे या फॉरेस्ट भूमि पे जिनके अवैध कब्जे थे, वो पॉलिसी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आज बना करके कैबिनेट में आई। उसमें ये है कि जिनके पास 20 बीघे से कम इंक्रोचमेंट सरकारी लैंड है या रेवेन्यू की लैंड है या फॉरेस्ट लैंड है, उनके लिए पॉलिसी बना करके हिमाचल प्रदेश की सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रपोजल बना के भेजा है।
4: हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में हिम केयर योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज को बीमा मॉडल के तहत संचालित करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित व्यवस्था के अनुसार पात्र लाभार्थियों को अब 5 लाख के स्थान पर 7 लाख रुपए और 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा।
5: कैबिनेट ने फैसला किया है कि अब हिमाचल सरकार जो है इंश्योरेंस वाली जो न्यू स्कीम्स है, इंश्योरेंस के माध्यम से न्यू स्कीम्स जो है वो लॉन्च करने जा रही है और इसकी मोडेलिटीज के लिए भी जो है डिपार्टमेंट को जो है इंस्ट्रक्शन आज कैबिनेट में जो है दी है। हाँ, मतलब हिम केयर कंटिन्यू रहेगा, हिम केयर और आयुष्मान भी कंटिन्यू रहेगा और जो इलाज होगा वो इंश्योरेंस के माध्यम से होगा।
4: संसदीय कार्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश के नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को 15 जून को जिला स्तर पर शपथ दिलाई जाएगी।
5: आज कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि जो पंचायत के प्रधान और उप प्रधान की ओथ जिला स्तर पर दिलाई जाएगी और

0: 15 जून को दिलाई जाएगी और मुख्यमंत्री जी कांगड़ा जिले में धर्मशाला में जो है ओथ दिलाएंगे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में मिनिस्टर्स को डिप्यूट किया गया है ओथ दिलाने।
1: मंत्रिमंडल की बैठक में तकनीकी शिक्षण संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति को मंजूरी देने के अलावा जॉब ट्रेनीज को 15 दिन का पितृत्व अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों में अलग अलग श्रेणियों के सैकड़ों पद भरने को भी स्वीकृति दी गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हार की बौखलाहट में हैं, इसलिए जनादेश का लगातार अपमान कर रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, ये बात मुख्यमंत्री स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में परिजनों की उपस्थिति एक सम्मान का भाव है, लेकिन आज सरकार द्वारा ऐसे समारोह में परिजनों और मीडिया को जाने से रोकना भी बौखलाहट का एक उदाहरण है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं को अनुशासन और संवाद का संदेश दिया है। आज शिमला में उन्होंने प्रदेश कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष नीरज भारती द्वारा अपनी ही सरकार पर लगाए गए आरोपों और पद से इस्तीफे को लेकर उपजे विवाद पर ये बात कही। चंद्र कुमार ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन बिना तथ्यों व पर्याप्त विचार विमर्श के लगाए गए आरोप संगठन व सरकार दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं।
2: जो कल स्टेटमेंट नीरज भारती ने दी है, उस स्टेटमेंट से ठीक मैसेज जो है वो नहीं है, क्योंकि राजनीति में कोई छोटा काम नहीं हुआ वहां तक तो ठीक है, लेकिन इस प्रकार के एलिगेशन लगाना हमारी पार्टी की जो सरकार है उसके ऊपर अटैक की बात, हम इसको डिसअप्रूव करते हैं। तो मैं उसको भी ये राय दूंगा कि इस प्रकार के एलिगेशन और बगैर तथ्य को बिना सोचे समझे कोई बात करना, ये पार्टी संगठन और पार्टी सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है। जो कुछ उसका बयान इस चीज के ऊपर है उसका मैं खंडन करता हूँ।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री व लोकसभा सांसद अनुराग ठाकुर ने आज ऊना जिले के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन से कोलकाता के लिए साप्ताहिक गुरुमुखी सुपर फास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये रेलगाड़ी करीब 1900 किलोमीटर की दूरी 31 घंटे 30 मिनट में तय करेगी। अनुराग ठाकुर ने इस रेल सेवा को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि ये रेल सेवा पटना साहिब और वाराणसी जैसे पवित्र धार्मिक स्थलों के लिए पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
3: मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ कि जिन्होंने अंब इंदौरा से कलकत्ता को जोड़ने का काम किया। ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस गुरुमुखी एक्सप्रेस जो लगभग 1900 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेगी और मात्र 31 से 32 घंटे के अंदर ये हिमाचल प्रदेश को कलकत्ता से जोड़ने का काम, एक के बाद दूसरी नई ट्रेन और हिमाचल को देश के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
1: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत 100 युवा प्रतिभागियों के दल को इन दिनों हिमाचल प्रदेश के किन्नौर व लाहौल स्पीति जिलों के सीमावर्ती गांवों का दौरा करवाया जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे इन प्रतिभागियों को 3 से 5 जून तक किन्नौर जिला के विभिन्न स्थानों पर स्थानीय समुदायों के जीवन को नजदीक से समझने का अवसर मिला। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता।
4: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत आज 100 युवा प्रतिभागियों को किन्नौर और लाहौल स्पीति के सीमावर्ती गांव के लिए रवाना किया गया। ITBP बेस कैंप रेखांग पीओ में 3 दिवसीय अनुकूलन एवं ओरिएंटेशन कार्यक्रम पूरा करने के बाद प्रतिभागियों को 5 बसों के माध्यम से 20 सीमावर्ती गांव में भेजा गया। बसों को उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार शर्मा, ITBP कमांडेंट सुनील कुमार तथा सहायक आयुक्त विपिन ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए युवा आगामी 7 दिनों तक सीमावर्ती गांवों में रहकर स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, आजीविका और सामाजिक जीवन को नजदीक से जानेंगे। इस दौरान वे स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण, खेल प्रतियोगिताओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, जन जागरूकता अभियानों और सामुदायिक सेवा गतिविधियों में भाग लेंगे। प्रतिभागियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए प्रत्येक गाँव में ITBP के जवान तैनात किए गए हैं। आकाशवाणी के लिए मैं किन्नौर से।

0: इसमें नेगी।
1: नई दिल्ली में प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत के प्रधान प्रशांत के लाहौल पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस पंचायत को सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: लाहौल स्पीति की शांशा पंचायत को सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नई दिल्ली में प्रतिष्ठित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत स्तर विकास राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आज पंचायत के प्रधान प्रशांत के लाहौल पहुंचने पर अटल टनल के उत्तरी द्वार पर ग्रामीणों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें पारंपरिक कथा पहनाकर सम्मानित किया गया। पंचायत को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की खुशी में ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुनों पर थी रखते हुए जश्न मनाया। इसके बाद शांशा गांव पहुंचने पर सभी ग्रामीणों ने पुनः लाहौली परंपरा के अनुसार स्वागत किया। शांशा पंचायत की सफलता ने लाहौल स्पीति और हिमाचल प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
1: प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शिमला के बचत भवन में आयोजित कार्यक्रम में जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप ने नव निर्वाचित जिला परिषद सदस्यों को शपथ दिलाई, जिसमें सभी वार्डों के सदस्य शामिल रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों के लिए नियमितीकरण नीति 2026 को दी मंजूरी। अस्वीकृत किए गए करुणामूलक नियुक्ति मामलों पर पुनर्विचार पर भी लगाई मुहर। हिमकेयर योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज बीमा मॉडल के अंतर्गत संचालित करेगी सरकार। नव निर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को 15 जून को जिला स्तर पर दिलाई जाएगी शपथ। मुख्यमंत्री धर्मशाला में दिलाएंगे शपथ। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा, मुख्यमंत्री बौखलाहट में जनादेश का लगातार कर रहे हैं अपमान। और सांसद अनुराग ठाकुर ने अंब अंदौरा से कोलकाता के लिए साप्ताहिक गुरुमुखी सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर किया रवाना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं।
4: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
7: शुभवाणी, लाभवाणी, जनजन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
6: नियम और शर्तें लागू।
4: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
5: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
6: सूचना मनोरंजन शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला, एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला है, 8 बज चुके हैं और ये वक्त है आप सबको भूले बिसरे गीत सुनाने का।

हाँ, भोले बिसरे गीतों का पिटारा अब खुल चुका है और सबसे पहले जो गीत हम आपको सुना रहे हैं, मयूर पंख, इस फिल्म का ये गीत है। 1954 में ये फिल्म आई और इसमें आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की है। सुनिए ये गीत जिसको लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत शंकर जयकिशन का। आनंद लीजिए इन भोले बिसरे गीतों का।

भोली बिसरे गीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से। आप हैं मेरे साथ यानी जगदीश शर्मा के साथ, और हम प्रयास करते हैं कि जैसे जैसे कार्यक्रम हम आपको सुनाते जाते हैं और कार्यक्रमों में आप गीत सुनते हैं, आप हमसे जुड़ना शुरू कर देते हैं। कोशिश यही रहती है, क्योंकि हम भी अपनी भागम भाग में रहते हैं, दिन भर हम अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं। इस वक्त बहुत सारे लोग, हो सकता है वो अपने आशियाने तक पहुंच चुके हैं, कोई सफ़र में है, लेकिन हमारी ये कोशिश है कि हम इन गीतों के साथ आपको जोड़ कर रखें और आपका ये सफ़र आनंददायी हो, और आप अभी कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें भी आप लगनता से उस कार्य को निपटाएं। फ़िलहाल लता मंगेशकर का गाया ये गीत आपने अब सुना, और अब अगला ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। आप यूं ही बने रहें हमारे साथ, आनंद लीजिए इन भोले बिसरे गीतों का।

आशा भोसले का गाया ये गीत आपने सुना बूट पॉलिश फिल्म से। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, शंकर जयकिशन का संगीत। और अब भूले बिसरे गीतों में हम अगला गीत आपको सुना रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, मुनीम जी फिल्म का ये गीत। हम जब इन गीतों को सुनते हैं ये तो ज़रूर हम अनुभव करते होंगे कि किस तरह की उस वक्त की तकनीक रही होगी और किस तरह से जो है फिल्म इंडस्ट्री में ये काम चल रहा होगा। तमाम जितनी भी तकनीक उस वक्त इन गीतों के लिए अपनाई गई होंगी, फिल्मों के लिए अपनाई गई होंगी, तो वो उसके गीतों से ही झलक जाता है किस तरह का उस वक्त रंगीन है या ब्लैक एंड वाइट है। तमाम जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर लेकर चलती हैं कि कितना अभूतपूर्व विकास जो है इसमें दिनों दिन हुआ है, वर्षों इस इंडस्ट्री में जो है कामयाबी के लिए लगे हैं। लेकिन वो जो फिल्म की कहानी है या उसमें जो किरदार है या उस फिल्म के माध्यम से समाज में जो बदलाव की कहानी है, वो कहानियाँ कहीं ना कहीं हमें जो है एक सीख देकर निकलती हैं और हम उन कहानियों से कुछ ना कुछ सीखते हैं और उन फिल्म से जो है उन कहानियों से जो है हमारे परिवार का किस तरह से संबंध जुड़ता है, हम लोगों से किस तरह का सद्भाव रखते हैं, तमाम बातें जो हैं इन फिल्मों के माध्यम से जो है हमें देखने को और सुनने को इन गीतों से पता चलता है। अब जो गीत आपको हम सुना रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में, वो मुनीम जी फिल्म का है। आप आनंद लीजिए इन गीतों का और बने रहें FM शिमला के साथ। सुन रहे हैं आप भूले बिसरे गीत।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी, अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: एक 103.7 MHz पर आप आकाशवाणी FM शिमला सुन रहे हैं, और अब भूले बिसरे गीतों का आनंद ले रहे हैं। अब हम आपको जो गीत सुना रहे हैं, गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है। गीत को मजरूह ने लिखा है और OP नैयर का संगीत। आनंद लीजिए।

हम इन गीतों को नहीं भूल सकते, बस ये कह सकते हैं कि पुराने गीत हैं लेकिन बयां तो सच्चाई कर रहे हैं, और वही सच्चाई जो आज भी हम अनुभव करते हैं कि गीत जब हमें सुनने को मिलते हैं तो ऐसा कभी कभी लगता है कि ये कुछ हमारी बात कह रहे हैं। तो वो संभावनाएं, स्थितियां, ये हमेशा ऐसी चलती रही हैं। कभी हम बहुत उन्माद में होते हैं, खुशी में होते हैं, कभी हमें दुख मिलता है, लेकिन जो दुख के स्वर होते हैं वो कुछ और होते हैं, जो खुशी के स्वर होते हैं वो कुछ और होते हैं। लेकिन जितने भी लोग जो हैं अभिनय से जुड़े हैं या जो इन बोलों को अपनी आवाज़ें देते हैं, तो किस तरह से वो अनुभव करते हैं उन बातों को, ये एक हमेशा से जो है एक कलाकार की भावना को समझना ये बहुत मुश्किल का काम है। लेकिन इन गीतों के माध्यम से जो हमारी जीवन की सच्चाइयाँ बयां हो रही हैं, हम कैसे इन गीतों के साथ जुड़ जाते हैं, अकेलापन है तो ये गीत उस अकेलेपन को दूर करते हैं और बहुत कुछ कह जाते हैं। यानी हम इन गीतों को इसलिए ही सुनना चाहते हैं क्योंकि ये दिल की बात कहते हैं। फिलहाल अब हम अगला गीत आपको चंद्रकांता फिल्म से सुना रहे हैं। ये फिल्म 1956 में आई, संगीत एन दत्ता का है, साहिर का लिखा ये गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, सुनिए।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं नमस्कार, मैं दीपशिखा शर्मा, जनगणना कार्य निदेशक हिमाचल प्रदेश, आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश की जनगणना का प्रथम चरण है यानी मकानों की गणना एवं मकान सूचीकरण, वह 16 जून से 15 जुलाई के भीतर हिमाचल में कंडक्ट किया जाएगा और इस बार हमारा

0: स्वगणना का प्रावधान की ऑप्शन दी गई है या विकल्प रखा गया है, आप जरूर स्वगणना पोर्टल sc.census.gov.in पर जाकर अपनी डिटेल भरें। बाद में हमारे प्रगणक आपके पास आकर उसको वेरीफाई करेंगे और फाइनली पोर्टल पर सबमिट करेंगे। मैं आप सबको यह अवगत कराना चाहती हूं कि जो हमारा जनगणना का डाटा होता है, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति, घरों की स्थिति के बारे में, या फिर हमारी शिक्षा, साक्षरता और इस तरह की जो हमारी मूलभूत जानकारियां होती हैं, वह हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे जो आंकड़े हैं उनसे हमारी नीति निर्माण और रिसोर्स एलोकेशन बहुत अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए आप सब अपनी जाननाकार हैं, वो आप ही के आसपास के कोई भी सरकारी कर्मचारी होंगे। जब वो आपके घर आए तो आप उनका स्वागत करें और उनको जानकारी दें। यदि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, आप उनका आई कार्ड देख सकते हैं जिसपे की एक QR कोड है, उसे स्कैन करके आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। और आपसे किसी भी तरह का कोई भी OTP या दस्तावेज कभी भी नहीं मांगा जाएगा। आपको सिर्फ अपने 33 प्रश्नों की जानकारी जनगणना के प्रथम चरण के लिए देनी है। धन्यवाद।
1: MHz पर आप आकाशवाणी FM शिमला सुन रहे हैं और अब फिल्म संगीत आपको हम सुना रहे हैं। द फैमिली स्टार, इस फिल्म का ये गीत आवाज़ राघव चैतन्य की है, रेशमि विराग ने इस गीत को लिखा है और गोपी सुंदर का संगीत। आनंद लीजिए इन गीतों का और बने रहे FM शिमला के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

फिल्म संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला से। भूल भुलैया 3 इस फिल्म का गीत आवाज़ सोनू निगम की है, समीर का लिखा यह गीत, अमाल मलिक और प्रीतम का संगीत।

बनवास फिल्म का ये गीत, और इसमें आवाज़ें विशाल मिश्रा, पलक मुछाल और मिथुन की हैं। आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का, आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से सुनते रहिए।

0: विशाल मिश्रा, पलक मुछाल और मिथुन की आवाजों में आपने ये गीत सुना। फिलहाल इसी गीत के साथ अब फिल्म संगीत में इतना ही। आठ बजकर 45 मिनट होने को हैं। थोड़ी देर में समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की, देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए, इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की, कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता, भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: चीनी आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से

0: लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
1: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
0: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारकोदुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारकोदुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन झारखंड के 2 दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
3: खाड़ी देशों और अमरीका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमरीकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
4: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
5: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यह पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए

0: और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। CBSE ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने 6ठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। KL राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद द न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds meeting with the Economic Advisory Council, reviews country's economic transformation and long-term development priorities. Centre introduces standard edible oil pack sizes to enhance transparency and promote uniform packaging practices. External Affairs Minister S. Jayashankar holds talks with his Nepalese counterpart Shishir Khanal in New Delhi. Says India and Nepal collaborate closely to maintain security along their open border. Tensions across West Asia escalate as Iran launches ballistic missiles towards US military facilities in Kuwait and Bahrain. And in hockey, Indian men's team lifts under 18 Asia Cup, beating hosts Japan in Kakamigahara. Indian women's team also clinches bronze.

एक फिल्म से ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी 103.7 MHz FM शिमला से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम में आज हम आपको नगमा फिल्म के गीत सुना रहे हैं और इस फिल्म की कहानी के बारे अगर हम आपको बताएं, इस फिल्म की कहानी रूपनगर के महाराजा द्वारा अपनी भतीजी का विवाह प्रेम नगर के अहंकारी राजकुमार के साथ तय करने से शुरू होती है, लेकिन राजकुमार का घमंड देकर वो राजकुमारी इस रिश्ते को ठुकरा देती है और अपनी पसंद के एक सामान्य व्यक्ति जिसको एक चित्रकार के रूप में, कवि के रूप में, संगीतकार के रूप में सभी जानते थे, उसको वो चुनना पसंद करती। यानी ये पूरी फिल्म की जो कहानी है इसी प्रसंग पर घूमती है और उसी कहानी के माध्यम से तमाम जो गीत हैं वो इस कहानी को बयां करते हैं। फिलहाल अभी हम आपको शमशाद बेगम का गाया ये गीत सुना रहे हैं। आप यूं ही सुनते रहिए कार्यक्रम एक फिल्म से।

से जो है ऐसा ऐसा कंट्रीब्यूशन जो है तमाम लोगों का रहा और इस फिल्म के गीत बहुत मशहूर हुए। आइए अब कार्यक्रम के अंत में शमशाद बेगम का ही गाया ये गीत आपको हम सुना रहे हैं।

एक फिल्म से ये कार्यक्रम में आप आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला से सुन रहे हैं। नगमा फिल्म के गीत आप सुन रहे हैं। इन गीतों के लिए जो निर्देशन रहा संगीत का, उसमें शौकत अली यानी नौशाद भारतीय फिल्म उद्योग के एक मशहूर फिल्म संगीतकार और संगीत निर्देशक थे। उन्होंने 1940 और 50 के दशक में हिंदी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। स्क्रीन पर नौशाद नाम से मशहूर हुए फिल्म निर्देशक नक्शब जरजवी ने अपनी फिल्म नगमा के लिए शौकत अली का नाम बदलकर नौशाद कर दिया। उन्होंने 1947 की एक्शन फिल्म दिलदार में शौकत दहलवी के नाम से अपनी संगीत की शुरुआत की थी। तो इस तरह

इसी गीत के साथ एक फिल्म से कार्यक्रम में इतना ही। आज आपने नगमा फिल्म के गीत सुने। आकाशवाणी 103.7 MHz पर यह फिल्म शिमला है। 9:30 हुए हैं और अब वक्त है आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप हमें अपनी मेल भेजें। AIRFM Shimla musicmail@gmail.com पर आपके मेल समय मिलेंगी और हम आपको आपकी पसंद के गीत सुनाएंगे। तो जल्दी से मेल आइए और हमें ये मेल भेजिए आप, और जो भी गीत आप सुनना चाहते हैं उसमें आप मेंशन करें। AIRFM Shimla musicmail@gmail.com पर आप अपनी मेल भेजें। फ़िलहाल हमारे पास बहुत सारे मेल्स ऑलरेडी पहुँच भी चुकी हैं, जिसमें सबसे पहली मेल जो पहुँची है पद्मा टॉकीज नेपाल नगर मध्य प्रदेश से। सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, आश्विन, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, आप हमें अपनी मेल भेज रहे हैं। और आपने ताजमहल फिल्म का गीत सुनना चाहा है और छत्रपति

संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश हैं, राशि राजेश हैं, श्रीमती शीतल राजेश हैं, और अगली जो हमें फरमाइश मिली है जेल रोड जालंधर से रोशन जहां मन्नत, इशरत, खंडवा से निशा और दुर्गा कुमारी, झांसी से शंकर देव चमोरिया, और आपने फिल्म का नाम भी लिखा है, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो फरमाइशें हैं वो जल्द से जल्द आप तक हम भेजें। चंद्रनगर सहारनपुर से जो है हमें जो मेल मिला है कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी का, अम्बाला से आशु अब्बासी और सोनाली अब्बासी भी जुड़ चुके हैं, और बहुत रंग बिरंगे अंदाज में हमें जो अगली मेल मिली है वो पांडर कवड़ा से जो हैं अनिल बुरांडे हैं, उषा हैं, अनुश्री हैं, धनुश्री हैं, बल्लार शाह से सूरज हैं और प्राची हैं, एकलव्य हैं, और हमारे पास अब अगली जो मेल है उसे भेजने वाले हैं कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, और अगली भी मेल्स हमारे पास ये मिल चुकी है और इसके भेजने वाले भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम आपकी ये फरमाइश जल्द से जल्द पूरी कर देते हैं ताजमहल फिल्म का ये गीत आप सबके लिए, और आप हमें मेल करें AIRFM शिमला musicmail@gmail.com पर। सुनिए अपनी पसंद के गीत, फ़िलहाल अपनी फरमाइश आप सुनिए ताजमहल फिल्म से ये गीत।

स्पेक्ट्रम आप आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप लड्डू और टुक टुक जाटव जो है, और उम्रखेड़ से सिराज खान और शबाना खान भी इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं और अपनी फरमाइशों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं तमाम साथी। अभी हमारे पास फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख हैं, नाजिया नासिर हैं, शाजी शाहिद हैं, गोविंदपुरा अहमदनगर से जो हैं जुनेद मुंजावर हैं, सबीहा हैं, मिखाइल हैं, जैनव हैं। और अगली जो फरमाइश हम तक पहुंची है, आप सभी उस फरमाइश में हैं, आप सभी गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊथान मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार हैं, प्रीति हैं, कार्तिक आर्यन वर्मा और शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से जो है मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी आर्यन, कृष्णा पिहू स्वर्णकार, आप सभी मिलकर इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। और अभी हमारे पास जो अगली फरमाइश है मेरठगंज से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव हैं, संजय डिंगिया, संदीप मक्कड़ हैं, अनिल जैन हैं, दर्शन हैं, और भी आपने कुछ नाम लिखे हैं। अच्छा, ये फिल्म का नाम है और इस फिल्म से आप गीत सुनना चाहते हैं, तो फिलहाल हम आपकी इस फरमाइश को जल्द ही पूरा करेंगे। और अभी हमारे पास जो तमाम सभी जुड़े हुए हैं, आप हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, रघुनाथपुरा ज़िला श्रीगंगानगर राजस्थान से आप इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और अभी हमारे पास गांव हांडीखेड़ा ज़िला सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा सार्थक भी हैं। और अगली ये जो फरमाइश है एसएम जावेद की है, शगुप्ता अंजुम, गुमला झारखंड से आप इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। गांव टोरोवाल ज़िला नवाशहर पंजाब से जो है गगनदीप थांदी हैं, तृप्ता कुमारी हैं, डॉक्टर प्रियंका, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर प्रियम, बेबी वामिका हैं, वानी, आप सभी मिलकर भी इस कार्यक्रम को हमेशा से सुनते हैं, आज भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। फिलहाल आप सबकी फरमाइश पर ये गीत हम आपको सुना रहे हैं, आप यूं ही बने रहे हमारे साथ, आन लीजिए कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुनकर। और आपको हम कहना चाहते हैं कि आप भी अगर अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें मेल करें AIRFM शिमला music@gmail.com पर।

डॉन फिल्म का ये गीत आपने सुना, और वैसे ही आप भी अपनी फरमाइशें सुन सकते हैं जल्दी से AIRFM शिमला musicmail@gmail.com पर अपनी मेल भेजें। हमारे पास गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और अगले हमारे साथ जो साथी हैं भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू, चंपा साहू, आप छत्तीसगढ़ से इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। और अभी हमारे पास गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से जो हैं सईद मसरूर हैं, शाइना हसन हैं, नाजिया इब्राहिम किसी भी गीत की फरमाइश आप कर रहे हैं, और सदर बाजार कुरावली से जो है अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनित कुमार और सोनम वर्मा भी हैं। हमारे पास अगली जो अब फरमाइश है वडिंगखेड़ा से पंजाब से मिंटू टॉमस हैं, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा हैं, और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान और सौरभ शर्मा हैं, साइना शर्मा है, मैडी शर्मा है। और हमारे पास अब अगली जो फरमाइश और नज़र आ रही है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से जो अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक की है, और मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, इसरार, नरगिस खातून ज़िला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से कार्यक्रम में हैं। और हमारे पास गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से जो है बबलेश पंवार हैं, डेनी पंवार, मनीष, राजदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबू राम जयपाल हैं, और खलीफों की बावड़ी से खुदा बख्श खलीफा, रेडियो दीवाना, ये शायद इन यहाँ का नाम इन्होंने अपना लिखा है। आपकी भी फरमाइशें हैं और हम एक एक करके कोशिश करेंगे कि आप सबकी ये फरमाइशें हम आपको सुना पाएँ। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया हैं, और हमारे पास अब वैशाली शैलेश गुहानकर हैं, प्रिंस एकांश, सुमित गुहानकर, कुमारी ध्वनि गुहानकर, मेहरनगर ऊपर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहानकर, सरिता, प्रणीता सिद्धांत गुहानकर हैं, लाडला टुक टुक गुहानकर, आप सभी जो हैं इस कार्यक्रम का जो आनंद ले रहे हैं, हकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से। और हमारे पास गांव डाकर निम्नाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसवीर सिंह अरोड़ा, जसविंदर सिंह कौर, गुरप्रीत सिंह हैं, लवप्रीत कौर हैं, कमरजीत कौर, और हमारे पास और भी साथी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, शिरटे ज़िला शांगली, हनुमंत शिंदे, संगीता हैं, ऋषिकेश हैं, वसुंधरा हैं, और भी हमारे पास तमाम साथी जुड़े हुए हैं, उनका भी हम नाम आपको बता दें। जलालाबाद वेस्ट से जो हैं सुरेश गगनेजा हैं, पूनम गगनेजा हैं, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा। कार्यक्रम में हमारे पास गोविंदपुरा सिकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत हैं, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत हैं, और भी नाम हैं, डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर हैं, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, और हमारे पास अब और चौपाड़ी रोडू से तारा सिंह

दर्द फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार आशा भोसले की है आवाज़ों में। और अब हम आपको अगली फरमाइश भी बता देते हैं, कौन सारे बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जटोलिया उषा हैं, चारू हैं, आप दिल्ली नंगलोई से जो हैं, आपने फिल्म का नाम भी लिखा है। और हमारे पास अब अगले साथी भी जुड़ चुके हैं, और ये साथी हम आपको बता दें कि देवरी भाटापारा से के आर साहू हैं, आकाश कमलेश हैं, गन्नू लाल रजक है, मुरली क्षत्रिय हैं, और देवरी भाटापारा से जो हैं और भी आपकी फरमाइश पुनः पहुंच चुकी है, लेकिन मेन रोड तिलहारा महाराष्ट्र से प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार हैं, सुजाता पोहरकार हैं। हमारे पास कार्यक्रम में दुर्गा चौक जूनापानी सनावद मध्य प्रदेश से कालू सिंह बड़ोले हैं, सीताराम हीरालाल हैं, साहिल सुमन हैं, विशाल हरिओम भावना हैं, और भी हैं लक्ष्मणपुर छत्तीसगढ़ से जो हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निमी शिवम सतीश, मुकेश कुमार साहू। और हमारे पास अब अगले जो नाम हैं वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप ये अपने फरमाइशी गीत को सुन लें। आप यूं ही बने रहें FM शिमला के साथ, अभी भी आप अपनी फरमाइश भेज सकते हैं।

नूरी फिल्म का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में, और अब दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम में हसीना भी मंसूरी, अमीना भी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी, हुस्ना भी कमला, आप पालदा नागा इंदौर मध्य प्रदेश से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, और हमारे पास आप सभी जो हैं अपनी अपनी फरमाइशों के साथ। सनावत ग्राम जूनापानी मध्य प्रदेश से खुशी, खुशबू, खुशमीत, खुशदीप, खुशमिता, एकांश, इमली, वंदना भड़ोले भी इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, और आप सभी के लिए आपकी फरमाइशी इस गीत को हम सुना रहे हैं।

कार्यक्रम के आखिर में आर्य नगर कोहराविलाई से उत्तम सिंह जंगील मॉरिस अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष और नंदिनी जंगेल भी जुड़ चुके हैं। धमदाग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल शकुन हैं, आरुषि हैं, ओशिका आदित्य और अंजलि। और इसी के साथ और भी साथी चिरमिरी कुरासिया से कालरी से जोइंद्र भान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश कुमार, दिनेश प्रसाद हैं और कालिंद्री लहरे। हमारे पास अब और भी साथी जिन्होंने अपनी अपनी फरमाइशें सुननी चाही है, लेकिन तमाम वो साथी जिनके नाम हम तक पहुँचे हैं, जिनकी मेल हम तक पहुँची, वो हमने आपको बताया है। फिलहाल आप सभी इस कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला आप सुन रहे हैं। 10 बज चुके हैं और अब वक्त है गज़लें आपको सुनाने का। जी हाँ, पहली ये कार्यक्रम की गज़ल आबिदा परवीन की गाई आपको सुना रहे हैं। आप आनंद लीजिए इन गज़लों का। बने रहे हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कराते रहिए।

अनूप जलोटा की गाई है गज़ल आपने सुनी आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप गज़लों का आनंद ले रहे हैं और अब हम अगली गज़ल आपको सुना रहे हैं बेगम अख्तर की गाई।

अभी आप गज़लों का आनंद ले रहे थे और 10:30 हुए हैं और अब हम आपको सदाबहार नगमे सुना रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं गुमराह फिल्म के इस गीत के साथ, गाया है महेंद्र कपूर ने और ये गीत साहिर का लिखा है, संगीत रवि का है। आनंद लीजिए सदाबहार गीतों का, बने रहें हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सदाबहार नगमे आप आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला से सुन रहे हैं। दिल ही तो है इस फिल्म का ये गीता, ये कव्वाली आपको हम सुना रहे हैं आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा है और संगीत रोशन का, आनंद लीजिए।

सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और कश्मीर की कली इस फिल्म का गीत अब हम आपको सुनाने, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में। आनंद लीजिए।

सदाबहार नगमे आप आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला से सुन रहे हैं। प्यार किए जा इस फिल्म का ये गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, राजेंद्र कृष्ण ने गीत को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए।

सदाबहार नगमों में अब वक्त फिल्म का ये गीत आपको हम सुना रहे हैं। आवाज़ आशा भोंसले की है, साहिर लुधियानवी ने गीत को लिखा है, संगीत रवि का।

आकाशवाणी 103.7 मेगाहर्ट्स पर ये FM शिमला है और अब हम कार्यक्रम के आखिर में आपको सूरज फिल्म का गीत सुना रहे हैं। इसमें आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर की हैं, हसरत जयपुरी का लिखा यह गीत, संगीत शंकर जयकिशन का।

0: सूरज फिल्म केसी गीत के साथ अब सदाबहार नगमों में इतना ही। 11 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे समाचार, प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
2: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत जनसंबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर

0: काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षो में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की घोषणा की। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today chaired a meeting with members of the PM Economic Advisory Council. The Prime Minister and the EAC discussed various ideas and measures to further boost India's economic growth in times of global turmoil. In a social media post, the Prime Minister said they deliberated on a wide range of issues relating to India's economic transformation and long-term development priorities. They also shared perspectives on adding more momentum to the reforms journey and ensuring ease of living as well as ease of doing business. The Economic Advisory Council is an independent body that gives advice to the Government of India, specifically to the Prime Minister, on economic and related issues. Besides the EAC members, 2 principal secretaries to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra and Shaktikant Das, also attended the meeting. The centre has introduced standard pack sizes for edible oils under the legal metrology framework, bringing greater transparency and uniformity to the marketplace. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that under the revised rules, standard pack sizes have been prescribed for major edible oils, including palm oil, palmolin, soybean oil, sunflower oil, mustard oil, groundnut oil, sesame oil and rice bran oil. The approved pack sizes are 200 gram, 500 gram, 1 to 5 kilograms, 15 kilograms and 20 kilograms. The ministry said this will also help consumers make more informed and transparent purchasing decisions. It added that the initiative will benefit the edible oil industry by bringing greater uniformity in packaging practices. Railway Minister Ashwini Vaishnaw has said that resolving long-pending railway projects in West Bengal will usher in a new era of railway infrastructure development in the state. Addressing a joint press conference with Chief Minister Suvendu Adhikari at Nabarna in Kolkata, Mr. Vaishnaw said that 14,205 crore rupees have been allocated to West Bengal in the railway project for